0: घर ही मिला लीजिए। इस वक्त सुबह के ठीक 5 बजे हैं।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MVC रेडियो

प्रभात आराधना हर सुबह 5 से 6 बजे तक भक्ति के मधुर सुरों में कीजिए ईश्वर की आराधना रेडियो मॉरिशस पर।

0: ईश्वर की आराधना के इन मधुर सुरों के साथ प्रभात आराधना का ये सफर यही समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे सुबह 5 बजे भक्ति के नए गीतों के साथ रेडियो मॉरिशस पर।
1: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार आपके साथ तीना। नमस्कार आपको।
2: नमस्कार। संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें। यूके में एक नया विधेयक मॉरिशस को शागस द्वीप समूह की पूर्ण संप्रभुता सौंपे जाने की प्रक्रिया को जटिल बना सकता है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में पेश किए गए इस विधेयक में अन्य बातों के अलावा ये प्रावधान है कि कोई भी निर्णय लेने से पहले शागस वासियों की राय ली जानी चाहिए। ओलिविया बॉन्कुल्ट इस समय लंदन में शागस शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद है। पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टीफन डाउटी, ब्रिटिश सांसदों, ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कॉर्बिन के साथ कई बैठकों में भाग लिया। ओलिविया बॉन्कुल्ट ने मॉरिशस और यूनाइटेड किंगडम के बीच हुए समझौते के समर्थन में अपनी बात रखी, साथ ही शागस वासियों की अपेक्षाओं और चिंताओं से भी अवगत कराया गया। और कैबिनेट ने ध्यान दिया कि अफ्रीकी संघ के अध्यक्ष के पत्र के अनुसार कोंगो, युगांडा और दक्षिण सूडान में इबोला वायरस का प्रकोप अब भी गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य जोखिम बना हुआ है और इसके फैलने की आशंका अधिक है। स्थिति को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र कार्यालय जनेवा में मॉरिशस के राजदूत ने विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक से परामर्श किया है। सावधानी के तौर पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं और इन देशों से जुड़े कार्यक्रम, सम्मेलन और कार्यशालाओं को सीमित करने की सलाह दी है। और विदेश में मध्य पूर्व में जारी संघर्ष लाखों लोगों को भूखमरी के कगार पर धकेल रहा है, क्योंकि ईंधन और परिवहन की बढ़ती लागत में खाद्य पदार्थों की कीमतें बढ़ रही है। वहीं धन की कमी के कारण सहायता एजेंसियों को सहायता कम करनी पड़ रही है। ये जानकारी संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य कार्यक्रम WFP ने कल दी है। और अंत में मौसम का हाल।
3: Your news on NBC Play, NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.tv.
2: मस्करेंस के दक्षिण में पाए जा रहे जोरदार एंटीसाइक्लोन से जुड़े सक्रिय बादल हमारे स्थानीय मौसम को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण हमारे इलाके पर ठंडी हवाओं का असर है। पूर्वानुमान आज सुबह और दिन के दौरान देश भर में बादल घिरे रहेंगे, रह रहकर वर्षा होगी, खासकर दक्षिणी इलाकों, पूर्वी इलाकों और सेंट्रल प्लेटों पर। रात्रि के समय भी रह रहकर वर्षा होगी, ज़्यादा बारिश ऊंचे इलाकों पर होगी और कुछ जगहों पर कोहरे भी छाए रहेंगे। तापमान, सेंट्रल प्लेटों पर न्यूनतम तापमान 16 से 18 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 21 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। तटवर्ती इलाकों पर न्यूनतम तापमान 20 से 22 डिग्री सेल्सियस के बीच और अधिकतम 26 से 29 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा।

हवा दक्षिण की तरफ से 10 से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेगी, जिसके झोंके कुछ प्रभावित जगहों पर 60 किलोमीटर प्रति घंटा भी हो सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र खराब रहेगा और दक्षिण की तरफ 3 मीटर तक ऊंची लहरें भी उठेंगी। दूर समुद्र में न जाने की सलाह दी जाती है, खासकर पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में। सूर्योदय आज 6:40 पर और सूर्यास्त शाम के 5:37 पर।

सूरह अल-कहफ़ उर्दू तर्जुमा ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहो कि अगर समंदर मेरे रब की बातें लिखने के लिए रोशनाई बन जाए तो वो ख़त्म हो जाए मगर मेरे रब की बातें ख़त्म न हों बल्कि इतनी ही रोशनाई हम और ले आएँ तो वो भी किफ़ायत न करे। सूरह बनी इसराइल उर्दू तर्जुमा जो कुछ तुम्हारे दिलों में है उसे तुम्हारा रब बखूबी जानता है अगर तुम नेक हो तो वो तो रुजू करने वालों को बख्शने वाला।

दुनिया की तख्लीक के बारे में इरशाद रब्बानी है, ये तो अल्लाह की तख्लीक है, अब ज़रा दिखाओ उन्होंने क्या पैदा किया है जो उस अल्लाह के सिवा है। बल्कि दर हकीकत ये ज़ालिम वाज़ह गुमराही में पड़े हुए हैं। सही मुस्लिम की रिवायत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, मैंने जुल्म करना अपने ऊपर हराम किया है और तुम्हारे दरमियान भी उसे हराम करा

रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग हमेशा खैर व भलाई के साथ रहेंगे जब तक वो आपस में हसद न करें। बहवाला तबरानी। सही मुस्लिम की रिवायत है, माफ़ कर देने से अल्लाह ताला इज़्ज़त में इजाफ़ा फरमाता है। सही मुस्लिम की ही रिवायत है, तुम जहाँ हो अपने दिल में अल्लाह का खौफ रखो और गुनाहों के बाद नेकी किया करो कि ये नेकी उस गुनाह को मिटा देगी।

मसनद अहमद की रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला फरमाते हैं, ऐ मेरे बंदो, तुम सारे गुनहगार हो मगर जिसको मैं आफियत दे दूँ, लिहाजा मुझसे बख्शिश तलब किया करो, मैं तुम्हें माफ़ कर दिया करूँगा। और जिसने ये जान लिया कि मैं अल्लाह बख्शने की कुदरत रखता हूँ, फिर उसने मुझसे मेरी कुदरत की वजह से बख्शिश तलब की, तो मैं उसे बख्श दूंगा और इस सिलसिले में कोई परवाह नहीं करूंगा। सामीन कराम, सवाल खैर प्रोग्राम का वक्त यहीं पर ख़त्म होने जा रहा है। टेक्निकी मदद के लिए अंजू का शुक्रिया। अपनी मेज़बान अबीनाज जान अली को इजाज़त दें, अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़। सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।

0: काय मंडळी
1: कसं काय मंडळी
2: कसं काय मंडळी कसं काय मंडळी

वाच आजे सान शक्ति ने बिजी एक तुच्छ प्रवृत्ति ने मन में लागणा मोखरे चढ़या जे जरूरत अहि मन निशुद्धि ने न सांबड़ी शोर शराब दुनिया न बाड़ी घोटा न चार मेरे शब्द पड़े।

लग शब्द सगम जान मौनम लंबात दिल्ली लकूप कड़ी कलम शब्दों समझे दुनिया भरम पड़े शब्द अहम जाने करम छे ख्वाहिश दिल मावात कहवानी हिम्मत न दी बात बोलवानी रहे आतुरता बात जानवानी दुनिया मजादर दो ने माने आपे आपद शब्दों ने वैन उगड़े जहर शब्दों ने वैन शब्दों चुपे हा काटा नी जैम शब्दों चिरे हा कातर नी जैम बोल बता बात सांभ शिकोण बात सांभड़ो हवे रही मौन समझा से शब्दों नु षड्यंत्र मति मौन जे वो हवे कोई मंत्र

0: रंजन पर आपके लिए प्रस्तुत करते हैं और मैं हूँ वेदिता। शनिवार की इस पवित्र सुबह में हम प्रार्थना करते हैं कि ईश्वर की कृपा आप सब पर बनी रहे। तो चलिए आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है इसका श्री गणेश करते हैं।
1: श्रावण मास में सूर्य इंद्र स्वरूप होते हैं, अपनी 200 किरणों से प्रकाशित होते हैं। इस मास में इनके साथ ऋषि अंगिरा, विश्वासु नामक गंधर्व, प्रग्लेचा अप्सरा, एलापुत्र नामक सर्प, स्थ्योत्य नामक यक्ष तथा सर्प नामक राक्षस होते हैं। भाद्रपद महीने में सूर्य विवस्वान स्वरूप हो जाते हैं, अपनी 300 किरणों के साथ चमकते हैं। इनके साथ ऋषि भृगु, उग्रसेन गंधर्व, अनुम्लोचा अप्सरा, आपूर्ण यक्ष, शंखपाल सर्प और व्याघ्र नामक राक्षस होते हैं। अश्विनी मास में इनका स्वरूप पूषा होता है, अपनी 200 किरणों से ही चमकते हैं। इनके साथ गौतम ऋषि, घृताची अप्सरा, सुषेण गंधर्व, धनंजय नाग और वात नामक राक्षस होते हैं। कार्तिक में सूर्य पर्जन्य स्वरूप होते हैं, अपनी 1100 किरणों से चमकते हैं। इनके साथ भरद्वाज ऋषि, विश्वाची अप्सरा, विश्वावसु गंधर्व, सेनजित यक्ष, एरावत सर्प तथा अन्य राक्षस होते हैं।

तो आपने अभी सुना सूर्यदेव को समर्पित एक सुंदर भजन। सूर्यदेव जो ऊर्जा, प्रकाश और जीवन का प्रतीक माने जाते हैं, सूर्यदेव की कृपा से जीवन में सकारात्मकता और सफलता का प्रकाश फैलता है। और अब हम बढ़ने जा रहे हैं एक और भजन की ओर। चलिए जी, यहाँ पर अभी सूर्यदेव को प्रणाम हमने कर दिया, गणेश जी को याद करते हैं। हर सुबह कार्य से पहले जिनका स्मरण किया जाता है, आइए उन्हीं का भजन सुनते हैं।

तो प्रिय श्रोताओं, गणपति बप्पा के इस मधुर भजन ने मन को भक्ति से भर दिया है। गणेश जी बुद्धि, विवेक और वृद्धि के दाता हैं। उनका आशीर्वाद हर कार्य को सफल बनाता है। अब शनिवार के इस विशेष दिन पर हम याद करेंगे न्याय के देवता शनिदेव को। श्रद्धा और सच्चाई के साथ उनकी आराधना करने से जीवन के कष्टों में राहत मिलती है। सुनिए ये शनिदेव को समर्पित एक भजन।

शनिदेव के चरणों में समर्पित इस भजन को सुनकर मन में विनम्रता और धैर्य का भाव जागृत होता है। शनिदेव कर्मों के अनुसार फल देने वाले देवता माने जाते हैं। अब समय है देवादिदेव महादेव का सम्मान करने का। चलिए जी, भोलेनाथ को याद करते हैं जो अपने भक्तों पर सदैव कृपा बरसाते हैं। आइए, हर हर महादेव कहते हुए हम ये भजन सुनें।

श्रोताओं, भगवान शिव के इस दिव्य भजन ने वातावरण को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया है। महादेव दया, त्याग और शक्ति के प्रतीक हैं। अब हम चलेंगे माँ शेरावाली के दरबार में, जहाँ भक्तों की हर सच्ची पुकार सुनी जाती है। आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनते हैं माँ शेरावाली का ये पवित्र भजन।

तो प्रिय श्रोताओं, मैं वेदिता अब आपसे आज्ञा चाहूंगी। इसी भक्ति के साथ हमारा जो कार्यक्रम है भक्ति में शक्ति यहाँ समाप्त होता है। तो आज का हमारा जो विशेष कार्यक्रम था हमने आपके लिए प्रस्तुत किया। हम प्रार्थना करते हैं कि सूर्यदेव का प्रकाश, गणेश जी का आशीर्वाद, शनिदेव की कृपा, महादेव का संरक्षण और माँ शेरावाली का प्यार आपके जीवन को सुख शांति और समृद्धि से भर दें। मैं आपसे विदा लेती हूँ, फिर मिलेंगे। नमस्कार।

0: सभी को नमस्कार अब सुनते हैं संक्षिप्त समाचार टीना से टीना आपको नमस्कार
1: नमस्कार संक्षिप्त समाचारों में सबसे पहले स्थानीय खबरें सर्दी का मौसम कैलेंडर के अनुसार शुरू हो चुका है लेकिन मॉरिशस में तापमान अभी भी असामान्य रूप से अधिक बना हुआ है देश के कई क्षेत्रों में तापमान सामान्य मौसमी स्तर से लगभग 2 से 4 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज किया जा रहा है ये प्रवृत्ति पिछले कई वर्षों से देखी जा रही है जिसे विशेषज्ञ जलवायु परिवर्तन से जोड़ती है ये जानकारी मीडिया के अंतरिम निदेशक सुधीर बिगू द्वारा दी गई ब्रिटेन के रूढ़िवादी नेता शागुस मुद्दे को लेकर अभी भी अपना रुख बदलने को तैयार नहीं दिख रहे हैं मॉरिशस की संप्रभुता को मान्यता देने वाले विधेयक को फिलहाल अलग रखे जाने के बाद डेमोक्रेटिक यूनियनिस्ट पार्टी के लॉर्ड वेयरऑफ बालीहोल्म ने कल हाउस ऑफ लॉर्ड्स में एक नया प्रस्ताव पेश किया इस प्रस्ताव का उद्देश्य किसी भी आगे की प्रक्रिया को रोकना है और ओलिविया बांकुल इस समय लंदन में शागस शरणार्थी समूह के कई अन्य सदस्यों के साथ मौजूद है पूरे सप्ताह के दौरान उन्होंने स्टीफन डाउटी ब्रिटिश सांसदों ऑल पार्टी पार्लियामेंटरी ग्रुप के सदस्यों तथा जेरेमी कॉर्बिन के साथ कई बैठकों में भाग लिया दो घरेलू विवाद 24 घंटे के भीतर दुखद घटनाओं में बदल गए पहली घटना गुरुवार शाम काथोबोन में हुई जहां एक बहस ने जानलेवा रूप ले लिया नीलम मुनिस्वामी ने स्वीकार किया है कि उन्होंने अपने साथी फाब्रिनो क्यूपिडो की हत्या की उनके अनुसार फाब्रिनो उन पर सिंथेटिक ड्रग्स

0: ने का आरोप लगा रहा था जिसे वो पूरी तरह गलत बताती है। दूसरी घटना कल सुबह लिसालिन में हुई। 29 वर्षीय प्रवेश चंग्या ने अपनी साथी स्नेहा जुटन पर चाकू से हमला कर दिया। पोटवी स्वीट्स की सीआईडी द्वारा पूछताछ में आरोपी ने कहा कि उसे अपनी साथी की बेवफाई का शक था और इसी वजह से उसने ये कदम उठाया। विदेश में अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ग्रीन कार्ड नियमों पर अपनी सख्त रुख में नरमी लाई है। सीईओ और उद्योगपतियों के दबाव के बाद प्रशासन ने वर्क वीजा पर असर न पड़ने का आश्वासन दिया है। तो इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुई। थोड़ी देर में शोक समाचार। रॉयल रोड क्वीन विक्टोरिया में 90 साल की श्रीमती दुलारी ओहा जो मामा आनंद महादेव नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल रविवार को दिन के 12 बजे उनकी बेटी श्रीमती साधना बंधू के घर रॉयल रोड क्वीन विक्टोरिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशोंग की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट नून। ब्रांच रोड लालमाटी में 76 साल के 76 साल के श्री कैदर श्रीकिसुन जो सुवेश नाम से ज़्यादा जाने जाते थे की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी कल रविवार को दिन के दो बजे उनकी पत्नी श्रीमती बृंदा श्रीकिसुन के घर ब्रांच रोड लालमाटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लालमाटी की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमोरो एट 2 PM। नंबर छः नेल्सन स्ट्रीट लिसालिन में 23 साल की कुमारी प्रागीना जुतन जो स्नेहा नाम से ज़्यादा जानी जाती थी की मृत्यु हो गई। उनकी अर्थी आज दिन के साढ़े बारह बजे उनके पिता श्री प्रेमचंद जुतन के घर नंबर 6 नेल्सन स्ट्रीट लिसालिन से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए लिसालिन की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुडे एट 9:30। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमारी गहरी संवेदना है।
1: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
2: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
3: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
4: घड़ी मिलाते चलिए, दिन के 12:05 हुए हैं।
5: सुहाना सफर।
4: हेलो फ्रेंड्स, सभी संगीत प्रेमियों को अनीता का प्रेम सहित नमस्कार। हेलो, आशा है कि आप लोग जो हैं स्वस्थ हैं। मैं जानती हूँ जी हाँ कि काफ़ी दिनों के बाद हमारी और आपकी मुलाकात हो रही है, इसीलिए तो हालचाल पूछ रही हूँ जी। वेल, यू आर कनेक्टेड टू RM3 रेडियो मनोरंजन, जहाँ भी आप सुन पा रहे हैं पुराने गीतों का खजाना जो कि है सुहाना सफर कार्यक्रम, अभी से लेकर 2 बजे तक। तो ज़रूर गीतों का हम सफ़र बनकर साथ दीजिएगा ज़रूर। इस कार्यक्रम के दौरान आपकी पसंद के गीत, कुछ हमारी बातें, कुछ आपकी बातें एंड ऑफ कोर्स कुछ खूबसूरत एहसास जुड़ जाएंगे ज़रूर, जो इस सफ़र को और खूबसूरत बना देगा। तो चलिए इस सफ़र का आगाज़ करते हैं फिल्म अभिमान के साथ, ऑफ कोर्स वन एंड ओनली लता जी की आवाज़ में।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, पुराने गानों में जो जादू है और जो एहसास है वो आज के गानों में कम ही मिलता है। और एक और ऐसा गाना यहाँ पर मैं पेश करने वाली हूँ, फिल्म है झूठी और यहाँ गाना जो है, मैंने काफ़ी दिनों के बाद मैंने इस गाने को देखा तो मैंने सोचा क्यों आपके लिए यहाँ गाना ना चला दूँ। तो चलिए एक बार फिर से लता जी और किशोरदा की आवाज़ में चंदा देखे चंदा। और मुझे ज़रूर कहना कि आपको यहाँ गाना कैसा लगा, क्योंकि बिरले ही हम इस गाने को सुनते हैं, तो मुझे ज़रूर बताना इसके बारे में।

0: सुहाना सफर सुहाना
1: सफर जी दोस्तों, सो मेसमराइजिंग वॉइस ऑफ किशोर दा एंड लता जी, फुल ऑफ फीलिंग्स फ्रॉम द हार्ट। और यहाँ पर सुदेवी जी जो हैं हमारे साथ जुड़े हुए हैं मौका से। और आपने फरमाइश की अगला गाना किसके नाम, आपके पति के नाम, पति राज हैं और बच्चों के नाम, तो चलिए सुनते हैं बोल राधा बोल।

जी दोस्तों, अभी आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन सुहाना सफ़र कार्यक्रम अनीता के साथ, और यहाँ पर हम एक छोटा सा मैसेज मिला, सचिन जी पॉम्पलमुस से साथ दे रहे हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म शहनशाह। तो चलिए यह गाना आपके नाम किशोरदार कोरस की आवाज़ों में।

जी दोस्तों, काफ़ी लोग जो हैं हमारे साथ यहाँ पर जुड़ गए हैं और यहाँ पर घोंघुप से श्यामा जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं। और आप कहती है कि आपको गाने काफ़ी पसंद आ रहे हैं और इंस्टेड बहुत पसंद आ रहे हैं और सिलेक्शन की तारीफ़ भी आपने की, थैंक यू इसके लिए जी। और इसी पर आधारित चूंकि हमने हमारा गाना पिया से शुरू किया था, आपने भी पिया से ही गाना मांगा है और आपकी फरमाइश है फिल्म गाइड पिया तो से। जी हाँ, पिया तो से नैना लागे रे लता जी की आवाज़ में। और यही गाना जाएगा आपके भाई राम प्रकाश के नाम, भाभी नम्रता हैं, नेफ्यूज़ हैं केशव, युदेश, साथ ही साथ आपकी सहेलियां हैं जो है वीना रामफल, विश्वानी दुखी और साथ ही साथ नंदिनी ओकलू के नाम यह गाना जाता है। और सभी सुनने वालों के नाम जिन्हें यह गाना काफ़ी पसंद है और मुझे यह गाना काफ़ी पसंद है, तो थैंक यू इसके लिए श्यामा जी। तो चलिए इस गाने को हम भी गुनगुनाते हैं।

0: सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, पिया तो से नैना लागे रे वाओ आते गाना। और यहाँ पर जो है 12:45 हो चुके हैं, कार्यक्रम जबरदस्त चल रहा है और आपके पसंद के गाने भी चल रहे हैं यहाँ पर। और वैसे तो दोस्तों कहा गया है कि किसी इंसान को दर्द देना इतना आसान है जितना आसान होता है समुद्र में पत्थर फेंकना, और दर्द मिटाना उतना ही मुश्किल है जितना समुद्र में फेंके हुए पत्थर को वापस निकालना। जी दोस्तों, यथाशक्ति जहाँ तक संभव हो सके किसी को दर्द दुख ना दे, क्योंकि उस दर्द को फिर से उस दर्द पर मरहम लगाना बहुत कठिन हो जाता है। और यहाँ पर हमारे साथ जो हैं देवयानी जी रेशमा फ्लाक से जुड़े हुए हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म पाकीज़ा का गाना, और एक खूबसूरत गाना है यहाँ पर आपके लिए। मौसम है आशिकाना, बिल्कुल सैटरडे का डे है, मौसम भी ठीक ठाक है। जब हम आ रहे थे तो मौसम ठीक ही था, सुहाना ही था, और सैटरडे के डे जब मौसम सुहाना रहता है तो ऑफ कोर्स हमें चलना चाहिए, बाहर घूमने चलना चाहिए, यही अवसर होता है। तो चलिए, यह गाना जाएगा पूरे छेड़ी और देवधारी परिवार के नाम।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, सफ़र तो ज़बरदस्त ही बनता जा रहा है और यहाँ पर जो है मालिनी जी बड़ी देर से अपनी फरमाइश का इंतज़ार कर रही है, लेकिन जो गाना आपने मांगा हम ढूंढ रहे हैं, नहीं मिल रहा है, लेकिन उसके बदले हमने एक गाना आपके लिए सिलेक्ट किया है। तो आशा करते हैं मालिनी जी, आप जो है मोरालबिया से हमें सुन रही हैं, कि आपको यह गाना अच्छा लगे। तो आपने डेडिकेट किया था सभी माओं के नाम यह गाना, तो बेशक ऑफकोर्स माँ की जो भूमिका है हमारे जीवन में वो अद्भुत है। तो चलिए माँ को सलाम करते हुए इस गाने को सुनते हैं और यह गाना सभी माओं के नाम मालिनी जी की ओर से।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर।
1: जी दोस्तों, गुड लाइन से जो है कोई है जिसने हमें मैसेज भेजा। हाँ, सरिता जी जो है गुलेन से साथ दे रही है और आपकी फरमाइश है फिल्म कथा मीठा का गाना, और यही गाना जाएगा खासकर जो है आपके परिवार के नाम और सभी लिसनर्स के नाम। तो चलिए सुनते हैं यह प्यारा गाना।
2: तुम्हारे डैडी की मर्जी के खिलाफ हमारा इस तरह से और मिलना, क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आता।
3: कुछ करने की जरूरत नहीं है, हम जैसे मिलते आए हैं मिलते रहेंगे।
2: फिर भी जरीन, आखिर वो तुम्हारे डैडी हैं, तुम्हारे लिए जरूर कुछ और सोच रखा होगा।
3: सोचने दो,
2: बुरा मत मानना जरीन, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से तुम्हें कोई परेशानी उठानी पड़े। और फिर ये भी तो सच है कि मैं एक मामूली घर का लड़का हूँ।
3: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो।
2: लेकिन जरीन, सिर्फ प्यार से तो सब कुछ नहीं होता। तुम बड़े घर की लड़की हो, तुम्हारे डैडी
3: तुम मुझे प्यार करते हो।
2: फिर मेरे कॉलेज का यही आखिरी साल है, बीए के बाद और पढ़ भी नहीं पाऊंगा, पता नहीं कब कैसी नौकरी मिले। और
3: फिरोज, तुम मुझे प्यार करते हो?
2: प्यार तो करता हूँ जरीन, बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन
3: प्यार करते हो ना?
2: पर जरीन, तुम
4: तुमसे मिला था प्यार, कुछ अच्छे नसीब थे।

खाना सफर, खाना सफर। You're listening to RM3 Radio Man.

0: जी दोस्तों, आइए सुनते हैं सुमी को, जो एक बजे से खास कार्यक्रम चलेगा ब्लू बे पर, और एक बजे से चार बजे तक। तो चलिए हम सुनते हैं सुमी को। हेलो सुमी।
1: हेलो अनीता, हेलो नमस्कार, और हमारे RM3 रेडियो मनोरंजन के जितने भी व्यूअर्स, जितने भी जो हमारे श्रोता है हमारे साथ जुड़े हैं, जितने भी लिसनर्स हमारे साथ जुड़े हैं, आप सभी को बता दें इस समय हम ब्लू बे के पब्लिक बीच पर है, जहां पर एक से चार बजे के बीच स्पेशल फैमिली फंडे हो रहा है। पिछले

0: सप्ताह हमने मदर्स डे मनाया. मदर्स डे के वक्त तो हर कोई अपने अपने फैमिली के साथ बिजी होता है, तो आज का जो प्रोग्राम है ये स्पेशल फैमिली फन बीच डे, यहाँ पर मदर्स डे भी सेलिब्रेट किया जाएगा. सो अगर आप आसपास हैं ब्लू बे में आकर हमसे मिल सकते हैं, हमसे जुड़ सकते हैं. बहुत सारे गेम्स होंगे, बहुत सारे गिफ्ट्स हैं, और साथ ही रेडियो पर भी बीच बीच में हम इंटरवेंशन करेंगे. जितने भी श्रोता, जितने भी लिसनर्स रेडियो से जुड़े हैं, 1 से 2 बजे के बीच हम उनके लिए एक छोटा सा गेम भी रखेंगे, जहां पर आपको कुछ ना कुछ जीतने का मौका मिलेगा. तो आप सभी का हम स्वागत करते हैं. प्लीज़ यहाँ पर आइए, हमारे साथ जुड़िए, और मिलने के लिए हम यहाँ पर बिल्कुल तैयार है. 1 बजे से जो है ये स्पेशल प्रोग्राम शुरू होने वाला है. सो नॉट टू फॉरगेट, हम रेडियो जो है MBC रेडियो की पूरी टीम इस समय ब्लू बे पब्लिक बीच पर है.
1: ओके, थैंक यू सुमीज इन सभी जानकारियों के लिए. तो मिलते हैं 1 के बाद. थैंक यू.
2: सुहाना सफर, सुहाना सफर.

0: सुनते हैं संक्षिप्त समाचार करुणा जी के साथ। आपको नमस्कार।
1: नमस्कार हंसिनी, सभी को नमस्कार। मॉरिशस ने अपनी सीमा आंशिक रूप से बंद करने का निर्णय लिया है और 18वां अमेरिकी अफ्रीकी बिजनेस समिट जो 26 से 29 जुलाई तक आयोजित होने वाला था उसे टाल दिया गया है। मंत्रिपरिषद की बैठक में इस पर मंजूरी दी गई क्योंकि मध्य और पूर्वी अफ्रीका में इबोला महामारी लगातार फैल रही है। इबोला का खतरा वास्तव में गंभीर माना जा रहा है। ये वायरस वर्तमान में कोंगो लोकतांत्रिक गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान में सक्रिय रूप से फैल रहा है। अंतर्राष्ट्रीय यात्राओं के माध्यम से इसके अन्य देशों में फैलने का खतरा अहम माना जा रहा है। सरकार ने कई स्वास्थ्य सुरक्षा उपाय भी लागू किए हैं। 8 जून से 7 अगस्त 2026 तक द्वीप पर क्वारंटीन अधिनियम आधिकारिक रूप से लागू रहेगा। जिन विदेशी नागरिकों ने पिछले 21 दिनों के दौरान इन तीन प्रभावित देशों में निवास किया हो, यात्रा की हो या वहां से होकर गुजरे हो, उन्हें मॉरिशस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। हालांकि मॉरिशस के नागरिकों और वैध परमिट रखने वाले विदेशी नागरिकों को इन देशों से आने पर देश में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें 21 दिनों का अनिवार्य क्वारंटीन पूरा करना होगा। 24 घंटों के भीतर दो दंपतियों के बीच दो त्रासदियां। काठबोन में नीलम मुनिसामी ने यह स्वीकार किया कि गुरुवार रात एक झगड़े के बाद उसने अपने साथी फाबिनो क्यूपिडो की हत्या की। उसका यह आरोप है कि मृतक ने उसे सिंथेटिक ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया था। वहीं कल सुबह लिसालिन में प्रवेश चंगिया ने अपनी संगीनी स्नेहा जुटन पर कई बार चाकू से हमला किया। पोर्टवी साफ की सीआईडी द्वारा पूछताछ की जाने पर 29 वर्षीय संदिग्ध ने अपनी हरकत की वजह बेवफाई बताई। विदेश में अमेरिका और ईरान के बीच का नाजुक युद्ध विराम एक बार फिर तनाव की परीक्षा से गुजरा है। अमेरिकी बलों ने ईरानी ड्रोन और रडार ठिकानों को निशाना बनाया, जबकि ईरान ने खाड़ी क्षेत्र में स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डों पर मिसाइलें दागी। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। कुछ ही समय बाद शोक समाचार।

0: MBC Play, MBC Play, MBC Radio.tv, MBC Radio.tv.
1: रॉयल रोड क्वीन विक्टोरिया में 90 साल की 90 ओल्ड श्रीमती डुलारी होरा जो मामा आनंद महादेव से जानी जाती थी की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे इनकी बेटी साधना बंधु के मकान गुटवायाल क्वीन विक्टोरिया से उठाकर दाह संस्कार के लिए बोशों की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो आफ्टरनून। आलिमोंग रोड गुडलैंड्स में 85 साल के 85 year old श्री राजदन उड़िया जो दर्शन से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे इनके बेटे विनय उड़िया के मकान आलिमोंग रोड गुडलैंड से उठाकर दाह संस्कार के लिए बागोज गुडलैंड्स की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 1 PM। और ब्रेंच रोड लालमाटी में 76 साल की 76 year old श्री कैदर श्री किसुन जो सुरेश से जाने जाते थे की मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2 बजे इनकी पत्नी श्रीमती वृंदा श्री किसुन के मकान ब्रेंच रोड लालमाटी से उठाकर दाह संस्कार के लिए लालमाटी की स्मशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमेशन टुमारो एट 2 PM। शोकग्रस्त इन परिवारों के प्रति हमारी दिली हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station. सुहाना सफर।
5: जी दोस्तों, 1:04 हो चुके हैं और यहाँ पर सुहाना सफर कार्यक्रम का दूसरा सेगमेंट शुरू हो चुका है रेडियो मनोरंजन पर। और यहाँ पर भी कुछ बातें होंगी और हमारी सहयोगियों से भी बातें होगी जो अभी ब्लू बे बीच में है, साथ ही साथ आपकी कुछ फरमाइशें भी होगी। तो चलिए सबसे पहले एक सुंदर गीत को सुनते हैं और उसके बाद आपकी फरमाइश। ऑफकोर्स फिल्म खानदान से लिया गया यह गाना, ये मुलाकात एक बहाना है।

जी दोस्तों, यहाँ पर एक छोटी सी कविता है अनीता जी मोदालबिया की ओर से, और आप कहती हैं कि रिश्ते बनते हैं कितना ही बहुत है, सब हंसते हैं कितना ही बहुत है, हर कोई हर वक्त साथ नहीं रहता, याद करते हैं कितना ही बहुत है। तो आप किसी को याद कर रहे हैं शायद, और शायद इस कविता को सुनकर वो आपसे जो है संपर्क करने की कोशिश करे। तो चलिए, आपने फिल्म राजकुमार का गाना मांगा है, यही गाना जाएगा करुणा के नाम, अमृता के नाम, सभी दोस्तों के नाम।

जी दोस्तों, बेल्जियम से प्रकाशवती जी साथ है, दे रही हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म दरिया दिल का गाना नितिन मुकेश जी की आवाज़ में, तो चलिए यह गाना को एंजॉय करती है।

0: listening to RM3 Radio Manoranjan.
1: जी दोस्तों, चलिए हम सुनते हैं हमारे सहयोगी को सुमी जी, जो अभी ब्लू बे बीच में हैं और आपको यहाँ जानकारी देते दे हैं कि सुमी जो है वहाँ से आपसे सवाल पूछेगी और आपको, आप लिसनर्स को जो हमें अभी सुन रहे हैं, आपको जवाब देना है. तो ओवर टू यू सुमी जी. हेलो सुमी जी.
2: हेलो हेलो अनीता, और हेलो हमारे सभी लिसनर्स को. रेडियो मनोरंजन के जितने लिसनर्स इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको पता है कि आज हमारा फैमिली बीच फंडे हो रहा है. तो यहाँ से हम आपको एक सवाल करेंगे और सही जवाब देने पर आपको मिस्टिक वर्ल्ड की ओर से 500 रुपये का एक गिफ्ट वाउचर मिलेगा. और आपको जवाब जो है अनीता को स्टूडियो में फ़ोन करके जवाब देना है, और अनीता आपको फोन नंबर बताएगी कि कौन से नंबर पर आपको फोन करना है, और फिर विनर को जो है गिफ्ट आकर एमबीसी में सप्ताह के दौरान कलेक्ट करना है. तो हमारा सवाल है कि इस समय एमबीसी रेडियो की टीम, रेडियो मस्ती और रेडियो मनोरंजन की टीम कौन से बीच पर फैमिली फंडे मना रही है. एमबीसी रेडियो की टीम कौन से बीच पर फैमिली फंडे इस समय मना रही है. तो अपने जवाब आप स्टूडियो में कॉल करके अनीता को दीजिए. जीतने वाले को 500 रुपए का मिस्टिक वर्ल्ड की ओर से वाउचर मिलेगा. और जितने भी हमारे लिसनर्स अगर आसपास है, हमसे आकर यहाँ मिलना चाहते हैं, तो हम 1 से 4 बजे के बीच यहाँ पर रहने वाले हैं. यहाँ पर बहुत सारे गेम्स हो रहे हैं, बहुत सारे गिफ्ट मिल रहे हैं. तो आप सभी का वेलकम हम करते हैं. आप आइए हमारे साथ जुड़िए. और आपका सवाल है, आपको याद दिला दे, इस समय फैमिली बीच फंडे कहाँ पर हो रहा है.
1: जी दोस्तों, सवाल है कि कहाँ पर जो है फैमिली फंडे हो रहा है, और आपको हमें जो है जवाब देना है 4028070 पर. हमें ज़रूर कॉल कर बताइए कि यह जो फैमिली फंडे है कहाँ हो रहा है, ज़रूर बताइए. और आपको इनाम मिलेगा म्यूज़िक, क्षमा कीजिए, मिस्टिक वर्ल्ड से 500 रुपये का इनाम मिलेगा. और आपको यहाँ जो इनाम है कलेक्ट करना है एमबीसी आकर सुबह 10 बजे से लेकर 3 बजे तक. तो फ़ोन करके हमें ज़रूर बताना कि यहाँ कहाँ हो रहा है. जी
3: यूं ही तुम मुझसे बात

0: सिखाना सफर सिखाना सफर
1: जी दोस्तों, यहां पर काफी लोग जो है हमारे साथ जुड़ गए हैं और हरीश भी बोबासा है। हरीश जी बोबासा से कार्यक्रम को सुन रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं और आपकी फरमाइश है फिल्म अप्रैल फूल का गाना तुझे प्यार करते हैं। ऑफ कोर्स यह गाना जो है जाएगा आपके किसी खास के नाम, अनु के नाम। तो चलिए मोहम्मद रफी साहब और सुमन कल्याणपुर की आवाज़ों में यह गाना सुनते हैं।

0: सुहाना सफर सुहाना सफर
1: जी दोस्तों, जो जवाब क्षमा कीजिए, जो प्रश्न सुमी जी ने पूछा था, हमें उसका विनर मिल गया है और हमारा जवाब है ब्लू बे बीच। और इसका विनर है अभिदिन अगुवन जी ऑफ लोअरवेल। और हम कहेंगे आपको कंग्रेचुलेशंस और आपको आपके वाउचर जो है यहाँ पर एमबीसी यहाँ पर एमबीसी आकर लेना है 10 बजे से लेकर 3 बजे तक। और ऑफ कोर्स ब्रिंग योर आईडी और साथ ही साथ जो है थैंक यू पार्टिसिपेट करने के लिए। आपको मिल रहा है एक वाउचर मिस्टिक वर्ल्ड की ओर से, 500 रुपये का वाउचर है। सो थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग जी। और यहाँ पर काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। यहाँ पर गीता जी मोतालोंग से साथ दे रही हैं और हम कहेंगे जो गाना आपने मांगा है ढूंढ रहे हैं लेकिन गाना नहीं मिल रहा है, इसलिए अगले गाने में आपका नाम हम जोड़ रहे हैं। साथ ही साथ लालमाची से सुनीता जी है, आप भी जो है आपका गाना नहीं मिल रहा है तो अगले गाने में ही आपका नाम हम जोड़ रहे हैं। फिल्म है इजाज़त आशा जी की आवाज़ में।

दोस्तों, कहा गया है कि धीरे धीरे समझ आ रहा है, धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ज़िंदगी उतनी आसान नहीं होती जितनी बचपन में लगा करती थी। लोग बदल जाते हैं, रिश्ते बदल जाते हैं, कभी कभी हम खुद ही बदल जाते हैं। पहले लगता था कि हर साथ हमेशा रहेगा, हर वादा पूरा होगा और हर अपना कभी दूर नहीं जाएगा। लेकिन वक्त ने सिखा दिया कि हर दुनिया में कि इस दुनिया में कुछ भी हमेशा नहीं रहता। धीरे धीरे समझ आ रहा है कि ज्यादा उम्मीदें ही ज्यादा दर्द देती हैं। जिसे दिल से अपना समझो वो भी एक दिन बिना वजह बदल सकता है। अब किसी के जाने से जिंदगी रुकती नहीं,

बस थोड़ा सा खालीपन रह जाता है जो वक्त के साथ आदत बन जाता है

0: us?
1: जी दोस्तों, हमारे साथ जुड़ी हुई है अनीता जी फिकम फ्लाक से, और हम जानते हैं कि आप अपने गाने का इंतज़ार कर रही है और आपने माँ पर गाना मांगा, तो हम एक अलग गाना आपको यहाँ पर पेश करेंगे, क्योंकि जो गाना आप मांग रही है वो नहीं मिल रही है, क्षमा करना इसके लिए। और यही गाना जाएगा आपकी सखी इंदिरा श्यामा मीरा सिनत कविराज साधना मालिनी कविता के लिए और सभी रेडियो मनोरंजन की टीम के लिए, थैंक यू इसके लिए जी। तो चलिए, यहाँ गाना आपके लिए, आपके परिवार वालों के लिए, और आप जो हैं बीच में फैमिली फ्रेंड ओके मना रही है अंतिश जी, आपने ओके तो आपने यहाँ गाना मांगा है, लेकिन हम आपके लिए राजा और रंग का गाना आप चला रहे हैं, सो एंजॉय।

जी दोस्तों, अगले गाने के साथ ही हमारा कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा। आपने साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन लोगों को लाइन नहीं मिली है, अगले सप्ताह हम फिर हाजिर होंगे, बेशक फ़ोन करना। एंड थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और जो अंतिम गाना चल रहा है प्रीतम जी की ओर से, न्यू ग्रोव से हैं, वाइफ कविता के नाम, वैसे फिल्म संगम का गाना मांग रहे हैं, तो इसी गाने के साथ हम कहेंगे आपको नमस्कार। और उसके बाद 2 बजे के बाद आप सुन पाएंगे इतिहास के झरोके कार्यक्रम अलका जी के साथ। तो टेक केयर, बाय।

0: सुनते समाचार याचना जी के साथ नमस्कार।
1: नमस्कार सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन की दर में कमी आने की संभावना बनी हुई है। अफ्रीकन डेवलपमेंट बैंक की रिपोर्ट अफ्रीकन इकोनॉमिक आउटलुक 2026 के अनुसार महंगाई दर 2026 में 6% से घटकर 2027 में 3.9% हो सकती है। अफ्रीकी विकास बैंक का यह भी अनुमान है कि स्थानीय बाजार में कीमतों पर पड़ने वाला दबाव धीरे धीरे कम होगा। हालांकि रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि देश के सामने कई चुनौतियां अब भी बनी हुई हैं, विशेषकर सार्वजनिक वित्त और विदेशी व्यापार के क्षेत्र में देश को उच्च सरकारी खर्च का सामना करना पड़ सकता है, जबकि आयात का स्तर निर्यात की तुलना में अधिक बने रहने की संभावना है। 24 घंटों के भीतर दो दंपतियों के बीच दो त्रासदियां। कथबोन में नीलम मुनिसामी ने यह स्वीकार किया कि गुरुवार रात एक झगड़े के बाद उसने अपने साथी फैब्रिनो क्यूपिडों की हत्या की। उसका ये आरोप है कि मृतक ने उसे सिंथेटिक ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया था। और कल सुबह लेसालिन में प्रवेश चेंगिया ने अपनी संगिनी स्नेहा जूतन पर कई बार चाकू से हमला किया। पोटली साउथ की सीआईडी द्वारा पूछताछ की जाने पर 29 वर्षीय संदिग्ध ने अपनी हरकत की वजह बेवफाई बताई। विदेश में ईरान और अमेरिका के बीच कुवैत और बहरीन पर मिसाइल दागे गए हैं, जिससे सीज फायर यानी युद्ध विराम भंग होने का खतरा उमड़ आया है। अमेरिकी सेना ने ईरान द्वारा दागी गई मिसाइलों को रोका, जबकि कुवैत हवाई अड्डे पर आसपास ड्रोन की मौजूदगी के कारण उड़ानें प्रभावित हुई हैं। ये थी अब तक की खबरें। थोड़ी देर में शोक समाचार। विक्टोरिया रोड थुरडुस में 82 साल के 82 ईयर्स ओल्ड के श्री देवेंद्र हरिमन जो देविन के नाम से जरा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके विधवा संजीता हरिमन के मकान विक्टोरिया रोड थुरडुस से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है।
2: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.6.

0: 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio. Manoranjan Radio.
2: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.
3: इतिहास के झरोखों से
4: नमस्कार श्रोताओं, आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है इतिहास के झरोखों से। और आप हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं। अभी बस हम विषय आपको देंगे 4028070 पर। मेरे साथ आज तकनीकी सहायिका के रूप में अनीता जी जुड़ी हैं, मैं उनकी हृदय से धन्यवादी हूँ। तो श्रोताओं, पर्यावरण को लेकर पूरी दुनिया बड़ी चिंतित है। चिंता तो बहुत है, बड़ी बड़ी कमेटीज, बड़े बड़ी कॉन्फ्रेंस, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े देश, क्या बताएं आपसे। हर चौथे दिन, हर साल, हर सप्ताह कहीं ना कहीं पर्यावरण को लेकर चिंता की अभिव्यक्ति की जा रही है। लेकिन व्यवहार में यदि हम देखें तो हम पर्यावरण के प्रति जागरूक नहीं हैं। इधर कुछ खाते हैं तो प्लास्टिक मज़े से फेंक देते हैं। हमें लगता है कि हमारा पर्स या हमारी पॉकेट तो साफ सुथरी होनी चाहिए, लेकिन हम ये नहीं सोचते कि जब हमने उसको सही जगह पर नहीं फेंका तो बारिश के कारण, तूफान के कारण, हवा के कारण वह प्लास्टिक उड़कर न जाने कहाँ पहुँच सकता है और किसकी मौत का कारण बन सकता है। नालियों में फंस गया तो बाढ़ आ सकती है, समुद्र में चला गया तो समुद्री जीव, उनका जीवन नष्ट हो सकता है। यदि किसी जानवर ने गलती से उसमें भोजन की महक के कारण उसे खा लिया तो उसके अंदर की इंटेस्टाइन डैमेज हो सकती है। श्रोताओं, पर्यावरण की बातों को करते करते हम सब बहुत बार जब इकट्ठे बैठते हैं तो यही बोलते हैं, बहुत गर्मी हो गई है, अब की बार बहुत ठंड हो रही है। ये चिंताएँ तो हम व्यक्त करते हैं, लेकिन हमारी जीवन पद्धति या हमारी लाइफ स्टाइल बिल्कुल नहीं बदल रहा है। जब तक उसे नहीं बदलेंगे तब तक ये पर्यावरण की चिंता एक कागजी चिंता दिखाई देती है। उदाहरण के लिए देखिए, ऐसे स्थल जिन पर मनुष्य अभी बहुत पहुंचा नहीं, वहाँ पर भी प्रगति के नाम पर जंगलों की कटाई, पहाड़ों की कटाई, क्योंकि सभी को सड़कें चाहिए, होटल चाहिए, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ लोगों को लेकर जानी है। और जब पर्यावरण के नाम पर या टूरिज्म को बढ़ावा देने के नाम पर किसी देश को इस तरह का नुकसान सहना पड़ता है तो उसके परिणाम जब दिखते हैं तो हम कहते हैं कि पर्यावरण खराब हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग है। लेकिन हमारी जीवन पद्धति कैसी है? आगे भी लोग तीर्थ यात्राएं करते थे, बहुत दूर दूर तक पैदल जाते थे। श्रवण कुमार किसको याद नहीं है, अपने माता पिता को कांवड़ में बिठा कर ले जा रहा था। तो श्रोताओं, यात्रा मनुष्य का स्वभाव है, वह करता है, कभी व्यापार के लिए, कभी धर्म के नाम पर, कभी कोई नई जगह ढूंढने के नाम पर, कभी आविष्कार, कभी पर्यटन। लेकिन आज हम सुविधा भोगी हो गए हैं। हम यदि धर्म के नाम पर भी यात्रा करते हैं तो पूरी सुविधाएं देखना चाहते हैं। इन सुविधाओं के चलते वह जो धर्म के साथ संयम, कठिनाइयाँ जुड़ी थी, वह सब कम होती जा रही हैं। और तो और, पर्यटन के नाम पर हम प्रकृति का सुख लेना चाहते हैं, लेकिन हमारे साथ पीने के लिए बोतलें होती हैं, कान होते हैं, हमारे साथ प्लास्टिक के बहुत से पैकेट्स होते हैं ताकि हमें खाने पीने की कोई सुविधा असुविधा ना हो। तो श्रोताओं, इन सब घर से तो बोझ लेकर चलते हैं, लेकिन वापसी पर खाली प्लास्टिक, खाली कान का बोझ भी हमको भारी लगता है। हम सब स्वयं दोषी हैं अपने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो चलिए इस गीत को सुनते हैं, फिर आपके साथ जुड़ते हैं।

0: इतिहास के झरोखों से।
1: श्रोताओं, सचमुच इतिहास के झरोखों से यदि पर्यावरण की समस्या को समझने का प्रयास नहीं किया तो शायद भविष्य में कभी कभी हम भारतीय दर्शन की ओर मुड़े तो एक प्रलय शब्द आता है, कभी उसका सामना न हमें करना पड़ जाए। पर्यावरण शब्द बड़ा ही पुराना संस्कृत का शब्द है जो बना है परि जमा आवरण से। परि माने चारों ओर और आवरण जो परिवेश है हमारा, अर्थात चर अचर जितने भी प्राणी हैं, पत्थर, वृक्ष, पहाड़, पानी, मनुष्य, जानवर, पक्षी, कोई भी हो सकता है, चर अचर सभी प्राणियों को जिसने चारों ओर से घेरा हुआ है वह है हमारा पर्यावरण। और हमने अपने पर्यावरण को जो प्रदूषण दिया, आज तो प्रदूषण के रूप भी कितने बदल गए हैं। पहले तो जल प्रदूषण होता था, पृथ्वी प्रदूषण होने लग गया, मिट्टी प्रदूषण होने लगा, वायु प्रदूषण तो पूछिए ही मत। अब तो कई शहरों में, टोक्यो हो, दिल्ली हो, कलकत्ता हो, मुंबई हो, ऐसे शहरों में तो अब व्यक्ति को मास्क लगाना पड़ता है। यहाँ तक कि चीन के भी जो प्रगतिशील शहर हैं वहाँ पर भी लोग वर्किंग आवर्स में, पीक आवर्स में मुख पर मास्क लगा के चलते हैं। और तो और ध्वनि प्रदूषण देखिए, हम सोचते हैं हम तो बहुत नाच गा रहे हैं, गाड़ी बढ़िया से चला रहे हैं, लेकिन हम नहीं जानते कि जो हार्ट पेशेंट होते हैं, जब सड़क पर एक गाड़ी बहुत तेज़ म्यूज़िक बजाते हुए निकलती है तो हार्ट पेशेंट की हार्ट बीट बढ़ जाती है। कुछ भी हो सकता है, बच्चे गहरी नींद में सोते हुए जाग उठते हैं। तो श्रोताओं, हम तो अपनी मस्ती में है ना, लेकिन हम नहीं समझते कि हम कितना ध्वनि प्रदूषण कर रहे हैं। और फिर आज जो रासायनिक प्रदूषण है उसकी तो कहानी ही अजब गजब है। हमारे मोबाइल, हमारे कंप्यूटर, हमारे लैपटॉप लाखों की संख्या में आउटडेटेड होते हैं, बेकार होते हैं, उसमें से रेडियो एक्टिव विकिरण निकलते हैं, वह जब पृथ्वी में या गंद में फेंके जाते हैं, कूड़े का पहाड़ तो बढ़ता ही है, लेकिन वर्षों बाद भूमि जो है, मिट्टी जो है, वह रासायनिक प्रदूषण से दूषित हो जाती है। और फिर जब बारिश होती है तो यही सब चीज़ें बहकर पूरी मिट्टी में इधर से उधर जाती हैं। इसीलिए आपको कभी कभी लगता नहीं है कि आजकल अस्पताल में जहाँ जाइए सब कुछ भरा पड़ा है, एक बिस्तर कभी खाली नहीं होता कि दो मरीज आ जाते हैं, क्योंकि भोजन, मिट्टी, वायु, जल, कहाँ प्रदूषण नहीं है। जब सब प्रदूषण है तो विचार कहाँ से अच्छे होंगे। तो श्रोताओं, ये जो पर्यावरण दिवस है, आज विश्व पर्यावरण दिवस कहलाता है, जो 5 जून को पूरा विश्व मनाता है, लेकिन मनाने से समस्या नहीं सुलझती, कुछ करने से सुलझती है। तो आइए सुनते हैं गीत।

और श्रोताओं, इतिहास के पन्नों में जब हम देखेंगे तो ये जो 5 जून का दिन है, आज संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाता है और इसको इको डे भी कहा जाता है। पहली बार आप सोचिए 52 वर्ष पहले, 52 ईयर्स बैक अगर हम जाएं तो 1973 में इसके बारे में विचार किया गया था और 1972 से जागरूकता हो रही थी, बार बार लग रहा था। सोचिए 1972 कहाँ है, हम में से कितने लोग तब पैदा भी नहीं हुए थे और प्रदूषण की चर्चा होने लग गई थी। विश्व पर्यावरण की चिंता, जो वैज्ञानिक पर्यावरण पर काम करते हैं वे अपने रिसर्च पेपर्स में यह बात बार बार देने लगे थे, क्योंकि आइसबर्ग्स भी बड़े बड़े टूटने लग गए थे और जब ये सब टूटेंगे, जबकि आइसबर्ग्स वहाँ पर जमे हुए रहने चाहिए, पर गर्मी बढ़ रही है। तो श्रोताओं, इस जागरूकता के चलते आज 52 वर्ष हो गए हैं हमको पर्यावरण दिवस मनाते हुए, लेकिन स्थिति सुधरने की बजाय और अधिक चिंताजनक हो गई है। समुद्री प्रदूषण लगातार बढ़ रहा है, अब तो समुद्र में तेल का भी रिसाव हो जाता है। पता नहीं चलता कब कौन से जहाज से कितना तेल बह जाएगा और कितने बेचारे अबोध, जिनका कोई दोष नहीं, निर्दोष छोटे छोटे जीव जो हैं तट पर आकर मरे हुए हमको मिलेंगे। और जनसंख्या कमी होने की बजाय निरंतर बढ़ ही रही है। वैसे तो स्थिति अजीब है, बहुत देशों में यही समस्या है कि अब हमारे पास बच्चों की कमी है, लोग अब उतने बच्चों को पैदा नहीं कर रहे हैं, लेकिन दवाइयाँ, इलाज की सुविधा, उसके कारण एजिंग पॉपुलेशन तो बढ़ ही रही है। बहुत बड़े बड़े देशों में जापान तो इस समय एजिंग पॉपुलेशन से जूझ रहा है और मॉरिशस भी अब कुछ पीछे नहीं है। और इसके साथ साथ ग्लोबल वार्मिंग, देखिए जून का महीना आ गया लेकिन अभी भी बीच बीच में हम कितनी गर्मी महसूस करते हैं, और भारत में तो इस समय गर्मी पूछिए ही मत। फिर टिकाऊ विकास, अब टिकाऊ शब्द क्यों लिया है।

कार्य तो करता ही है मनुष्य, उसका स्वभाव है। कभी उसके पास झोंपड़ी थी, उसने मकान बनाया, मकान में फिर एसी भी डाला उसने, और अब मंजिला मकान बना दिया उसने। लेकिन टिकाऊ विकास का मतलब क्या है कि आप यदि एक पेड़ काट रहे हैं तो क्या 10 पेड़ लगा रहे हैं आप? एक जंगल को यदि आप नष्ट कर रहे हैं तो क्या 5 जंगल लगाने की तैयारी कर रहे हैं? ऐसा विकास जिसमें पृथ्वी को उधेड़ने की तैयारी हो, ऐसा विकास पर्यावरण को कैसे सुरक्षा दे सकता है? और इसके साथ साथ वन्य जीवों के प्रति अपराध तो बहुत बढ़ रहा है। आप सभी देखते हैं जहाँ पर पैसे की भरमार, दिखावे की भरमार, वहाँ पर पर्स, जैकेट, बेल्ट, ये सब चीज़ें, कभी मगरमच्छ के चमड़े, कभी ऐसे वन्य जीव सर्प के चमड़े, इन सब से बनाकर महंगे से महंगे खरीदे जाते हैं और इसका दिखावा किया जाता है। कितने देशों में बैन है, आप सोचिए, ऐसी चीज़ों को बैन करना पड़ रहा है, जबकि मनुष्य के भीतर खुद जागरूकता होनी चाहिए कि मैं अपने आप को सजाने के लिए क्या किसी जीव को मारूंगा? अगर ये चीज़ नहीं अंदर पैदा होती तो पर्यावरण की समस्या, श्रोताओं, कठिन ही है उसे सुलझाना। 52 से 100 वर्ष हो जाएंगे लेकिन यह समस्या और बढ़ती ही जाएगी।

0: इतिहास के झरोखों से
1: श्रोताओं, इतिहास के झरोखों से यदि हम झांकें तो धरती को हमने माँ कहा, नदियों को हमने माँ कहा, और आज माँ के आंचल को ही गंदा करने में लगे हुए हैं। अरे जो धरती को ना बचा पाएगा वह खुद को क्या बचाएगा? जो मिट्टी की सेवा ना कर पाएगा वह खुद अपने परिवार की या अपनी क्या सेवा करेगा? आप सभी को पता है हमारे यहाँ पे तो वैदिक दर्शन में ये कहा जाता है कि एक पेड़ 100 पुत्रों के समान है, और पेड़ है तो कल है। वास्तव में आज हम एक पुत्र तो लाना चाहते हैं किसी भी तरह से, लेकिन पेड़ नहीं लगाना चाहते। जन्मदिन पर अपने बच्चों को बड़े बड़े उपहार देना चाहते हैं, लेकिन हम में से कितने हैं जो अपने बच्चों को गमले या पौधों के लिए प्रेरणा देते हैं और उनके भीतर प्रकृति के लिए संवेदना जागृत करते हैं? पर्यावरण हमको सब कुछ देता है, क्या हमसे मांगता है? संरक्षण। पेड़ कितना फल देता है, बूढ़ा भी हो जाता है तब भी फल देता ही रहता है, और अंततः उसकी लकड़ी भी काम आती है। लेकिन हम एक पेड़ को काटने के बाद क्या दूसरा पेड़ लगाने का प्रयास करते हैं? श्रोताओं, एक माली पेड़ लगा रहा था आम का। उसका बेटा उसके पास आया। उसने कहा, पिताजी आप तो इतने बूढ़े हो रहे हैं, ये आम का पेड़ किसके लिए लगा रहे हैं? आप इसके फल नहीं खा पाएंगे। उन्होंने हंस कर कहा, बेटा जिस आम का फल हम सब खा रहे हैं उसको तुम्हारे दादा ने लगाया था। आज मेरा फर्ज है कि मैं जाने से पहले एक और आम का पेड़ लगा के जाऊं। कल तुम्हारा फर्ज होगा कि तुम अगली जनरेशन के लिए एक और पेड़ लगा के जाओ। हमें कभी कभी लगता है कि 4 दिन की जिंदगी है, क्या फर्क पड़ता

सकता है, लेकिन ये चार दिन की जिंदगी नहीं है श्रोताओं। हमारी पीढ़ियां हमारा इंतजार कर रही हैं, हमारे बच्चे कल को सांस लेंगे, हमारे बच्चे कल को इसी धरती में उपजी हुई चीज़ों को खाएंगे। यदि हमने इसकी सुरक्षा संरक्षण पर ध्यान नहीं दिया तो यह समस्या बढ़ती ही चली जाएगी। हर साल 5 जून को हम मनाते हैं, पर्यावरण की रक्षा के लिए जागरूकता की बात करते हैं। 1972 से 1974 में आज 2026 तक हम इसी काम में लगे हुए हैं और हर बार एक नया थीम पूरी दुनिया को देते हैं। लेकिन कभी कभी थीम केवल पेपर थीम ही बनकर रह जाता है, क्योंकि संसार के विकसित देश अपनी सुविधाओं को बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहते हैं। और तो और, जो देश विकासशील हैं, जो देश अविकसित हैं, उन देशों का शोषण करने में भी पीछे नहीं हटते हैं। तो कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हम कागज़ भी मैं तो नहीं कहूँगी, क्योंकि जितना कागज़ आप इस्तेमाल करते हैं उतने पेड़ कटते हैं। कपड़े का देखिए, पहले बस्ते होते थे, बैग होते थे, आज की युवा पीढ़ी थोड़ा जाग रही है। अब आप देखिए यूनिवर्सिटी में बच्चों के हाथ में प्लास्टिक नहीं, एक कपड़े का बैग होता है, और ये बैग बहुत दिनों तक चलता है, तो ये हमारे पर्यावरण को कम नुकसान पहुँचाता है।

श्रोताओं, पर्यावरण को यदि बचाना है तो कुछ चीज़ों के नियम अपने जीवन में तो लेने ही पड़ेंगे ना। सबसे पहला, कम से कम प्लास्टिक का इस्तेमाल करें। बच तो नहीं सकते, क्योंकि सालों की आदतें हैं और ऐसी आदतें हैं कि पहले ही प्लास्टिक बैग ढूंढते हैं, घर से निकलने से पहले प्लास्टिक बैग ढूंढते हैं, बाज़ार में दुकानदार को कहते हैं तुम हमें एक प्लास्टिक बैग दे दो। श्रोता हमारे साथ जुड़ने लगे हैं तो हम एक श्रोता को अभी लेते हैं। इसके साथ साथ पानी को बचाना होगा। पानी के लिए हमको नल बहुत ध्यान रखना चाहिए कि फालतू ना बहे। कभी कभी हम सफाई के नाम पर, यहाँ तक कि बिजली वाला प्रेशर लेकर ऐसे धो रहे होते हैं कि उसके बाद शायद मिट्टी की या धूल की एक बूंद भी हमारे घर में नहीं आएगी। ऐसा नहीं हो सकता, तो क्यों इतना पानी बहाना? सिंपल झाड़ू लगा के एक पोछा लगाया जा सकता है। बारिश के पानी को जो हमारे पास ड्रम घर में खाली पड़े हैं उनमें इकट्ठा किया जा सकता है। पौधों को वह पानी दिया जा सकता है, कपड़ों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पोछे के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, और अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ या पौधा तो ज़रूर लगाएं। तभी तो वह पेड़ बनेगा ना। एक पौधा, किसी फूल का, फल का ज़रूर लगाना चाहिए। यह पूरे पर्यावरण या प्रकृति को हमारी ओर से एक बहुत बड़ा उपहार होगा। और फिर अब तो सरकार कितनी मदद करती है, गीला सूखा, अलग ढंग के डस्टबिन है, और ऐसे डस्टबिन भी दिए गए जिसमें हम अपने सब्जियों के छिलके, फलों के छिलकों को इकट्ठा करके रख सकते हैं और थोड़ी थोड़ी मिट्टी डालते जाएं तो खाद बन जाती है। अभी खरीदने जाइए, कितनी महंगी खाद है, लेकिन हमारे थोड़े से प्रयास से हमें खाद लगातार मिलने लगती है और हमारे पौधे बलशाली होते हैं। फिर मॉरिशस में साइकिल चलाने की आदत तो उतनी नहीं है, पर चलो पैदल चल सकते हैं, साइकिल चला सकते हैं, और जितना हो सके बस का इस्तेमाल करें, क्योंकि एक बस में 50 से 60 लोग होते हैं और गाड़ी में हम देखते हैं या तो अकेला, दुकेला या 3 या 4 लोग होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहती कि गाड़ी नहीं चाहिए। जो लोग नौकरी करते हैं, जिनके पास काम ज़्यादा है, जिनका मानसिक काम बहुत ज़्यादा होता है, बिना गाड़ी के उनके लिए संभावना नहीं है कि वे एक घंटा या आधा घंटा बस की इंतज़ार करें।

पर जब कभी और ऐसा चांस है, नजदीक के बाजार जाना है, नजदीक कुछ खरीदना है, तो हमें बस का इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो पर्यावरण है उसके लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि निश्चित है यदि पेड़ कटेंगे तो हमारी सांसें रुकने लगेंगी। अभी देखिए, पानी रुकेगा तो प्यास बढ़ने लग जाएगी। आज पेड़ जब इतने कट रहे हैं तो अस्थमा या लंग्स से संबंधित बीमारियां कितनी बढ़ती जा रही हैं, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। हम दवाइयां लेना चाहते हैं, इन्हेलर लेना चाहते हैं, हम हॉस्पिटल जाकर बड़ा इन्हेलर ले लेते हैं, लेकिन सोचते नहीं कि इसका कारण क्या है कि हमारे पास ऑक्सीजन की कमी हो रही है। इसी तरह से प्रकृति से बैर अगर हम करें तो ये जीवन हमारा समाप्त होने लग जाएगा। श्रोताओं, बहुत ज़रूरी है जीवन और प्रकृति की जो पटरी है वो बराबर चलनी चाहिए, ये एक लाइन पर नहीं चल सकता है। जैसे नदी, यदि एक किनारा ना हो तो पानी बाहर फैल जाएगा, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि दोनों को साथ लेकर हम चलें।

0: आशा जी जुड़ी हैं। हेलो आशा जी।
1: हेलो, नमस्ते बहन जी।
0: हाँ, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, और आप कैसी हैं?
0: बिल्कुल, सुनाइए क्या सुनाएंगी आप?
1: आप पर्यावरण पर बात कर
0: बिल्कुल रही बिल्कुल
1: है?
0: पर्यावरण पर बात कर रही हूँ मैं जी।
1: हर साल हम 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाते हैं
0: जी।
1: तो मैं ये कहूँगी बहन जी कि झूमे की धरती मग्न होगा गगन, जब स्वच्छ रहेगा सारा पर्यावरण, शुद्ध हो जाएगा सारा वातावरण, स्वस्थ होगा तन और मन।
0: बहुत धन्यवाद आशा जी, आप हर बार एक प्यारी सी कविता लेकर आती हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
1: और एक विचार ये देना चाहूंगी बहन जी कि देखिए, अगर हम अपना घर आंगन साफ रखते हैं तो कोई बाहर का आकर उसमें कचरा फेंकेगा तो हमें बुरा लगेगा। तो हमें ये सोचना चाहिए कि यह सारा देश ही हमारा अपना घर है। यदि हम अपने गलियों को, सड़कों को, समुद्र तटों को और हर देश के कोने कोने को स्वच्छ रखेंगे, पवित्र रखेंगे, तो हमें लगेगा कि हमारा अपना घर ही स्वच्छ है, सुंदर है, पर्यावरण खिल उठेगा, पेड़ पौधे, डालियां सब खिल उठेंगे, स्वच्छ होगा। और एक जरूरी बात ध्यान देने योग्य ये भी होता है बहन जी कि कहते हम यह कहते हैं कि हाँ, हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए, अपने समुद्र तटों को स्वच्छ रखना चाहिए, तो इसका एक मुख्य कारण ये भी है, यदि पर्यावरण स्वच्छ होगा तो हमारा स्वास्थ्य भी तो स्वस्थ होगा, प्रदूषित नहीं होगी हवा, हवा सब शुद्ध रहेंगी, तो हमारे बच्चे भी स्वस्थ रहेंगे, हम भी स्वस्थ होंगे। और जैसे कि अभी जब वीकेंड में हम घूमने जाते हैं तो हवा शुद्ध रहेगी,
0: तो
1: हमारे स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होगा। तो मैं यही एक विचार देना चाहूंगी बहन जी कि जहाँ तक हो सके देश के लिए, पर्यावरण के लिए और खुद अपने स्वास्थ्य के लिए पर्यावरण को स्वच्छ रखना अति आवश्यक।
0: बहुत सुंदर आशा जी, बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनको भी लेते हैं, शायद लाइन कट गई है, तो अपने गीत को हम जारी करते हैं।

0: हेलो।
1: हाँ, कैसी
0: दीदी
1: हैं?
0: प्रणाम। मैं अच्छी हूँ दीदी, आप कैसी हैं?
1: बिल्कुल ठीक हूँ, आप?
0: हाँ, मैं राधा मोचिदा से।
1: हाँ, आज क्या सुनाएंगी राधा जी, बोलिए।
0: जी, मैं यही बोलूंगी, मैं ये भी शुरू से बराबर आपके प्रोग्राम सुनती आ रही हूँ।
1: धन्यवाद।
0: हाँ, हेलो हेलो।
1: आपको?
0: हाँ जी, तो ये मैं बोल रही हूँ कि पर्यावरण पर आप बात करी है, बहुत अच्छा विषय है, लेकिन हम जब रास्ते में जाते हैं ना, कहीं दूर बस में या कहीं, तो
1: हाँ,
0: देखते हैं कि जहाँ पर गन्ने के खेत हैं, कोई सुनसान जगह गली है, तो वहां पर बहुत से प्लास्टिक बैग के कूड़े रखे
1: जी
0: हैं,
1: जी
0: दूर
1: बिल्कुल।
0: से आकर लोग छोड़ कर चले जाते हैं, और वो जब कुत्ते जानवर आदि जाते हैं खाना ढूंढने, तो वो फाड़ देते हैं वो प्लास्टिक
1: और
0: को,
1: जबकि
0: तो
1: सुविधा
0: सब।
1: है, हर सप्ताह में
0: हाँ
1: एक बार बड़ी
0: हाँ
1: गाड़ी
0: मतलब
1: आती है,
0: कि
1: सबका कूड़ा लेकर जाती है।
0: अपने घर को साफ रखने के लिए वो
1: हाँ
0: गलियां को बर्बाद कर सकते हैं,
1: जी बिल्कुल।
0: तो हाँ वहां पर अगर आकर रख देते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, पहले सुबह चलने जाते थे, मैं पति के साथ,
1: जी
0: अभी कुछ दिनों से हम नहीं जा रहे हैं, हम जाते थे, वो पहुंचो गए सेंचुरिया विलास की तरफ, यूनिटे की तरफ, तो ऐसी
1: जी
0: ऐसी जगह है जहां पर जाएंगे तो वहां पर खुली हवा, बहुत पवित्र, बहुत शीतल हवा बहती है, ऐसी जगह है जहाँ पर्यावरण में, वहाँ सचमुच में पर्यावरण बहुत शुद्ध है। यहीं पर जाएंगे बैलेताओं में, हमारे यहाँ बैलेताओं में जाएंगे तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप अपने ही गांव में हैं। इतनी ठंडी हवा, इतनी शुद्ध वातावरण, शुद्ध पर्यावरण, और
1: बिल्कुल
0: वो
1: ठीक
0: जंगल
1: कह रहे
0: सा
1: हैं
0: है,
1: आप,
0: नदी
1: लेकिन
0: है,
1: इसी
0: बहुत
1: को
0: अच्छा
1: सिविक
0: है।
1: सेंस बोलते हैं ना।
0: हाँ, तो ऐसे ही हमें अपने घर के वातावरण और आसपास के वातावरण को रखना चाहिए, ताकि हम किसी
1: जी
0: और के बीमारी के कारण ना बने, दूषित ना करें वातावरण को।
1: बहुत सुंदर राधा जी,
0: हाँ
1: बहुत बहुत
0: हाँ
1: धन्यवाद जी।
0: मेरी
1: अगर
0: आपसे
1: आपकी
0: यही
1: तरह लोग
0: प्रार्थना,
1: सोचने
0: बहुत
1: लग
0: अच्छा
1: जाए
0: किया।
1: तो देश
0: हाँ,
1: और साफ हो जाएगा।
0: अगर
1: बहुत बहुत
0: गरीब रास्ते में
1: धन्यवाद
0: जाएं, देखिए आपने कुछ, किसी ने कुछ फेंक दिया है, तो इसमें हमारा कुछ घटेगा नहीं, हम छोटे नहीं हो जाएंगे,
1: जी
0: उसको
1: जी
0: उठाकर कूड़ेदान में डाल सकते हैं, जबकि रास्ते पर उसको छोड़ देंगे तो।
1: बहुत धन्यवाद, बहुत
0: हाँ
1: बहुत
0: ऐसा
1: धन्यवाद।
0: नहीं। हाँ, बहुत धन्यवाद दीदी, और शुभ दिन।

दोस्तों हमारा समय लगभग हो चला है और बस इस जिंगल के बाद हम आपसे अगले सप्ताह ही जुड़ पाएंगे। अंत में बस यही कहना चाहती हूँ कि भारतीय दर्शन में प्रकृति को बहुत ही नज़दीक माना गया है और वह जड़ नहीं है, जीवन है उसमें। पूरी सृष्टि को हम भगवान का लीला मंच मानते हैं और वृंदावन तो पूछे ही मत। वंशीवट, निधिवन, गोवर्धन पर्वत, कुंज गलियां और राम भक्ति, तो राम जब जंगल में है तो बस जंगल के पेड़ों तक से वे बात करते हैं, अपने सुख दुख की बात उसके साथ करते हैं। और तुलसीदास जी तो लिखते हैं, चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। प्रकृति और मनुष्य का संबंध न केवल भौतिक रूप से बल्कि आध्यात्मिक रूप से भी बड़ा गहरा है। यदि हम इसको नहीं समझेंगे तो शायद हम ना अपने आप को बचा पाएंगे और ना अपनी भावी पीढ़ियों को एक सुखमय जीवन दे पाएंगे। पैसा तो छोड़ जाएंगे, कंक्रीट के घर भी छोड़ जाएंगे, लंबी लंबी सांप सी सड़कें भी छोड़ जाएंगे, लेकिन स्वास्थ्य यह उनको शायद खरीदने पर भी नहीं मिलेगा। तो श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और अनीता जी को अनुमति दीजिए, नमस्कार, शुभ संध्या इस गीत के साथ।

0: संक्षिप्त समाचार यात्रा जी के साथ नमस्कार
1: सभी को नमस्कार संक्षिप्त समाचार सुनिए 24 घंटों के भीतर दो दंपतियों के बीच दो त्रासदियां कैथोबोन में नीलम निसामी ने यह स्वीकारा कि गुरुवार रात एक झगड़े के बाद उसने अपने साथी फैब्रिनो क्यूपिडों की हत्या की उसका ये आरोप है कि मृतक ने उसे सिंथेटिक ड्रग्स लेने के लिए मजबूर किया था कल सुबह लेसालिन में भावेश टेंगिया ने अपनी संगिनी स्नेहा जुतन पर कई बार चाकू से हमला किया पोर्ट लुई साउथ की सीआईडी द्वारा पूछताछ किए जाने पर 29 वर्षीय संदिग्ध ने बताया कि उसने अपनी हरकत की वजह बेवफाई बताई शुक्रवार को कुछ ही घंटों के अंतराल में दो हत्याओं की घटना सामने आई घरेलू हिंसा अब कोई ऐसा विषय नहीं जिस पर चुप्पी साध ली जाए यही संदेश आज मॉरिशस पुलिस फोर्स के मेट्रो साउथ डिवीजन द्वारा दिया गया इस अवसर पर लाइन बराक्स पोटरी में लिंग आधारित हिंसा के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया गया देश को झकझोर देने वाली इन दो दुखद घटनाओं के अगले ही दिन सरकारी अधिकारियों गैर सरकारी संगठनों विद्यार्थियों आदि ने एक साथ आकर ये संदेश दिया कि हिंसा के मामलों पर चुप्पी तोड़ना खतरनाक परिस्थितियों की जानकारी देना पीड़ितों का समर्थन करना तथा सम्मान समानता और मानवीय गरिमा पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देना अत्यंत महत्वपूर्ण है विदेशी समाचारों में ऑस्ट्रेलिया में शॉक ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हो गई वो 35 साल का था और डाइविंग करने निकला था बताया जा रहा है कि ये शॉक करीब 5 मीटर लंबा है घायल व्यक्ति को नौका के जरिए तट पर ले जाया गया जहां उसकी मौत की पुष्टि की गई एक महीने में ये इस समुद्री इलाके में हुआ दूसरा शॉक हमला है ये थी अब तक की खबरें थोड़ी देर में शोक समाचार बैठका रोड मोगू में 86 साल के 86 years old के श्री नंद कुमार मनरथ जो अनिरुद्ध के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे उनकी मृत्यु हो गई है अर्थी कल दिन के 11:30 बजे उनके दामाद राजन देवीदीन के मकान बैठका रोड मोगू से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए पितों की श्मशान भूमि ले जाई जाएगी क्रिमिशन टुमोरो एट 11:30 AM शोक में डूबे इस परिवार के प्रति हमें हमदर्दी है
2: Center 95.5 North South 95.6 East West 98.2
3: You are listening your RM3 Manoranjan Radio Manoranjan Radio
4: Your kind of music, all day, all night, right here on your one and only station.

0: कार्यक्रम में मैं किरण आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज की चर्चा में हम बात करेंगे ड्रग्स के खिलाफ जो संघर्ष चल रहा है उस पर। आपको पता है कि ड्रग्स की समस्या दिन ब दिन बदतर होती जा रही है और इस पर दो सप्ताह पहले हमने बातचीत की थी और इस पर हमसे बात करने के लिए एक डॉक्टर साहब आए थे और आज हमारे साथ दो आजसू अफसर हैं जो कि इस संघर्ष के बारे में हमसे बात करेंगे। और आप हैं सौजैत नूतन नंदू देवी जी और फिर सौजैत विमला वेद पाठक जी। आप दोनों का इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है।
1: धन्यवाद।
0: हमारे साथ दो महिलाएं हैं लेकिन ये दो महिलाएं इस देश में बहुत महत्वपूर्ण कार्य चला रही हैं और ये कार्य हैं इस देश में ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष को जारी रखना और ड्रग्स से क्या क्या हमारे समाज पर बुरा असर पड़ा है, इसके क्या गलत परिणाम हैं, इससे सभी लोग वाकिफ हैं आजकल। तो सबसे पहले तो हमें हम आप दोनों महिलाओं से दोनों अफसरों से ये जानना चाहेंगे कि लाजू जो हैं ये जो पुलिस की एक इकाई है इसका उद्देश्य क्या है, हमारे देश में हमारे समाज में आजू की क्या भूमिका रही है।
1: आजसू की जो मेन भूमिका है वो तो है ड्रग के खिलाफ एक कम्बैटिंग ड्रग्स करते हैं।
0: जी हाँ।
1: कि ड्रग को आगे वो लोग ड्रग ना ले, उनको हम लोग वो मना करते हैं, उनको सब सिखाते हैं। फिर आजसू का ये भी काम है कि रिप्रेशन का जो जहाँ पे ड्रग डीलिंग ड्रग ट्रैफिकिंग होती है वहाँ पे हम लोग पुलिस एक्शन लेते हैं, केस करते हैं, इंक्वायरीज चलाते हैं, फिर कोर्ट भेजते हैं।
0: अच्छा।
1: और लोगों को अरेस्ट करके फिर कोर्ट भेजते हैं।
0: ज़रूर। और आप लोग मानेंगे कि हमारे देश में जिस तरह से ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष हमेशा से चलता आ रहा है वैसे ही ड्रग्स की जो समस्या है वो भी हमेशा से चलती आ रही है, लेकिन इसके जो नए नए रूप हैं, जो नए नए ट्रेंड्स हैं वो सामने आ रहे हैं। और ऐसे में ये साफ स्पष्ट हो जाता है कि इसके खिलाफ जो संघर्ष भी हैं, जो हमेशा से परंपरागत संघर्ष रहा है, जिस तरह से आप लोग कार्य करते आ रहे हैं, आज उसमें नयापन लाने की आवश्यकता है। मतलब कि जिस तरह से समस्या का रूप बदल रहा है इसके खिलाफ संघर्ष, इससे निपटने के भी उपाय बदलते जा रहे हैं, तो ज़रा इस पर हमें बताएं।
1: तो जैसे जैसे अभी सबको दिख रहा है कि कैसे ये जो प्रॉब्लम है और बढ़ती जा रही है, बहुत सारे लोग ड्रग्स में जा रहे हैं, तो इसको लाइन में रखते हुए आजसू ने भी ऐसे कुछ वो कार्य कर रहे हैं, हम भी ताकि हम भी पेस टू पेस चल सके उनके साथ। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ रहे हैं हम भी वैसे वैसे एक्शंस ला रहे हैं, कानून में अमेंडमेंट्स ला रहे हैं ताकि इसके खिलाफ हम और अच्छे से लड़ सकें।
0: अच्छा। और फिर जब लड़ाई की बात हो रही है, मैंने कहा कि नए नए रूप नई नई समस्याएं उभर कर सामने आ रहे हैं, तो सबसे जो पहला सवाल मन में आता है वो ये कि आज के दौर में ड्रग्स के हम देख रहे हैं बहुत सारे रूप हैं, तो ज़रा ड्रग्स के मतलब कि किस किस रूप में ड्रग्स आज उपलब्ध हैं यही पता लगाना सबसे पहले आप लोगों का काम होगा, फिर इसका जो संघर्ष है इसके खिलाफ जो कार्रवाई है वो आप स्थापित कर सकते हैं। तो जो ड्रग्स के नए रूप हैं, नई चीज़ें आ रही हैं समाज में, देश में, देश विदेश में, ज़रा इस पर हमें बताएं।
2: हाँ, तो किरण जी, नया नया ड्रग्स तो है
0: जी
2: बहुत सारा, लेकिन पिछले 5 साल से हम देख रहे हैं कैनाबिस जो है, गांजा जिसको बोलते हैं, और जो एओएन है और सिमिक सिंथेटिक जो है, सिंथेटिक ड्रग्स जो है उसको सिमिक अभी बोलते हैं, तो वो नए प्रकार से अब मार्केट में आया है। जैसे एक सबसे पिछला प्रकार है, जैसे एक पेपर को लेके वो लोग सिमिक उसमें डालते हैं, फिर उसको काट काट कर छोटा सा टुकड़ा सिगरेट के जैसा इतना बड़ा उसमें डालते हैं, फिर इतना आसान है वो, जैसे मार्केटिंग करना उसका, उसको बेचना, उपलब्ध करना उसको बहुत बहुत आसान है। इसीलिए वो युवा जो है उसको बहुत ज़्यादा ले रहे हैं अभी।
0: और फिर जब सिंथेटिक की बात हो रही है तो एक मन में एक डर सा लगता है, और ये समस्या जो ड्रग्स की है वो आज कह सकते हैं घर घर की बात लगभग हो चुकी है। आप पहले तो ड्रग्स के बारे में हम सुनते थे, वीडियोस में देखते थे, लेकिन आज कल जब आप गाड़ी लेकर निकलेंगे बाहर

0: तो ये नज़ारा ही हमारा जो लैंडस्केप है वो बदल चुका है। और अभी हमने पर्यावरण दिवस मनाया, पर्यावरण की जब बात करते हैं, नज़ारों की जब बात करते हैं, तो हमारे देश की जो छवि है वो ये ड्रग्स की समस्या से जो ग्रस्त है, जो लोग वो बीमार भी हो सकते हैं चाहे कुछ भी हो, लेकिन वो हमारे देश की छवि का एक हिस्सा बन चुके हैं। और ऐसे में जब आपने शिमिक कहा, सिंथेटिक ड्रग्स, सिंथेटिक ड्रग्स, इसका क्या प्रभाव पड़ता है? सभी लोग ये नाम सुनकर ही डर जाते हैं, तो क्यों डरते हैं और क्यों ऐसा हो रहा है कि हर एक व्यक्ति जो किसी खंभे से कोई झूल रहा है या फिर कोई पड़ा हुआ है नीचे, तो क्या है ये सिंथेटिक?
1: तो थोड़ा भोजपुरी में बात करना
0: चाहूँगी। हाँ, जरूर भोजपुरी बोली जाए। हाँ,
1: तो जैसे कि देखा तो रोज के फेसबुक में, टिकटॉक में, रोज के सब मोशन टिकटॉक फेसबुक में देखे जाए जा, जे एक जना बा बड़ो सा सैंती छिक ले बा, तो कौन पोजिशन में बा, कौन हाल में बा, वो बेहाल बा।
0: जरूर
1: कोनो खम्बा से जैसे बोलो थोड़ा थरा होल बा, कोनो लेन जाता आगे जाए कि पीछे जाए।
0: हाँ,
1: जैसे बोलो तैसा है लादोग भी समझे हो गल बात है अब।
0: हाँ,
1: जैसे 20 साल पहले रहा वो अब ऐसे नहीं बा, बहुत मेलांज हो गया लादोग लोग में। अलो तो हवे खातिन हो लिफे हुआ जीफेरा लोग होता, 5 साल आगे नहीं लोग होता है सब में। जैसे हबी बोला तो ढेर लोग होता हमें कि रोज के रोज बहुत कॉमन हो गल बा, जैसे बोले कि चाहे
0: कॉमन हो गल बा। और बोला चला कि जस्ती खतरनाक भी बा।
1: हाँ, जस्ती खतरनाक सर ए बस की जाने ना साइंटिफिक में कोनो चीज जना ला ओकर में, जैसे हेरोइन तो हेरोइन है, कैनाबिस तो कैनाबिस है, सिंथेटिक में नहीं जमना कौन चीज ओकर में डाले हुए सर, बस कि रोज के एगो क्वालिटी नुवो प्रोड्यू ओकर में डाले रहन सर। बस कि जब FSL भेजी ला सर हमने सिंथेटिक जन सेजी कर ला जा, तो देखब ओकर जीफा का नो लिख लेला।
0: हाँ
1: सर, जे एक एक चीज ओकर में नहीं बा, हमेशा वो लोग सहज भी करते रहे ला।
0: जरूर। हाँ, और अगर मैं खतरनाक खतरनाक जो और एक से इंसान के मतलब कैसन खतरा बा जे ई लेवता?
1: तो देखब कि लाद्रोग कोनो लाद्रोग है सर्टू साइंटिफिक वो ढेर प्रॉब्लमैटिक है, ढेर घर में देखब लड़ाई झगड़ा हुआ था, ढेर घर में देख लड़का लोग माँ बाप के मारत बन सर, लड़का लोग माँ बाप के जान निकाल दे हुआ था।
0: हाँ,
1: हयो हुआ था सगरो तो सुना था उसे, तो हये साइंस छी के ओकर मेफे है बहुत दौजेरे है। अरे हम बोलब सर युवा लोग के छुबे के नहीं उसब।
0: और ये भी सुना थे जा कि जब ई ओवरडोज ले लेबा तो कितने जना के मृत्यु भी हो जाता।
1: हाँ, कितने
0: मतलब
1: जना
0: कि लोग के स्वास्थ्य के सबसे पहला खतरा बा,
1: स्वास्थ्य के सबसे पहला खतरा, फैमिली में लोग के खतरा, बस की रोज के रोज जैसे पैसा चाहे ना माँ बाप से लड़ाई करे रहन सर, झगड़ा करे रहन सर,
0: काम भी नहीं सकें सर,
1: काम भी नहीं सकें सर, बस कि वो लोग राजिक्षों में पड़ गए हमन सर, वो लोग की चला एगो ट्रीटमेंट, एगो निमन ट्रीटमेंट नहीं चला, देखे को लेके एगो क्रिमिनल हस पर ऐसे चला लोग एक मजे कॉम्पासियों थोड़ा चला रहे के हमें धन के दिल में, बस कि वो लोग नहीं खुशी रह रहा सर है ऐसे में रह के सकेला एगो कामहार डाल दे हो सकेला एगो सही खातिन वो लोग सुन ले बा लादो साइंटिफिक तो एक ज्यादा सही करे तैसे सही करला में वो लोग जैसे बढ़िया
0: पीएस
1: में तसे हो गए
0: आधारित बा ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष के लेके हमने के देश में। और इस विषय पर बात करत हवन जा नूतन जी और विमला जी, दुगो आजसु के अवसर आज हमने संगे हवन, और हमने के जितना मन में सवाल बा और जितना हमने के देश में जो चलता ये सब समस्या से कैसे निपटल जाता, कैसे पुलिस के ई इकाई जो बा आजसू एकर से निपटता, ये सब बद हम बात करत है जा। और ये दोनों महिला हमने के ये सब सवाल के जवाब देवत हवन जा। फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक।

आप सब कोई के एक बार फिर स्वागत बा। आज के जोन विषय बा वो है ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष, और ये विषय पर बात करे खातिर हमने के स्टूडियो पर आज दुगो सुंदर महिला उपस्थित हवन जा। देखे में बहुत सुंदर हवन जा, लेकिन इन लोग के काम बहुत कठिन बा, बहुत सख्त काम करत हवन जा। एक बार फिर विमला जी और नूतन जी, आप लोग के ई मंच पर स्वागत बा। अभी हमने के नूतन जी बोलत रहलन कैसे जो सिंथेटिक ड्रग बा वो कैसे बनेला, काहे वो जस्ती हानिकारक है, लेकिन दिक्कत है जा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक ही पीछे भागत हवन सा, चाहे कि सब कोई जानेला कि सिंथेटिक में बहुत ऐसन ऐसन पदार्थ मिलावल जला जोन आपके

0: कौन सा, चाहे कि सब कोई जानेला कि सिंथेटिक में बहुत ऐसन ऐसन पदार्थ मिलावल जाला जोन आपके
1: जेकर मतलब है कि सब लोग ओके इजीली खरीद सक सकन सा। एगो एगो डोज 100 रुपया में मिला था तो इजी बा आसानी से लोग खरीद ले, जैन लोग के पास पैसा रहेला 100 रुपये में एगो एगो एगो डोज ले ले था। तो ये एगो कारण है काहे के ज़्यादा करके सिंथेटिक ला लोग ले था।
0: और यही वजह है कि देखते जाके हमने के आगे जब ड्रग्स के बारे में बचात रही जा, कोई तोहरा बोली कि ये व्यक्ति ड्रग्स लेवेला तो ओकर पर विश्वास करके थोड़ा मुश्किल होवे। लेकिन आज इस सिंथेटिक ड्रग्स के बारे में बोले के नहीं चाहे ना, आपके खुद लग जाए। वो व्यक्ति चलते चलते सुते लगी, फिर अचानक देखबा फिर से उठ के चले लगल, तो देखत है जाके कितना बहुत गलत बहुत कठिन स्थिति में चला रही जा। और जब इतना हाल ही से हमने के देश में ड्रग्स की जो समस्या बा ओकर नवा रूप ले ले बा और नवा नवा समस्या बहुत भारी संख्या में आवा था, तो हमने के आप लोग के जो संघर्ष चला था हमेशा से चल ले आवा था, तो ये जो सकब्जा बोले 5 पिछला वर्ष बा सकब्जा बोले कि यही अंतराल में इस सिंथेटिक ड्रग के बोलबाला जस्ती हो गए, तो आप लोग के मतलब कार्रवाई के दौरान कैसे अपन कार्रवाई जस्ती तेज कर था वजह, आप लोग के जो उपलब्धि बा कैसे सकत था वजह सफलता हासिल करे अपन कार्रवाई में, थोड़ा एक बारे में बोला।
2: हाँ बोलो लादोक सिंथेटिक जो बोला ला सीमिक तो वो हमने के देश में ला पहला 2013 में अक्टूबर 2013 में अच्छा। पहला का मिला रहल तो तब उतना ढेर नहीं रहा, अभी तो जैसे देख तो बहुते ढेर बा, जहाँ देखब जैसे बोल तो चलते चलते आदमी सूझ जाता, तो जाना कि जब सिंथेटिक लॉम्प्लॉय ले होता सवे जी ढेर का मिला था, तो हमने को अपन ऑपरेशन बढ़ाएगा सर, हमने के रेंसेमेंट बढ़ाएगा सर, हमने के रेजो जो रेंसेमेंट बा अरे हमने के फील्ड इंटेलिजेंस ऑफिसर लोग बा जो काम करें सर तेरे में, और ये ढेर नागरिक ऐसा बा जो वो लोग खुजे था एगो कूद में देखे एगो सहायता करके ला पुलिस की, बस कि जब एगो एगो जैसे बोले एगो कंता तो हर गोर में रही तो नहीं सब दूर ले चले चला कंता के निकाले के ना
0: जरूर,
2: तो हे खातिर ढेर अच्छा नागरिक लोग बा जो हमने बी आवेलन सा ओकर फासों बा करे के हमने के गाँव से मत देवेलन जा ए हमने ओकर पर काम करके ढेर आगे ताशो करे तैसा सैंतिकवो के कानाबिसवो के एरोइनवो के और एगो लाद्रोक जो बा सिकोथ्रोप सिकोथ्रोप कॉम्प्रिमे है जो बेचाला फार्मासी में सेलमा ओकरो ट्राफिक हुआ था, अभी दे लो जो ढेर ट्राफिक सिकोथ्रोप हुआ था, तो समझा कानाबिस एरोइन सैंतिक और सिकोथ्रोप पाँच साल से हाई जस्ती चला जाते।
0: अच्छा अब सबसे बड़ा सवाल ये बा कि जब हमने सब कोई दिखिला जाए एगो व्यक्ति जो ग्रस्त बा ड्रग से एक जगह पड़ गए बा ओकर हालत खराब बा, तो हमने जब दिखिला जा तो आम जनता या तो फिल्में करके फेसबुक पर डाला था, दूसर कोई देख के वो लोग के दिल दहल जाता, लेकिन आप लोग जे लोग ई क्षेत्र में आप गार्दी के काम कर रहे थे वजह आप लोग जब दिखे रह जाता आप लोग के मतलब कैसे आप लोग के प्रतिक्रिया आवे लाइकर पर
2: जैसे बोलो तो जैसे देखते ही जान जब जे आगे जैसे बोल आगे गर्मी लादो देखब तो नहीं जानब
0: नहीं जानब,
2: अभी जैसे जैसे सिंथेटिक लेब तो जैसे देखब तो जान जाब
0: हाँ
2: तभी देखी ला सा ले लेबा सिंथेटिक तो एगो हाल में बा बेहाल हाल में बा जैसे सकेला बोले तो सब हम नहीं सकब सब कुछ करे ओकर खातिर सकब सको एगो थैतमा देवी जे देखब सको प्लस दौजे में बा तो सकब सा सर्विस में जिकाल के बिला बिस बा सामी के बिला हुए
0: है सक सक
2: एगो विक्चिम हो गल बाते से मैं ओके एको लालवा ने बा जे सकब सके सिपा लेके जाए सगरो से मैं फोमिय इजाफे कर दिया सा एगो थैतमा ओके सकब सा दे एगो सामी के सकब सा बिला हुए सिपा एगो एम्बुलेंस के सिपा सकब सा तो एगो ला पुलिस के बारे में डाल के ले जाब सा जितना हम सकब सा सहायता करिए हमने करी ला
0: जरूर। और मॉरिशस एगो छोटा टापू देश है आइलैंड नेशन है और यहाँ पर देखत है जाकि ड्रग्स बाहर से भी आवेला और ड्रग्स के समस्या हमने के एयरपोर्ट से हुआ पर सबसे बड़ा मतलब सुरक्षा एयरपोर्ट पर ही चाहे कायम करे के, तो एयरपोर्ट से शुरू हो इस समस्या पर आप लोग कैसे काम करे ला जा और नागरिक कितने को अब आजकल सफ़र करत हवन जा कैसे चाहे आपके चौकन्ना रह के जब सफ़र करत हवा कहे कि नहीं सक बजाने कोई आपके सामने सफ़र करता वो ड्रग्स के कौन रूप में अपन संगे ले जाता, तो एक बारे में मतलब कैसे आप लोग के कार्रवाई होवेला
2: हाई बोला तोहरा कि गर्मी जब जाता

0: देश विदेश उसका देश विदेश से आवता तो के चाहना कोनो जना से कोनो चीज नहीं लेके हई को कौन से ही देते हैं जा बस की का है बस की जैसे बोलते सर साइंटिफिक एगो इनमें सके गो पापी में एगो मैगजीन में स्प्रे कर दे ला तो साइंटिफिक तू नहीं जानब बोली हमारे फार्मी के है एगो ला एगो लिव लाप्रिय है दे दे हमारे फार्मी के जब जेब मोगीस तू ले लेब बस की एगो लिव लाप्रिय है तो तू नहीं जानब कर मैं का बात है और ला तो साइंटिफिक दूसरा ला दोगो अब एगो फॉर्म लिखी दो में तू सोचब एगो विस्की है एगो पिए के चीज है तू आन देब का खातिन तो चला यही सब में सारवानी भर के बस की कोनो फॉर्म में ला दो गावेला हवे हमेशा जैसा बच्चा आए कम्युनिटी में सेंट सोशल में सेंट जेनेस में लेकुल में तब बोली ला जा कोनो चीज नहीं चाहला लेके अपन किन ला जाना तो अकन में काबा तो अपन वालिज में डाल के आओ
1: दूसर कोई से नहीं ला
0: दूसर कोई से नहीं रहा बस की कोनो चीज एगो आदमी सकेला अब देखो तो एगो शोकोला जैसे एगो पार्किंग शोकोला बात है शोकोला हो आदमी आज जाना था एगो शोकोला जनाओ के दिलक तो वो आना था मतलब हमारे चीज अफा लोग बात शोकोला दे दिया लोग तो तू का कर बोला ले ले ला जानी ला लो के नहीं नहीं चला लेके बस की एगो का होल बा ऐसे कि शोकोला नहीं रहल दूसर चीज रहल सब जला तो रहल पार्किंग वहाँ शोकोला गई बा तो चला बहुत बहुत सावधान रह के
1: नहीं तो आप एगो ऐसा मुसीबत में पड़ जेबा जो जेकर से कोनो लेना देना नहीं रहा आपके
0: तो तुम्हारा डिफिसिल हो एक्सप्लिके करे के कैसे वो तुम्हारे संगे बा ए तू नहीं जानत हुआ का हो तब तुम्हारा बकू बकू बहुत समस्या हो यहाँ
2: और ये अच्छा बात जनता के जाने के लिए कि एयरपोर्ट और पोर्ट में भी हमनी जहाँ ऐसा हमनी बाजे ऐसा एचसी ऑफिसर्स एयरपोर्ट और पोर्ट में हम लोग कस्टम्स ऑफिसर्स के साथ में काम करी ना जा और अगर कोई सोचा था कि लादोग लेके आई तो 10 बार सोच लेने का हाँ। क्योंकि यहाँ जब उतरियन जा अवियों में से तो वो लोग के अमनी देखे ला जा अमनी वो लोग के प्रोफाइलिंग करी ला जा अगर कुछ अमनी के जैसे शक हो गए
1: थोड़ा
2: यही खातिर देखवा जा कितने लोग बोले ला जा कि हाँ हम तो अवियों में से अनी काजनी काहे के हमारा अमर वालिस खोल के चेक करेगा ओके ओके वो नाराज बोला लेकिन अमनी के काम हाँ कंट्रोल करी ला जा अभी एक अवियों में 250 की 300 पास आजे बा उतनी डिफिकल्ट बा उतनी मुश्किल बा सबके चेक करे के लेकिन अगर इन्फॉर्मेशन बा और अच्छा से प्रोफाइलिंग कर लिया जा तो हमनी ओके चेक कर सा
1: और कोई के हाव भाव भी देख के आप लोग को पता चल जाएगा
2: हाँ वो प्रोफाइलिंग में वो पता चलता है कि ये इतनी दर दर के आवता काजनी कौन ची बा कौन ची होई के बा ओकर संगे तो ई भी हाँ प्रोफाइलिंग करी ला
0: जाए और हम के एक्सपीरियंस जुन बा वो एक ग्रैंड रोल
1: जरूर
0: हाँ ओकर में देख के हम कभी कभी जान जाएगा सर
1: और अभी आप बोलत रहला ढेर कौ पाए करे रह जा और आज के ई कार्यक्रम भी सकब जा बोले कि जनता के जागरूक करे के जनता के ई सावधानी बरते के ई समस्या से एकरे पर आधारित बा तो हमें के थोड़ा अपन जन कार्रवाई करत हो जा कैंपेन अवेयरनेस कैंपेन जागरूकता अभियान थोड़ा एकर बारे में बोला कहे कि जैसे बोलत है जा दिन ब दिन ई जोन स्थिति बा ई जोन ड्रग्स के रूप बा बदल दे जाता ओकर खतरा भी नवा नवा रूप लेवता अभी आप बोला मैगजीन में बोला स्प्रे करके ये सब जनता नहीं जानेला तो कैसे ई सेंसिटाइजेशन आप लोग करत हो जा और जनता के जन लोग के प्रतिक्रिया जन रेस्पॉन्स बा वो कैसे रहेला
0: तो बोलब जा कि आजसू के अपन एजुकेशन सेल बा जे जनता नहीं जानत तो बोलते है अभी आजसू के अपन एजुकेशन सेल बा ओकर में का करे सा रोज के रोज एक दिन नहीं बीतेला जे एगो लेकुल में गईली सा लेकुल प्रीमियर कॉलेज सेकेंडरी टर्शियरी यूनिवर्सिटी कम्युनिटी में यूथ सेंटर्स में सब जगह पर वर्क प्लेसेस में मैम सर्विस सिविल हो मिनिस्टर हो कि प्राइवेट प्लेस हो प्राइवेट वर्क प्लेस होते हैं जो कंपनी हो मन जा सब कोई हमके इन्विटी कर जा बस कि शुरू हम एक लेकुल में है सर लेकुल सेकेंडरी में बस कि युवा लोग के चला समझाए कि
1: और समस्या हो जैसे
0: हो जैसे सूर्य हो ला तो लोग के समझावे ला जा जे ऐसे लाधोक रहे ला ऐसे कौन समय करेलन सा कौन कौन से कौन होवेला तोर दे पर तोर स्वास्थ्य पर तोर ला फामी पर तोर एजुकेशन पर सोसाइटे पर कौन कौन कौन से कौन तो वो लोग समझे ले जा और बोल लीला सा लाफे में जे लालवा का बोलेला ढेर युवा लोग जो मर्जी करे रन सा नहीं सोचे रन सा एगो लालवा बा पीछे तो लोग के बोली जा लालवा बा हई हई चीज के लादो के ऐसा ऐसा लालवा बा जैसे चीज करब तोरा प्रॉब्लम हो और ये बोली रहा सब मोरल

0: Écoute, tes affaires que là, écoute, qu'est-ce la drogue, mais là, ni man séparatoire académique, mais à plus ça gros bat. Moralité, j'ai pas l'école et d'une, j'ai pas l'université, mais j'ai pas du seul cam que j'ai, bidès, mais j'ai pas parlé, t'as t'as la moralité, certificate of character. T'as où, mais égo la croix, t'as la. T'as qu'un cam qui est n'a pas là, l'école, égo t'y bêtise, j'ai pas l'école, j'ai pas l'école, t'es égo la croix, regarde ton moralité, mais t'as her cam, milleke. Tu as un coup miliqué, tu as une promotion miliqué, ok, et go barras ho jaye. Je ne dis que après, j'essaie de faire après bas sagré les résultats, mais coup zoli bas après soir. Tu as je ne dis que B B C bas, ok, comment milje parce que au cœur certificat caractère moralité wa
1: saf ba.
0: Tu as y samjhaye la so, ok, que aisan kam ne kare ke certificat moralité aur ok kharab ho jaye.
1: Zarur.
0: हाँ.
1: और जब लेकर लोग की बात कर रहे थे जा, तो जो माता पिता के अब लोग था कि कहूँ पर ड्रग्स के समस्या के खतरा बा या फिर पड़ोसी के हैसियत से आपके लोग ताकि एगो ड्रग्स के समस्या बा मतलब कि जो पहला जो अर्ली साइंस है पहला संकेत है जैसे आपके नज़र आवा था एगो माँ बाप के या फिर एगो पड़ोसी के एगो जानल व्यक्ति के तक कैसे सबसे सुरक्षित रूप में वो लोग सकियन जा सब मामला के रिपोर्ट करे
0: दिखा रिपोर्ट करे के बोले के एगो चीज ला ड्रग के साफे में तो सुन सेंसिबल है
1: जरूर
0: तो ढेर आदमी बोले ना नहीं हमके प्रॉब्लम हो
1: हां
0: तो अगर फासों बात है जैसे हमने के नंबर 348 वो एनोनिम है
1: हां
0: सब सुने करे जिन्हें नेम मन करे कोई सुने करे के तो एगो सब एगो लेट लिखे कमिश्नर पुलिस के ढेर आदमी ऐसे करे ला एगो लेट एनोनिम लिख दे बेला जे हियां हियां है लंदन में ऐसा ऐसा प्रॉब्लम बा
1: जैसे आप लोग सुना था वजह देखा था वजह ये प्रोग्राम अभी चला था रेडियो मॉरिशस पर और हमने के फेसबुक पेज पर भी लाइव एकर प्रसारण हुआ था और साथ ही साथ एमबीसी टीवी के तीसरा चैनल पर भी ये कार्यक्रम के लाइव प्रसारण हुआ था और हमने आज बात कर रहे थे जहाँ ड्रग्स के समस्या पर कैसे इस समस्या से आजसू यूनिट निपटा था कैसे ड्रग्स की जो नवा नवा रूप बा ओकर खिलाफ जो सेंसिटाइजेशन कैंपेन बा वो चला था और हमने के अभी और कुछ सवाल बा जेकर जवाब हमने के दोनों अफसर नूतन जी और विमला जी दियन थोड़ा घड़ी में फिलहाल ले जा एगो छोटा सा ब्रेक

0: की चर्चा में आप सबको एक बार फिर स्वागत बा। आज हमने आजसू अफसर लोग के साथ है जा नूतन जी हवन और विमला जी जे लोग पुलिस सर्जेंट हवन जा और हमने के सवाल के जवाब देवत हवन जा जो ड्रग्स के खिलाफ संघर्ष से जुड़ल बा। और अभी आप लोग हमने के बोल जा कैसे सिंथेटिक ड्रग या कोई भी ड्रग रही बहुत ज़रूरी बा कि इस व्यक्ति के आप लोग रिहैबिलिटेशन सेंटर में ले जाए बचाओ वो लोग के इलाज चाहिए करे के तो लाजसू कैसे ये सब व्यक्ति लोग के रिहैबिलिटेशन के ओर भेजला जा और फिर अभी बोला जा कि वो व्यक्ति खुद एगो विक्टिम हा। लेकिन जब आप लोग के ऐसा आदमी मिलेला जो लोग विक्टिम भी हवन जा वो लोग के साथ ड्रग्स भी बा तो कैसे आप लोग खाली मतलब सजा देवे ला जा कि वो लोग के रिहैबिलिटेशन सेंटर की ओर भी भेजला जा मतलब थोड़ा एक बारे में समझा हुआ जा कैसे रिहैबिलिटेशन सेंटर और सजा कैसे चलेला ये दोनों।
1: हाँ तो जैसे हमने बोलनी सा हमने बहुत प्रेशर भी करना सा तो अगर एगो एगो आदमी के पकड़नी जा उकर संगे ड्रग्स मिलल कोई भी ड्रग्स मिलल तो नॉर्मल प्रोसीजर करीला जा जैसे अपना इंक्वायरी शुरू करीला सा फिर आवेला एगो मोमा जब एगो ऑप्शन दे मिला जा कि तू ट्रीटमेंट करे के इंटरेस हुआ कि हमने तोहरा लाखों भेजी ला जा लामान पे ये करे के तो ये एगो ऑप्शन है कि लारवा में 2022 से हमने वो चालू कर ली हैं जा एगो अमेंडमेंट आल बा ओकर हमने ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल सेटअप होल बा जहाँ के जैसे ये लोग जे की कैन जैसे इंटरेस बा ट्रीटमेंट करे के तो अगर बोली हाँ हम ट्रीटमेंट करब हम के निकले के बा ई प्रॉब्लम में से तो हमने ओके रिफर कर ली ला जा जो आप जैसे बोलिए ड्रग यूजर्स एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल के और ओके लाखों नहीं भेजी ला सा लामान ये सब पनिशमेंट नहीं दे सा तो वो बोलेला तो सब जो जरूरी पेपर्स है ये सब वो भेजी ला जा और ओके लोपिताल फिर बुलावे ला जा एगो सात एडिक्शन वा पांच गो लोपिताल में तो वो लोग के ओके कॉन्टैक्टे करियन जा लोपिताल में से तो कोई बोला जा ई दात के आवे के ट्रीटमेंट के लिए। लेकिन दुख की बात ये बा हमने देख लिया ऐसा ऑब्जर्वे कर लिया ऐसा कि बहुत लोग बोल के ये ऑप्शन मांग के कि रिहैबिलिटेशन में जाए लेकिन बाद में बहुत लोग नहीं जालन जा तो ये एगो
0: सजा से बचे खातिर
1: बोलियां जा लेकिन फिर बाद में देखबा तो ये नहीं गलबा फिर वो दोषी वापस आवेला हमने के पास फिर हमने ओब्लीजे होके लाखों भेजब जा
0: और आप लोग के कार्रवाई दुगुना बढ़
2: जाए। एक चीज जरूरत थी घर में तो जैसे विमला जी बोलन ये है सब ट्रीटमेंट दिया ला जवाब सब चीज बा सिर्फ है सब जिस ड्रग यूजर्स ओके है जिन लाद्रोग के सेवन कर रहे हैं छोटा थोड़ी सुन लाद्रोग मिलल तब बोले सा है कौन समाशों के है तब है उपशोमा अप्लीके हुए ला
1: ट्रैफिकिंग
2: के नहीं ड्रग डीलिंग के नहीं और जिस सिकोट्रोप तलेवा बोले सिकोट्रोप जिन कॉम्प्रीमे बा ओहू के नहीं वो सेक्शन 21 है ओकर एप्लीकेशन नहीं बा
0: ओकर सजा
2: ओकर सजा डायरेक्ट बा है जुआ पर नहीं जाला ट्रीटमेंट पर नहीं जाला है लालवा में ऐसे है।
0: अच्छा मतलब कि जो लोग खाली विक्टिम हवन जा ड्रग्स के शिकार हवन जा वो लोग के सामने ये ऑप्शन रहला रिहैबिलिटेशन सेंटर की सजा। और अब जब ये लोग की बात करते हैं जा जे लोग एकर से ग्रस्त हो गल हवन जा इस समस्या में पड़ गल हवन जा देखत है जा फेसबुक पर जब ऐसा ऐसा व्यक्ति लोग के पोस्ट करेलन जा तो दूगो प्रतिक्रिया आवेला एगो ये लोग के बहुत भला बुरा बोलल जाला एगो दूसरा ग्रुप बा जो लोग बोलेलन जा फिल्में करे के बजाय सख्त जा वो लोग के मत कुनो रूप में मदद करे तो देखत है जा कि समाज में एगो हमेशा से रहल लेकिन आजकल जस्ती व्यक्ति एकर में पड़ता तो स्टिग्मा जोन बा एगो कलंक लग जाला इस व्यक्ति पर। अब खाली वो व्यक्ति पर नहीं वो परिवार पर भी एक तक कलंक और फिर खतरा कि ऐसा परिवार से जे आप संबंध रखबा वो व्यक्ति से संबंध रखबा तो आपके वो आपके भी खतरा रही जे आना जाना रही था तो ये जो स्टिग्मा बा ये जो मानसिकता बा सोचे के जो तरीका बा एक एक किसे चाहिए बदले के एक

0: पर आप लोग काम करे राजा।
1: हाँ तो हम बोली राजा जैसे वो एगो विक्चिम हो गल बा तो वही जाना था दिन में कितना दुख हुआ था ओके सकेला वो कपाल में सोचा था जैसे कैसे निकल से मन ओके लापो सोच ही नहीं लौकता
0: जे निकले खोजन से तो उन लोग के बहुत परेशानी हो
1: परेशानी हो गया बस की बार बार ओके मन करी कर उन लोग के कपाल बोली निकले के दिलवा बोली नहीं लेके
0: और लोग के देह खूब मांगे ला ना
1: हाँ मांगे ला बस की लोग विक्चिम हो गल हो जा हाँ अब नहीं सकते उन सब कमे से निकले तो चाहला हम के एगो सहायता करे के ना
0: जरूर
1: एगो ट्रीटमेंट दे के ए गवर्नमेंट ढेर ट्रीटमेंट तक देते बा सैंक लोपिटल रीजनल में जो बा एगो सौ बा अजिक्षों फार्मी लोग सकें जाए लोग के ले जाए हुआ एगो ट्रीटमेंट मिले लोग के का जानी निकल जाए ओकर में से तो अच्छा हुए बा
2: लेकिन इमें एगो चीज बा जो कि बड़ा वोलोंते
0: जरूर
2: ई वोलोंते रही तो सकबा उनमें से निकले अगर सिर्फ ट्रीटमेंट देव साफ तो वापस आके फिर से उसी में घुसबा तो फिर कोई फायदा नहीं
0: और देखा जाए कि हये हुआ था माँ बाप
2: फैमिली सपोर्ट भी चाहिए
0: जरूर
2: ऐसे नहीं कि जैसे थोड़ा स्टिग्मा कर दिया ओके ओके आप रख दिया ऐसे नहीं ओके चाहे ना समेट के रखे के ओकर से बात करे के ओके इंटीग्रेट होने दे के सबके सामने
0: सबके सामने
2: ओके काट के ऐसे कोने में नहीं दिखाई
0: हाँ ये होवेला कि अब एकर संगे ने सब परिवार के बीच जाए
2: डरे लन जा जो जो इंसान ड्रग लेवाता तो बोले ए पा फ्रीक्वेंटली एंड प्रेंड ला ड्रग ई चलाता ऐसे नहीं ही वो एगो विक्चिम हा बेचारा वैसे बोल सकते हैं तो वो जैसे नूतन जी बोल रहे हैं कितना संघर्ष चल रहा है निकलने के लिए लेकिन नहीं हो रहा है नहीं निकल सकता इतना मुश्किल है तो इसलिए एगो एडवाइस हम नहीं देवब जा आज जो ऑफिसर्स की क्योंकि हम लोग रोज ऐसा लोगों से मिलते हैं तो हम ये बोलब कि डोंट ट्राई फर्स्ट टाइम भी ओके नहीं नहीं लिया एक बार ले ले ले लिया
0: और अभी बोलत रहला एगो बात बोलला जो हमारे मन में सवाल उठा था कि बोलला कि एगो मैगजीन में सेकेंड जा स्प्रे करके दोहरा देवे वो मैगजीन में अनबा तो वो कैसे काम कर रहा मतलब महक से और उस स्प्रे अंते अंते वो ऑब्सोलीट नहीं हो जा रहा मतलब कि ओकर लिफे चल नहीं जाला कैसे मतलब एकर जो लिफे हा कैसे पड़ेगा
2: लाड्रोग सिंथेटिक के बारे में बोला था
0: हाँ।
2: लाड्रोग सिंथेटिक ऐसे है एगो कागज हा एप्री में बा इसमें लिखल बा तू बोलबा एगो डॉक्यूमेंट हा एगो पापी हा इसमें चिपे करके कुछ लिखल बा
0: हाँ।
2: लेकिन इस एके हम ओ लोग एबीबे करे लन जा ओके थॉपे कर देवे लन जा लाड्रोग सोल्यूशन में सिंथेटिक के तो तू ऐसे आज तक तू नहीं देखबा लेकिन हमने के एक्सपीरियंस ई बा कि ओके छूबा अगर तो आँख में गल की तो जरे लगेला और उसमें एक स्मेल भी रहेगा
0: आप लोग जान जाए
2: बच्चे हम नहीं जानी ला जा लेकिन कोई आम इंसान ओके नहीं मालूम होगा तो इसीलिए बोला कि कितने फॉर्म में आते हैं पेपर्स में आते हैं बुक्स बना के भेजते हैं पुस्तक ऐसे वो भी हमने के मिलल बा केस तो ऐसे सब फॉर्म में वो लोग भेजा था वन जा फिर ई कागज के एगो एगो पापी आका था ही ओके काट काट के स्ट्रिप्स बना हुए लंसा पतला पतला एगो छोटा सा स्ट्रिप्स बना के वही सिगरेट में डाल के फीमे करे लंजा
0: तो असर पड़ जा रहा लोग पर
2: हाँ तो असर हो गया
0: तो काफी देखते जा एगो बहुत ज्वलंत समस्या बा हमनी के समाज में ड्रग्स के रूप देखा था कितना आसान हो गल बा आपके हाथ में ड्रग्स रही और आप पहचान भी नहीं कर बा कि आपके हाथ में ड्रग्स बा और इ बखत जे हमनी के सुनत हवन जा रेडियो पर या फेसबुक पर या टीवी पर जे लोग के मन में ई सवाल बा कि उ लोग चाहत हवन जा आप लोग तक कोनो इन्फॉर्मेशन देवे अभी हमी के बोला कि एगो निमिहो बासा का होचित तो मतलब आप लोग के जो कार्रवाई बा आप लोग के चाहे जनता के भी सहयोग
2: जी
0: काहे कि जनता ही के एकर से समस्या होता परेशानी होता उ लोग ही विक्टिम भी बनत हो जा तो कैसे जनता के सम्मिलित करके आप लोग ये कार्य सक बजा करे और जनता कैसे सकी निडर होके आप लोग के सहयोग देवे
2: तो जैसे बोला एगो निमेरो बा 148 बा और सब डिस्ट्रिक्ट में एगो आचू ऑफिस बा तो सकियन जा जो सबसे नज़दीक बा आवे के अगर नहीं नहीं सकत हम सा आवे तो एगो 148 में टेलीफोने करके या तो हमार हमनी के रीजनल जो हमनी के डिस्ट्रिक्ट में बीरो बा ओगर निमेरो लेके तो हमने सकब सा एनोनिमसली ये जो इन्फॉर्मेशन देवा था वन सा ओकर उसके ऊपर हमने काम करब जा और हमने लोग के लाश्योरेंस देवा था जा कि कहीं पे भी वो लोग के नाम नहीं नहीं लेवा जा
0: लोग के कोई समस्या नहीं
2: नहीं ये हमने के ड्यूटी है कि उन लोग के सुरक्षित रखे के तो निडर

0: ओके हमनी के बोला जा क्या कहाँ कोची होता आपके नाम हमनी नहीं ले सकते
1: जरूर जैसे बोली जा तो हम जैसे हमारे संगचा बोला था इन्नी डर होके चला कमा करके बस की सब कोई की सहायता चला है कोंबा कोटला दोग में
0: एगो संघर्ष है
1: हाँ, एगो संघर्ष
0: समाज के साथ साथ हम लोग भी करा जाए जा लेकिन हमनी के भी कितना कितना करब अगर आइबा जा हमनी की ओर तो हमनी सकब सा मदद करे
2: हाँ जरूर और जब इतना अलग अलग प्रकार के ड्रग्स के बारे में जब बता थे जा तो का ड्रग्स के जो रूप बा जैसे सिंथेटिक बोल कैनाबिस बोल अलग अलग हीरोइन ओकर अलग ड्रग्स के अलग सजा बा कि कोनो जस्ती कि ड्रग्स ड्रग्स है कोनो भी ड्रग्स आपके साथ मिलल तो वो ओकर एक ही सजा बा
1: हाँ कोनो ड्रग्स जो मिलल तो चला ओकर क्वांटिटी देखिला हाँ जिस जुजमेंट दे के आगे ओकर क्वांटिटी देखा वैल्यू ऑफ द ड्रग हाँ वो देखल जला तब सजा वहाँ मिलेगा समझे धर लो क्वांटिटी से जस्ती
2: अच्छा
1: हाँ
0: लादोग के लालवा में डेंजरस ड्रग्स आग में डिफरेंट डिफरेंट सेक्शंस पर
2: जरूर
0: तो कंसुमातिया के लिए एगो सेक्शन बा और जो डीलिंग कर रहा जो बेचा था जो पताजे कर रहा था वो लोग के लिए और एगो अलग सेक्शन के पुशिव कर यहाँ सा जो जो कंसुमातिया बा वो लोग ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जयन जा जो डीलर्स हैं ट्राफिकर्स हैं इंटरमीडिएट कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी भेजी ना जा केस डिपेंड्स कितना जैसे नूतन जी बोल रहे हैं क्वांटिटी ऑफ ड्रग्स और वैल्यू ऑफ ड्रग्स
1: और अथी बा जे लिकुल में एगो लादोग मिलल जे यूनिवर्सिटी में लादोग मिलल जे लोपिटल में लादोग मिलल जो आदमी एगो लड़का के दिलक लादोग एगो लड़का हैंडीकैपे के एगो मीनिए के उबिया एगो नर्स एगो डॉक्टर एगो पुलिसिये जो गवर्नमेंट में काम कर रहा वो लोग संगे लादोग मिलल तो वो अग्रावेटिंग सर्कमस्टांसेस बोलल जला तो ओको लामान दुगना हो जला जे एगो नॉर्मल जे के मिलल बा हई सबके ऑंडे हो जे धर ल बोलक दस बरिस के प्रिजो तो हुआ 20 बरिस हो जाए पैसों वहाँ
2: अच्छा वहाँ
1: हर मिसाल अमन वहाँ दुबले हुए ला
2: और अभी जैसे बोली जा आप लोग के जो जागरूकता अभियान बा आप लोग अलग अलग जगह पर करेला जा आज के कार्यक्रम भी यही मकसद से यही उद्देश्य से करा गए हमने के पास कब्जा बोले और 3 मिनट बाकी बा इस 3 मिनट में आप दोनों जना बारी बारी अपन संदेश सक बचा देवे जो आप जनता के देवे चाह था वजह
1: तो हम बोला पहला चीज के माँ बाप लोग के पारों लोग के जैसे बोली राजा अपन युवा लोग के चला निमन से देखे के वो लोग के फ्रिकाउंटाशों देखे के एगो लड़का नहीं आवा था आगे आवा था खाए लाता में संगे तो हर अब नहीं आवा था खाए और बार आगे निमन से करता हुआ था निमन से खाजे हुआ था अब नहीं नहीं कर रहा था और कामगार जो लोग हर आगे जो फ्रिकाउंटे कर रहा आगे वो सौंसे होकर अचानक तो चला सब देखे के पीती पीती चीज जो घर में बा अब सब पेजी हुआ था तो के चला देखे कि तो काहे पेजी हुआ था यहाँ इतना पैसा रखे को चिप्पो में सब माँ बाप एक पैसा रखे हाँ। हमेशा
2: खाली रहता
1: तो अपन केसो चार पूछे काहे काहे लेको हमें के संगे नहीं आवता खाए काहे लेको अपन का महा जो अक्ति रहल आगे नहीं फेंकौते कर रहता वो सब काहे होता चाहे ना देखे के काहे नहीं जाता अपन दे के कोट लेबे हाँ। काहे नहीं पढ़े को जाता अब जैसे आगे सब सगरो आल कर रहते अब तो ओकर दिखा देगा सब चाहे देखे के निमन से जे प्ली विथ जैसे बोले जाता देख
2: जस्ती
1: जैसे हाली ओके देखुबे कर सब कोनो चीज लेवे के शुरू कर लेबा उतने हाली ओके ओकर ट्रीटमेंट देव सर सकब ओकर सर ओकर निकाल ओकर में से
2: और विमला जी
0: हम नूतन ने जो कंसुमातिया के बारे में जो युवा हों जा उसके बारे में बोलन हम एगो मैसेज बोलती जो डीलिंग कर रहा था जा तू भी सोच लिया कि तोहर भी परिवार बा तू एगो ऐसा खराब चीज देवा था बेचा था वा पैसा खातिर लेकिन ये नहीं सोचा था वा कि तू कितना ये कितना हानिकारक चीज बा कितने परिवार के बर्बाद कर रहा था
1: फामी उजारत हुआ
0: हाँ परिवार के उजारत हुआ बच्चों को ये खराब चीज में डाला था वा तनिसान बैठ के सोचिया कि तू क्या कर रहा था वा कि अच्छा कर रहा था वा कि बुरा कर रहा था वा पैसा मिले के हाँ अच्छा बात दूसरा जरिया ढूंढा
2: ये तरीका नहीं
0: ये तरीका नहीं तोहर लड़काई में पड़ी तो तोहरा कैसे फील हो
2: जरूर तो हमने के इन दोनों महिला अफसर के बहुत बहुत धन्यवाद आज फजीर फजीर आप लोग अपन समय निकाल के काम के साथ साथ घर परिवार छोड़ के आप लोग अला जा और ये सब जानकारी दिला जा हमने के देश के जो ड्रग्स के समस्या बा ओकर खिलाफ संघर्ष कैसे चलता ये सब पर जानकारी देवे खातिर आप दोनों जना के बहुत बहुत धन्यवाद और आप श्रोता और दर्शक लोग के भी बहुत धन्यवाद नमस्ते शुभ दिन

0: Center 95.5, North South 95.6, East West 98.2.
1: You are listening your RM3 Manoranjan Radio.
2: आइए सुनते हैं संक्षिप्त समाचार याचना से। नमस्कार।
3: नमस्कार दिव्या, सभी सुनने वालों को भी नमस्कार। सुनिए संक्षिप्त समाचार। मॉरिशस में निर्मित सूट आज यूरोप के प्रमुख फैशन ब्रांड्स, अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों और विश्व फुटबॉल जगत के मशहूर खिलाड़ियों तक पहुंच रहे हैं। अपने निर्यात बाजारों, विशेष रूप से यूरोप और अमेरिका की कई नई पर्यावरणीय आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए क्यूपिप के वेंसम कारखाना अब एक नई क्रांति की ओर बढ़ रहा है। एनर्जी ट्रांजिशन का कार्बन उत्सर्जन में कमी यानी डिकार्बोनाइजेशन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मानकों का पालन करने के लिए कंपनी ने सौर ऊर्जा परियोजना में 30 मिलियन रुपए का निवेश किया है। इस पहल का उद्देश्य स्वच्छ और टिकाऊ ऊर्जा का उपयोग बढ़ाना तथा वैश्विक बाजारों की पर्यावरणीय अपेक्षाओं के अनुरूप उत्पादन सुनिश्चित करना है। कल कुछ ही घंटों के भीतर हत्या के दो मामले सामने आए। लासूस का थबोन में एक महिला ने अपने पति को मार डाला और लेसालिन में 23 साल की महिला को उसके पूर्व मंगेतर ने मार डाला। उस पर कई बार चाकू से वार किया गया था। स्नेहा जुतन का अंतिम संस्कार आज दोपहर बाद किया गया। अधिकारी घरेलू हिंसा के शिकार लोगों से ऐसे मामलों की खबर देने की मांग करते हैं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। इस मामले में 29 साल के मॉविन चांगिया पर वीकेंड कोर्ट में हत्या का आरोप लगाया गया। विदेश की खबरों में ऑस्ट्रेलिया में शक ने एक व्यक्ति पर हमला कर दिया, जिसके बाद उस व्यक्ति की मौत हुई। वो 35 साल का था और डाइविंग करने निकला था। बताया जा रहा है कि ये शक मछली करीब 5 मीटर लंबी हैं। घायल व्यक्ति को नौका के जरिए तट पर ले जाया गया, जहां उसकी मौत की पुष्टि की गई। एक महीने में ये इस समुद्री इलाके में हुआ दूसरा शक हमला है। इसी के साथ संक्षिप्त समाचार समाप्त हुए। आपके ध्यान के लिए धन्यवाद। हमें आगे आ दीजिए। नमस्कार।
4: You're listening to RM3 Radio Manoranjan. You're listening to RM3

रेडियो मनोरंजन के सभी श्रोताओं को संजय की ओर से प्यार भरा नमस्कार आदाब और स्वागत है इन गीत गाथा देश की। ये प्रोग्राम हर शनिवार की शाम को चलता है 4 से लेकर 5 बजे तक। इसके संदर्भ में इस प्रोग्राम के बीच हम ऐसे विषय रखते हैं, हम ऐसे

बीच भी करते हैं जिसके जरिए आप अपने देश के बारे में अपने शहर अपने गांव अपनी गलियों के बारे में अपने देश के इतिहास के बारे में जरा कुछ जान पाए। आज जैसे कि आप जानते हैं आज 6 जून है, कल 5 जून था अंतर्राष्ट्रीय एनवायरनमेंट दिवस, पर्यावरण दिवस। और आज हमने अपने इस प्रोग्राम के दरमियान एक ऐसा क्वीज रखा है जिसके जरिए हम एक स्पेसिफिक लोकेलिटी के एक स्पेसिफिक लोकेशन के बारे में जरा कुछ जान पाए। हमारा फोन नंबर वही है 402-4072-8070 या तो हमारा व्हाट्सएप नंबर 5250-6200। सो एक लोकेलिटी के बारे में हम आपको समय समय पर टिप्स देते रहेंगे, जानकारियां देते रहेंगे, जिसके लिए आपको अनुमान लगाना है कि हम किस लोकेलिटी की बात कर रहे हैं, किस गांव या किस शहर या किस गली की बात कर रहे हैं। सो जो पहला टिप हम आपको देते हैं, जो पहली जानकारी हम आपको देते हैं वो ये है कि ये लोकेशन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पाया जाता है। ये लोकेलिटी दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पाया जाता है और चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली पाई जाती है। ये लोकेशन समुद्र तट से 6 किलोमीटर की दूरी पर अंदर में पाया जाता है। सो आप अंदाजा लगाइए कि हम किस लोकेशन की बात कर रहे हैं। आप हमें फोन कर सकते हैं उनका संदेह खत हुआ है 60 जिस पर

जो भी यशदास जी इस गाने में गा रहे थे दे आर वेरी फिटिंग जिस लोकैलिटी के बारे में आज हम आपसे प्रश्न पूछ रहे हैं सो जो जो पहले संकेत हमने आपको दिए ये लोकेशन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पाया जाता है यानी कि एक भाग एक डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और दूसरा भाग एक दूसरे डिस्ट्रिक्ट में पाया जाता है और चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली पाई जाती है यानी कि ग्रीनरी चारों तरफ है उस लोकेशन के चारों ओर और हमने ये भी कहा कि ये लोकेशन समुद्र तट से 6 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है यानी कि इट इज़ नॉट ऑन द सी साइड ये समुद्र के तट पर नहीं है ये अंदर में है थोड़ा सा अब जो दूसरे संकेत हम आपको देते हैं ये लोकेशन अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत पसंद किया जाता है मोशंस के बीच भी और पर्यटकों के बीच भी यानी कि उस लोकेशन पर पर्यटक जाना बहुत ही पसंद करते हैं और वहाँ पर से जो नज़ारा देखने को मिलता है बहुत ही सुप्रसिद्ध है बहुत ही पसंद किया जाता है सो आप हमें फ़ोन करके बताएं कि हम अभी किस जगह की बात कर रहे हैं

हमारा देश भी कश्मीर से कुछ कम नहीं है, लेकिन कुछ ऐसी जगहें भी हैं हमारे देश में जो जन्नत से कम नहीं। सो आज के हमारे गीत गाता देश के इस प्रोग्राम में हम ढूंढ रहे हैं एक लोकेशन, और जो दो पहले संकेत हमने आपको दिए कि ये लोकेशन दो डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में पाया जाता है और चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली पाई जाती है। ये लोकेशन समुद्र तट से यानी कि समुद्र से 6 किलोमीटर की दूरी पर पाई जाती हैं, और ये लोकेशन अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ही पसंद किया जाता है मॉरिशियंस के बीच और पर्यटकों के बीच बराबर। अभी तक 4 लोगों ने कोशिश की। गोम्बा की सरोजिनी जी ने हमें कहा इलोजेगेट जी नहीं, इलोजेगेट की बात नहीं हो रही है। रंजन जी ने फोन किया फ्रॉम मेलरोज, वो कह रहे थे कि सामान ये भी ठीक नहीं है। लालमाची के सूर्यदेव जी ने हमें फोन किया और उन्होंने जवाब दिया लालोगा जी नहीं। सजीत जी जो पोर्टुगीज के रहने वाले हैं उन्होंने कहा ग्रैंड रिवियर सुदेस्ट नहीं। तो चले हम आपको देते हैं अगला संकेत। इस जगह में थोड़ी कॉफी भी रोपी जाती है, इस जगह पर थोड़ी कॉफी भी रोपी जाती है और वहां पर काफी टोटिस भी पाए जाते हैं। कॉफी, टोटिस, सीनिक ब्यूटी, इतने संकेत हम आपको दे रहे हैं। आप भी कोशिश कीजिए ऑन 402-8070। इस लोकेशन की आबादी साल 2011 में सिर्फ 783

783 आबादी इन 2011, यानी कि एक छोटा सा गांव है, एक शहर नहीं है। आपके पास होगा जवाब, फोन कीजिए उनका संदेह का तो संजीश।

6:31 आप सुन रहे हैं गीत गाथा देश की संजय के साथ। आज हम एक लोकैलिटी को ढूंढ रहे हैं और शुरुआत से लेकर बीच तक इधर उधर लोग जवाब देते रहे, लेकिन जैसे ही हमने कहा कि उस जगह में थोड़ी सी कॉफ़ी रोपी जाती हैं और वहां पर काफ़ी टोटीज भी पाए जाते हैं, तब सही जवाब बहुत से लोगों ने दिया। कौवा की सरोजिनी जी ने, मेलगोस के रंजन जी ने, लालमाची के सूर्यदेव जी ने, रसील के सजीत जी ने, कृपिप के गुरुदत्त बिसा जी ने, कटरबोन की माला सिसहाय जी ने, पाकुआ की सुमति जी ने और कटकोको के विक्रम भाई ने भी सही जवाब दिया। सो चले हम उस जगह को और भी थोड़ा सा आपके उस जगह के बारे में थोड़ा सा और आपको बताते हैं। सो हमने आपको बताया कि 2011 में वहाँ की आबादी, वहाँ की जनसंख्या 783 की थी, 783 की। इस लोकेशन में एक गिरजाघर भी पाया जाता है, लिगली सैतान, जो 1876 में बनाया गया था और जहाँ पर हर 15 अगस्त को असम्पशन डे के अवसर पर एक बहुत भारी भीड़ लगती है। और ये जगह ब्लैक रिवर गोजेस नेशनल पार्क से ज़्यादा दूर नहीं है। अब तो आप सबों के लिए बहुत ही आसान हो जाएगा कि हम किस जगह के बारे में, ये जानने के लिए कि हम किस जगह के बारे में आज बात कर रहे हैं।

4:40 आप सुन रहे हैं रेडियो मनोरंजन की लहरों पर गीत गाथा देश की संजय के साथ। आज हम एक लोकैलिटी एक लोकेशन को ढूंढ रहे हैं जिसके बारे में काफ़ी संकेत हम आपको दे दिए हैं और काफ़ी लोगों ने सही

ज़रा दूर नहीं है ये जगह। ये लोकेशन अपनी एथनिक टूरिज्म के लिए, ये लोकेशन अपने एथनिक टूरिज्म कॉन्सेप्ट के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं। कंप्राइजिंग ऑफ जैसे कहते हैं टेबल दूत, जहाँ पर पर्यटक आकर रहते हैं, ग्रीन टूरिज्म के लिए बहुत ही प्रसिद्ध हैं, क्योंकि यहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं वो जाकर समुद्र तट के होटल्स में नहीं रहते हैं, लेकिन यहाँ पर आकर लोगों के घरों में रहते हैं। और ऐसे ही कॉन्सेप्ट रोड्रिग्स में पाया जाता है, रोड्रिग्स में भी पाया जाता है, सो जिसको कहते हैं टेबल दूत। पर्यटक आकर वहाँ पर रहते हैं, वहीं पर खाते हैं, पीते हैं और इस तरह से लोगों के साथ मिल जाते हैं, मिल जुल कर रहते हैं। दिस इज़ अनदर कंसेप्ट ऑफ टूरिज्म। जो अन्य बात इस जगह के बारे में कह सकते हैं, ये लोकेशन अपने वाटरफॉल अर्थात झरने के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है। और जिस रिवर पर ये झरना है उस नदी का नाम है द कपानू रिवर, द कपानू नदी। इस लोकेशन के नज़दीक में चंद एबोनी पेड़ भी पाए जाते हैं। एबोनी जो एक ज़माने में काफ़ी फैले हुए थे, लेकिन आज बहुत दुर्लभ हो गए हैं। ये गांव दुनिया भर में विख्यात हैं अपने सेवन कलर्ड अर्थ साइट के लिए, पॉपुलरली नोन एज वाली दे सेट कुलर। और इस जगह का नाम दुनिया भर में सुप्रसिद्ध, इस लोकेशन का नाम आया है शॉल अंतोन दु शाजल के नाम से, और उसके बाद आता है उस जगह का नाम। और ये व्यक्ति उस जगह पर रहते थे साल 1800 के सालों में। सो अब आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कि हम किस जगह के बारे में बात कर रहे हैं। आज इस जगह के बारे में हमें इतना कुछ सीखने को मिला।

गीत गाथा देश की संजय के साथ रेडियो मनोरंजन की लहरों पर। प्रोग्राम की शुरुआत से काफ़ी लोगों ने अपने दिमाग को दौराया, एक एक करके हम आपको संकेत देते रहे, बहुत से लोगों ने सही जवाब दिया। गौवा की सरोजनी जी ने, मेलरोज के रंजन जी ने, लालमाची के सूर्यदेव जी ने, रोजझेल की के सजीत भाई ने, ग्रुप के गुरुदत्त बिसेसा जी ने, कटरबोन की महाराज जी, वाकवा की सुमिता जी सुमति जी, कटकोको के विक्रम भाई और अभी हाल में कुतेज की आशा जानू जी ने भी सही जवाब दिया। सो एक बार फिर हम रिव्यू करते हैं कौन कौन से संकेत हमने आपको दिए। ये लोकेशन दो डिस्ट्रिक्ट के बीच में पाया जाता है, सवान और रिवियनवा, यानी कि ये गांव सवान और रिवियनवा के जो फ्रंटियर हैं वहां पर पाया जाता है। एक भाग सवान में है, एक चौथाई भाग सवान में है और तीन चौथाई ब्लैक रिवर में है। इस लोकेशन के चारों ओर बस हरियाली ही हरियाली पाई जाती है और ये लोकेशन समुद्र तट से 6 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है, फ्रॉम रिवियनवा ब्लैक रिवर। ये लोकेशन अपनी सीनिक ब्यूटी के लिए बहुत ही पसंद किया जाता है, मिशन्स के बीच भी और पर्यटकों के बीच भी। इस जगह में थोड़ी कॉफ़ी भी रोपी जाती है, काफ़ी समय से, काफ़ी सालों से वहाँ पर थोड़ी सी कॉफ़ी भी मिलती हैं और वहाँ पर बहुत सारे टोटिस भी पाए जाते हैं। और ये संकेत सुनकर बहुत से लोगों को सही जवाब मिल गया था। इस लोकेशन की आबादी साल 2011 में 783 की थी। इस लोकेशन में एक गिरजाघर भी पाया जाता है, लिगली सैतान, जो 1876 में बनाया गया था और जहां पर हर

15 अगस्त को असम्पशन डे के अवसर पर एक बहुत भारी भीड़ लगती है, एक पिलग्रिमेज साइट होता है। ये जगह ब्लैक रिवर गोर्जेस नेशनल पार्क से ज़्यादा दूर नहीं है। ये लोकेशन अपनी एथनिक टूरिज्म के कॉन्सेप्ट के लिए, जहाँ पर ताबदोत होते हैं, बहुत ही सुप्रसिद्ध है। ये लोकेशन अपने वाटरफॉल अर्थात अपने झरने के लिए बहुत ही सुप्रसिद्ध है। इस लोकेशन के नज़दीक एबोनी पेड़ भी पाए जाते हैं और ये गांव बहुत ही विख्यात है अपने सेवन कलर्ड अर्थ के लिए, पॉपुलरली नोन एज द वैली दे सेट कुलर। और इस गांव का नाम आया वहां पर रहने वाले शॉल एंटोन दो शाजाल दो शामारेल से, जो साल 1800 के नजदीक के वहां पर रहते थे। सो आज जिस गांव को हम ढूंढ रहे थे उस गांव का नाम है शामारेल।

0: धन्यवाद सबों को जिन्होंने आज के इस प्रोग्राम में हमारा साथ निभाया। बहुत से लोगों ने सही जवाब भी दिया, लेकिन जिन्होंने सबसे पहले सही जवाब हमें दिया वो हैं फुलवंती जी, जो वक्वा की रहने वाली हैं। फुलवंती जी नमस्कार।
1: नमस्कार भाई जी,
0: कैसे हैं फुलवंती जी?
1: ठीक हूँ भैया, आप कैसे हैं?
0: बहुत अच्छा है, श्री राम जी की कृपा से। फुलवंती जी, आपका नाम ही बहुत ही खुशबूदार है। फुलवंती, आपके माता पिता ने बहुत सोच समझ कर ये नाम रखा होगा। फुलवंती जी, आप बताएं कि जीवन में क्या करती हैं?
1: मैं घर पर रहती हूँ।
0: आप गृहिणी
1: हैं? रहनी हूँ।
0: हाँ, आप वक्वा के रहने वाली हैं? वक्वा के किस प्रांत में रहती हैं आप?
1: मैं पहले बिलिया सेफेलिक्स रहती थी।
0: बिलिया सेफेलिक्स?
1: हाँ, वो जो सावान डिस्ट्रिक्ट में है।
0: अच्छा,
1: शादी करके आई वक्वा।
0: अच्छी बात है। बिलिया सेफेलिक्स यानी कि जब रिजोंगी को आप छोड़ देते हैं तो सुयाक से पहले?
1: नहीं, रिजोंगी वो जो गांव है ना।
0: हाँ,
1: थोड़ा अंदर है।
0: यानी कि जब आप कांचाब की ओर जाती हैं?
1: हाँ, तो अंदर थोड़ा सा अंदर है, बेनारस है।
0: बेनारस
1: है? हाँ, और सातो है, बेनारस है, फिर बिलिया सेफेलिक्स, फिर आते हैं इधर।
0: बहुत खूबसूरत जगह है। जो बस सुयाक से निकलता है मेबक जाने के लिए, उस रास्ते पर से गुजरता है।
1: हाँ, वहाँ पर, वहीं पर गुजरता है।
0: अच्छा, बहुत अच्छा। सो फुलवंती जी, अच्छा फुलवंती जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपने साथ दिया, और ऐसे ही आप भाग लेते रहें। हम आपके जरिए बिलिया सेफेलिक्स के रहने वाले और साथ ही साथ वक्वा के रहने वाले हमारे सभी श्रोताओं को हम नमन करते हैं, सलाम करते हैं।
1: ओके भाई जी, आज मेरी गांव की चर्चा हो गई, मैं बहुत खुश हुई। बहुत खुश हुई।
0: आप कभी शमागल गई हुई हैं?
1: एक बार गई थी जब बच्चे छोटे थे। हाँ, हम लोग पिकनिक पर गए।
0: पिकनिक में जब बच्चे स्कूल जाते हैं तो एक्सक्यूशन में वहाँ पर जाते हैं।
1: हाँ, जाते थे तो माता पिता को जाना पड़ता था ना।
0: हाँ,
1: तो हम गए थे तब, उतना उतना अच्छी नहीं थी फैसिलिटी।
0: हाँ,

0: तो हमने गए
1: आजकल थे। आजकल वहाँ पर जाने के लिए नया रास्ता भी खुल चुका है और बहुत बहुत ही प्यारा है, बहुत ही प्यारी जगह है।
0: अगर भगवान करे तो हम अवश्य जाएंगे।
1: हम भी यही प्रार्थना करते हैं। सो फूलवंती जी बहुत बहुत धन्यवाद, फिर से मिलेंगे अगले शनिवार को।
0: शुभ रात्रि आपको।
1: नमस्कार।
0: नमस्कार।
1: राम राम। सो चलिए हमारे जाने का समय आ गया है। आशा करते हैं कि आज के इस प्रोग्राम के जरिए आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अपने देश के बारे में। थोड़ी देर में आप मिलेंगे पूनम जी से, हमें आज्ञा दें। नमस्कार।

0: पुराने नगमे।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। 5:06 हो चुके हैं और मैं हूँ आपके साथ पूनम, RM3 रेडियो मनोरंजन पर आपके ही प्रोग्राम के साथ पुराने नगमे। आज हम बात करने वाले हैं उस सुरीली दुनिया जहां एक गाना या तो याद बन जाता है या एक खास दिन बना लेता है और बॉलीवुड की रात को यानी कि फ्राइडे की रात को बना देता है सबके लिए एक यादगार। क्योंकि आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की उस हसीन आवाज़ और उस अदाकारा की जिसने मेहनत से अपनी मेहनत से नेशनल अवार्ड तक का सफ़र तय किया। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं कृति सेनन की। तो हो जाइए तैयार एक धमाकेदार शाम के लिए सिर्फ RM3 पर।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: दोस्तों हम बात कर रहे हैं कृति सरन की, जिनका जन्म हुआ 27 जुलाई 1990 यानी कि 27th जुलाई 1990 को नई दिल्ली में, एकदम दिल्ली की शान। उनके पापा राहुल सेनन एक चार्टर्ड अकाउंटेंट है और उनकी माँ गीता सेनन दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक प्रोफेसर हैं। तो घर में पढ़ाई का माहौल इतना था, लेकिन कृति ने चुनी अपनी अलग राह, इंजीनियरिंग की डिग्री ली इलेक्ट्रॉनिक्स में और फिर निकल पड़ी मॉडलिंग की दुनिया में। आज वो बॉलीवुड के सबसे चमकदार सितारों में से एक है। यही तो है असली जज्बा दिल्ली वालों का।
2: RM3 रेडियो।

0: पुराने नगमे।
1: तो हम बात कर रहे हैं कृति सेनन की। उन्होंने डेब्यू किया अपना 2014 में पहले तेलुगु फिल्म के साथ महेश बाबू के साथ, और फिर उसी साल बॉलीवुड से आई उनकी हीरो बनती टाइगर श्रॉफ के साथ। और इसी डेब्यू करते हुए इस फिल्म में फिल्म अवे फेयर अवार्ड्स भी उन्हें मिला और न्यू कमर का अवार्ड मिला। उसके बाद उनकी आई मूवी दिलवाले, बरेली की बर्फी, लुका छुपी, हर फिल्म में कृति ने खुद को प्रूव तो किया है। फिर आई मिमी, जिसने उन्हें दिलाया नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड्स, जो कि बेस्ट एक्ट्रेस का था। और ये जैसे कहते हैं ना कि जब कोई बहुत मेहनत करता है किसी चीज़ में, उन्होंने शुरुआत तो की इंजीनियरिंग से और मिला उनको नेशनल अवार्ड। और ये होती है जर्नी इंस्पायरिंग हर लड़की के लिए और हर लड़के के लिए भी, क्योंकि कहते हैं ना कि जब कुछ नहीं हो रहा होता और दिल ऐसे उदास होता है, तो बस ऐसे ही जो लोग होते हैं जो बहुत ही कुछ और करना चाहते हैं और कुछ और ही कर जाते हैं, उनसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो इन्जॉय करो आपका ये सॉन्ग रब्बा।
2: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: दोस्तों बात कर रहे थे कृति सेनन की, जो कि बॉलीवुड की इतनी बड़ी जबरदस्त एक्ट्रेस बन चुकी हैं कि क्या बताऊं। एक तमाम बड़े नामों के साथ वो आज की डेट में काम कर रहे हैं, जैसे उन्होंने काम किया टाइगर श्रॉफ, अक्षय कुमार, वरुण धवन, कार्तिक आर्यन, प्रभास, और रिसेंटली धनुष के साथ उनकी नई फिल्म आई है तेरे इश्क में, डायरेक्टेड बाय आनंद एल रॉय, जो नवंबर 2025 में रिलीज हुई थी। दोनों ने जो एक्टिंग की है, क्या जबरदस्त एक्टिंग की है, और कहते हैं पूरे वर्ल्ड ने ही उसका तारीफ

0: स्टार्स हैं टाइगर श्रॉफ, वरुण धवन, प्रभास, कार्तिक आर्यन, धनुष और रामचरण. और कहते हैं कि अल्लू अर्जुन के साथ भी उनके प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं. और फिल्म जो रामचरण अल्लू अर्जुन और जूनियर NTR जो साउथ के सुपरस्टार्स हैं उनके साथ उनकी बहुत ही अच्छी जोड़ी जमती है. जैसे कहते हैं कि रश्मिका मंदाना, तमन्ना भाटिया, श्रद्धा कपूर, कियारा अडवाणी जो बहुत ही ऐसी बड़ी हस्तियाँ हैं जिनके साथ वो काम कर रही हैं, और रियली उनकी बॉन्डिंग सभी स्टार्स के साथ बहुत ही अच्छी है. तो कहते हैं ना कि अगर आप अच्छे हो तो सब कुछ अच्छा अच्छा होने लगता है. तो गाने उन्हीं की फिल्म से.
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे। 5:36 हो चुके हैं दोस्तों और आप चल रहे हैं मेरे साथ यानी कि पूनम के साथ कृति सेनन की ज़िंदगी के बारे में जानने के लिए। तो कृति सेनन नेशनल अवार्ड विनर हैं और लेकिन बॉलीवुड में सितारों को बहुत ही ऊंचे वक्त तक थोड़े से टेंशन देखने पड़ सकते हैं क्योंकि वो फिल्म कहते हैं ना फिल्मी फैमिली से नहीं रही, वो अलग से ही एक पढ़े लिखे फैमिली कहते हैं ना उसमें से आई हैं। तो एक ऐसा दौर भी आया जब कृति ने एक साथ 3 फ्लॉप फिल्म्स दी जैसे कि गणपत, शहजादा और आदि पुरुष। बहुत सी फिल्म में उम्मीद थी कि भाई वो बहुत ही कुछ अच्छा करेंगी पर वो मूवीज़ जो चली नहीं और फैंस के मुताबिक उनका बजट भी बहुत हाई था पर फिर भी कहते हैं ना रिजल्ट डिसअपॉइंटिंग रहा। लेकिन दोस्तों गिरकर उठना ही असली हीरो हीरोइन की पहचान होती है और उसी तरीके से कृति ने एग्जैक्टली यही किया। मिमी से नेशनल अवार्ड, 2 पत्ती से प्रोड्यूसर बनी और तेरे इश्क में से सबका दिल जीत लिया। फ्लॉप्स आए लेकिन कीर्ति ने कहीं पर भी रुकने का नहीं सोचा और उन्होंने कहा एक दिन मैं ज़रूर उठूंगी और यही हुआ कि वो आज की डेट में सुपरस्टार्स के बीच में हैं।
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: दोस्तों, एक अच्छी एक्ट्रेस वही होती है जो अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ खुद को बदल सके और हर स्क्रिप्ट के साथ अलग काम करने की सोच रखे। कृति सेनन ने भी यही किया, सबीर खान के साथ हीरोपंती से डेब्यू किया, फिर रोहित शेट्टी के साथ दिलवाले में नजर आई और लक्ष्मण उटेकर के साथ मीमी बनाई, जिसने उन्हें नेशनल अवार्ड दिलाया। आनंद एल राय के साथ में उन्होंने तेरे इश्क में बनाई 2025 में और इमोशनल फिल्म में से वो एक रही और सुकुमार और अनीस बज्मी जैसे बड़े डायरेक्टर के साथ अभी वो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स कर रही हैं और हर डायरेक्टर के साथ नई कृति नजर आती है। यही तो होती है हर एक्ट्रेस की पहचान। और कहते हैं कि जब डायरेक्टर्स को उसके अंदर वो खासियत नजर आ जाती है कि हाँ, ये वो काम कर सकती है स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंगली, तो फिर मिलता है सिर्फ नाम और पैसा और काम।
0: You're listening to RM3 Radio।

0: उनकी किसी बिजनेसमैन कबीर भैया के साथ थोड़े से रूमर्स चलते रहते हैं। उन्होंने क्रिसमस और न्यू ईयर लास्ट ईयर साथ सेलिब्रेट किया था फैमिली के साथ। वो वेडिंग बेबी भी दोनों साथ साथ नज़र आते रहते हैं। और कृति ने कुछ कंफर्म तो नहीं किया, बट उनकी सिस्टर छोटी जो है नुपुर सेनन की शादी जनवरी 2026 में उदयपुर में हुई है। और कहते हैं कि वो उनकी एक सिंगर, बहुत ही सुपर सिंगर के साथ में हुई है। तो हम तो यही कहेंगे कि कृति भी अपनी शादी की कहते हैं ना जो बाजा है वो बजवाई दें। अगर नहीं भी है तो हमको बहुत अच्छी बॉलीवुड की मूवी ज़रूर दीजिए। तो बस यही हैं गाने उनके साथ साथ। और अभी समय हो चुका है 5:46, तब तक इन्जॉय करते हैं ये नज़्म गाना।
1: RM3 Radio.

0: पुराने नगमे।
1: चलिए दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कृति सेनन की और उनकी, अब बात करते हैं शादी की। तो कृति जो है अपनी पर्सनल लाइफ को लाइमलाइट से थोड़ा सा दूर रखती हैं। कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन तो अभी तक नहीं है रिलेशनशिप की, बट हाँ

0: पुराने नगमे।
1: तो दोस्तों आज का फर्स्ट सफ़र यहीं छोड़ते हैं। कृति सेनन के नाम एक खास दिन हमने किया था इन पुराने नगमों के साथ। उम्मीद है दिल को छू गया होगा ये प्रोग्राम आपको। मैं थी आपके साथ पूनम, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे फिर एक नई कहानी के साथ, एक नए सफ़र के साथ। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त RN3 रेडियो मनोरंजन से। मैं हूँ आपके साथ पूनम और अब फिर जुड़ेंगे थोड़ी देर के बाद विस्तार से समाचारों के साथ। तब तक मेरे साथ ही रहिएगा। समाचारों के बाद होगी नई सोच और उसके बाद होगी दिलों की आवाज़।
2: RM3 Radio.

0: बुलेटिन में आप सबका स्वागत। सबसे पहले पेश है आज की सुर्खियां। देश दो दरगना कहतियाओं से दहल उठा है। लासोस का थोबोन में एक व्यक्ति की कथित रूप से उसकी पत्नी के हाथों मौत। वहीले सालिन में 23 वर्षीय स्नेहा जुतन की उसके पूर्व मंगेतर द्वारा कथित हत्या कर दी गई। एबोला के बढ़ते खतरे को देखते हुए कैबिनेट ने सावधानी के सख्त कदमों को दी मंजूरी। कोंगो गणराज्य, युगांडा और दक्षिण सूडान से आने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थाई रोक। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए नियम और सख्त होने जा रहे हैं। 10 जून से हाथ में मोबाइल लेकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस पर पहले से अधिक अंक काटे जाएंगे। विदेश में भारत को ऊर्जा क्षेत्र में एक नई सफलता। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का एक और भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत। पेश है समाचार विस्तार से। देश एक बार फिर से दो दर्दनाक हत्याओं से दहल उठा है। कुछ ही घंटों के अंतराल में दो लोगों की जान चली गई और दो परिवार गहरे सदमे में डूब गए। लासोस का थोबोन में एक व्यक्ति की कथित रूप से उसकी पत्नी के हाथों मौत हो गई। वहीं लेसालिन में 23 वर्षीय स्नेहा जुतन की उसके पूर्व मंगेतर ने हत्या कर दी। आज स्नेहा जुतन का अंतिम संस्कार किया गया। उनको अंतिम विदाई दी गई जहां परिजनों और करीबी लोगों की आंखें नम थी। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: एक और त्रासदी जिसने पूरे परिवार, पूरे मोहल्ले और पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। अकाउंटेंट के रूप में काम करने वाली 23 वर्षीय स्नेहा जुतन की शुक्रवार को उनके घर से कुछ ही मीटर की दूरी पर हत्या कर दी गई। युवती पर चाकू से कई वार किए गए थे। इस हमले को उनके पूर्व मंगेतर ने एक विवाद के बाद अपने घर पर अंजाम दिया। इस शनिवार परिजनों, दोस्तों, स्थानीय निवासियों और गणमान्य व्यक्तियों ने उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि दी। जहां तक संदिग्ध का सवाल है, 29 वर्षीय माविन चांग्या पर वीकेंड कोर्ट में हत्या का आरोप दर्ज किया गया है। परिजनों के अनुसार पीड़िता पिछले दो वर्षों से हिंसा का शिकार हो रही थी। अधिकारी पीड़ितों से अपील कर रहे हैं कि वे बहुत देर होने से पहले इन हरकतों के खिलाफ आवाज उठाएं और इनकी शिकायत दर्ज कराएं। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और जेंडर इक्वालिटी मंत्री अरियाना वोमारी ने कहा, ये बहुत दुख की बात है कि एक और महिला की हत्या कर दी गई है। इस युवती की क्रूरता से हत्या की गई है। मैं शब्द बयान नहीं कर पा रही हूँ। मैं पीड़ितों से ये मांग करना चाहती हूँ कि वे मंत्रालय से मदद लेने से न हिचकिचाएं। मदद मांगने से शायद एक जिंदगी बच सकती है। लेसालिन में जिस युवती की मौत हुई थी, उस मामले की रिपोर्ट मंत्रालय में दर्ज नहीं की गई थी।
2: Pas hésiter, faire l'appel à nos bons services. Si je fais l'appel, qu'il faut capable dans la vie capable sauver. Mais besoin de qui ça sa mamzelle qui est décédée à Les Salines, le cas n'a pas été rapporté chez nous au ministère.
1: अधिकारी डोमेस्टिक अप्यूज बिल के मसौदे को अंतिम रूप दे रहे हैं। महिलाओं के खिलाफ बढ़ती हिंसा से निपटने के लिए ये एक नया कानून है जिसमें रोकथाम, सुरक्षा और जवाबदेही पर आधारित एक व्यापक रणनीति को प्राथमिकता दी जा रही है।
0: देश को झकझोर देने वाली दो हत्याओं को ठीक एक दिन बाद एक अहम संदेश दिया गया। घरेलू और लैंगिक हिंसा पर अब चुप्पी नहीं। मॉरिशस पुलिस फोर्स की मेट्रो साउथ डिवीजन ने आज पोर्टवे के लाइन बराक्स में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। इस अवसर पर लोगों से हिंसा के मामलों को छिपाने के बजाय समय रहते शिकायत करने, पीड़ितों का समर्थन करने और समान तथा समानता पर आधारित संबंधों को बढ़ावा देने की अपील की गई। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
3: ये दुखद घटनाएं एक बार फिर से इस कठोर सच्चाई की याद दिलाती हैं कि घरेलू हिंसा आज भी मॉरिशस में गंभीर सामाजिक समस्या बनी हुई है। परिवार और माताओं की भूमिका को सम्मान देने वाले विभिन्न आयोजनों के बीच पुलिस ने कैसे मुद्दे पर

0: विशेष ध्यान केंद्रित किया जो सीधे मॉर्शन परिवारों को प्रभावित करता है। लैंगिक आधारित हिंसा के खिलाफ संघर्ष, ये संदेश बैडेडाम में एक महिला की हत्या के खिलाफ की गूंज भी रही। एक जमीनी हकीकत ये है कि पुलिस को अक्सर तब सूचित किया जाता है जब स्थिति बहुत बिगड़ जाती है। WCI नाग्या ने कहा, यदि समय रहते ये मांग मिली होती तो पुलिस स्थल पर जाकर हत्या रोक सकती थी। बहुत देर से मांग मिली, पुलिस स्थल पर गई, सब आवश्यक कदम उठाया। दुर्भाग्यवश एक युवा महिला ने अपनी जान घरेलू हिंसा के कारण गंवाई। पूरे दिन महिलाओं की भूमिका प्रमुख रही। महिला पुलिस कर्मियों की परेड, विभिन्न पुलिस इकाइयों के प्रदर्शन, पुलिस वाहनों जिनमें ब्लैक मारिया मोटरसाइकिलें और साइकिलें शामिल थीं के प्रदर्शन हुए। इन गतिविधियों का उद्देश्य पुलिस सेवा में महिलाओं के योगदान और हिंसा की रोकथाम में उनकी भूमिका को रेखांकित करना था। सभी कार्यक्रमों का साझा संदेश था, बहुत देर होने से पहले चुप्पी तोड़ें। इसी संदर्भ में नागरिकों से सतर्क रहने और चिंताजनक परिस्थितियों की तुरंत सूचना देने की अपील की गई। WASP अपाडू ने कहा, यदि एक पड़ोसी को असामान्य शोर सुनाई दे, खासकर लड़ाई के, पुलिस स्टेशन को सूचित करना चाहे, हम उचित कदम उठाएंगे। इस जागरूकता अभियान के माध्यम से पुलिस ये संदेश देना चाहती है कि शिक्षा, रोकथाम और समय पर शिकायत दर्ज कराना लैंगिक आधारित हिंसा से लड़ने के सबसे महत्वपूर्ण साधन है ताकि त्रासदी से बच सके।
1: एबोला के बढ़ते खतरे को देखते हुए कैबिनेट ने सावधानी के सख्त कदमों को मंजूरी दी है। कोंगो गणराज्य, युगांडा और दक्षिणी सूडान से आने वाले विदेशी नागरिकों के प्रवेश पर अस्थायी रोक रहेगी। वहीं मॉरिशस नागरिकों और विभिन्न प्रकार के परमिट धारकों को देश में प्रवेश की अनुमति होगी, लेकिन उन्हें 21 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन से गुजरना होगा। प्रभावित देशों से आने वाले यात्रियों की स्वास्थ्य जाँच भी की जाएगी, जबकि रियोंबेल स्थित अनिरुद्ध जगन्नाथ लेजर सेंटर को क्वारंटीन केंद्र बनाया गया है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
0: इस शनिवार को स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और सार्वजनिक स्वास्थ्य चिकित्सक एबेन में आपात बैठक के लिए एकत्र हुए। बैठक का उद्देश्य रियोंबेल क्वारंटीन केंद्र की अंतिम तैयारियों को पूरा करना तथा क्वारंटीन एक्ट 2020 में संशोधन कर एबोला वायरस को उसके प्रावधानों में शामिल करना था।
2: Quarantaine pour durer 21 jours. Donc, tout d'abord, nous pour force transit, ça veut dire nous pour finir connaître, bien sûr, ça va une personne revenant de sa de sa trois pays là. Depuis l'aéroport, pour sujet bien sûr un thermal screening, ben sanitaire pour prendre en charge, pour diriger vers une Riambel Recreational Center qui finit identifié. Donc là-bas, nous pour une équipe qui peut suivre eux pendant 21 jours.
0: हवाई अड्डे पर उच्च जोखिम वाले देशों से आने वाले यात्रियों की थर्मल स्कैनिंग की जाएगी और स्वास्थ्य मंत्रालय के सैनिटरी ब्यूरो द्वारा उनकी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। बंदरगाह पर भी स्वास्थ्य निगरानी को और मजबूत किया जाएगा और यात्रियों की सूची पर विशेष ध्यान दिया जाएगा।
3: De ces trois pays, deux sont enclavés, donc il n'y a pas de port, sauf le DRC. Donc, il y a un port, il y a des ports au DRC, mais nous n'avons pas de ligne directe de DRC à port lui. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des navires qui auraient éventuellement touché le DRC. Donc c'est ça la mesure accrue. Il faut bien veiller quels sont les ports qu'ils ont fait, quel est le dernier arrêt qu'ils ont fait au DRC et voir avec le protocole pour l'incubation de Ebola comment est-ce que tout ça marche. Si jamais ça vient avant les 21 jours, comme la santé a demandé, le navire restera au mouillage, ne va pas entrer au port. Pour l'instant, nous sommes dans saison mode des croisières, donc nous n'avons pas de croisière jusqu'à septembre, si je ne me trompe. Donc, on est tranquille de ce côté-là.
0: मॉरिशस को इबोला वायरस से सुरक्षित रखने के लिए कई अहम फैसले लिए गए। हवाई मार्ग से मॉरिशस आने वाले सभी यात्रियों के लिए यात्रा से पहले ऑल इन वन ट्रैवल फॉर्म और हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना अनिवार्य होगा। समुद्री मार्ग से मॉरिशस आने वाले यात्रियों को भी यात्रा शुरू करने से पहले हेल्थ डिक्लेरेशन फॉर्म भरना होगा। कोई भी विदेशी नागरिक जिसने पिछले 21 दिनों के दौरान लोकतांत्रिक कोंगो गणराज्य

0: या युगांडा या दक्षिण सूडान की यात्रा की हो या वहां से होकर गुजरा हो, उसे अस्थायी रूप से मॉरिशस में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मॉरिशस के नागरिकों तथा कार्य परमिट, निवास परमिट, व्यवसाय वीजा या छात्र वीजा रखने वाले विदेशी नागरिकों को, यदि उन्होंने इन तीन देशों की यात्रा की है या वहां से होकर गुजरे हैं, मॉरिशस पहुंचने पर 21 दिनों के अनिवार्य क्वारंटीन में रखा जाएगा। ये सभी उपाय 8 जून से लागू होंगे और 7 अगस्त तक प्रभावी रहेंगे।
1: अफ्रीका में इबोला के बढ़ते मामलों ने चिंता बढ़ा दी है। कोंगो में 500 से अधिक संदिग्ध मामले और 131 मौतें दर्ज की गई हैं। स्थिति को देखते हुए अफ्रीका सीडीसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए एक संयुक्त कार्य योजना शुरू की है।
2: अफ्रीका में इबोला के बढ़ते मामलों के बीच अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र यानी अफ्रीका सीडीसी और विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO ने एक संयुक्त कार्य योजना शुरू की है ताकि इस बीमारी को फैलने से रोका जा सके और प्रभावित देशों को आवश्यक सहायता दी जा सके। जून से नवंबर 2026 तक चलने वाली इस योजना के लिए 518 मिलियन अमेरिकी डॉलर जुटाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तहत रोग की पहचान, निगरानी, जांच और उपचार और बचाव के उपायों को मजबूत किया जाएगा। ये कदम कोंगो और युगांडा में फैल रहे बुंदी बुग्यो प्रकार के इबोला को देखते हुए उठाया गया है, जहां स्वास्थ्य अधिकारी संक्रमण को नियंत्रित करने के प्रयास तेज कर रही है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार कोंगो में अब तक 513 से अधिक संदिग्ध मामले सामने आ चुके हैं, जबकि 131 लोगों की जानें चली गई हैं। वहीं युगांडा में भी संक्रमण के पुष्ट मामले और एक मौत की पुष्टि हुई है, जिसके बाद पूरे क्षेत्र में सतर्कता बढ़ा दी गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार इस बीमारी पर नियंत्रण के लिए स्थानीय लोगों की भागीदारी, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में आए लोगों की पहचान और समय पर उपचार बेहद महत्वपूर्ण है। योजना में सीमावर्ती क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाने, प्रयोगशालाओं की क्षमता मजबूत करने, स्वास्थ्य कर्मियों को सहायता देने और लोगों में जागरूकता फैलाने पर विशेष जोर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि बुंदी बुग्यो प्रकार के इबोला के लिए फिलहाल कोई स्वीकृत टीका या विशेष दवा उपलब्ध नहीं है, इसलिए तुरंत जांच की आवश्यकता पर जोर दिया जा रहा है। अफ्रीका रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्र और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अफ्रीकी देशों से सीमा चौकियों पर स्वास्थ्य जांच को और सख्त करने तथा आपसी सहयोग बढ़ाने की अपील की है, ताकि इस प्रकोप को जल्द नियंत्रित किया जा सके और अधिक लोगों की जान बचाई जा सके।
1: मॉरिशस में तैयार होने वाले कपड़े दुनिया के कई बड़े ब्रांड्स और मशहूर लोगों तक पहुंचते हैं। अब बदलती पर्यावरणीय ज़रूरतों को देखते हुए क्यूपिप स्थित वेंसम कारखाना और सौर ऊर्जा को अपना रहा है। कंपनी ने इस परियोजना में 30 मिलियन रुपए निवेश किए हैं।
0: क्यूपिप में वेंसम कारखाने की छत पर सैकड़ों फोटोवोल्टाइक पैनल बिठाए जा रहे हैं। इस नीति के पीछे मकसद साफ है, अपनी प्रमुख मंडियों यूरोप और अमेरिका की मांगों को पूरा करना, जो कि कार्बन मुक्तिकरण यानी कि डिकार्बोनाइजेशन है। यहां प्रति साल दुनिया के सबसे प्रतिष्ठित ग्राहकों के लिए करीब 60,000 पोशाक बनाई जाती हैं। अंतर्राष्ट्रीय हस्तियों के लिए उच्च यूरोपीय लेबल के अलावा उच्च स्तर की इंग्लिश फुटबॉल के खिलाड़ियों और कोच लोगों के लिए भी। लेकिन आज केवल विशेषज्ञता पर्याप्त नहीं, उत्पाद की किस्म के अलावा ठोस पर्यावरण प्रतिबद्धता भी साथ में होनी चाहिए। वेंसम के डायरेक्टर जनरल अविनाश गोवर्धन कहते हैं,
3: Aujourd'hui la qualité n'est pas le seul réquisite des acheteurs. Ce tout lié à une transparence dans la production, une transparence sur l'éthique et une transparence sur la continuité. Donc on a investi dans 500 kilowatts sur la toiture de l'usine. C'est dans cette optique de marier le savoir-faire mauricien avec l'avenir.
0: इस सौर स्टेशन की बदौलत ये उद्योग पूर्ण रूप से स्वच्छ ऊर्जा से काम कर सकेगा। निवेश की रकम 30 मिलियन रुपए है। भविष्य में डीजल से चलने वाले उसके बॉयलर को सौर ऊर्जा की एक विद्युत प्रणाली से बदल दिया जाएगा। लगभग 250 किलोवाट का अतिरिक्त ऊर्जा उत्पादन सीयूबी के

0: राष्ट्रीय बिजली ग्रिड में डाला जाएगा। लगभग 350 रुपये के वार्षिक कारोबार के साथ वेंसम ये साबित करती हैं कि औद्योगिक उत्कृष्टता, प्रतिस्पर्धा और पर्यावरण के प्रति जिम्मेदारी एक साथ आगे बढ़ सकती हैं। साथ ही ये अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में मॉरिशस के वस्त्र उद्योग के भविष्य को भी मजबूत कर सकती हैं।
1: मॉरिशस में महंगाई को लेकर राहत भरा अनुमान है। अफ्रीकी विकास बैंक की नई रिपोर्ट के अनुसार 2026 में 6% रहने वाली महंगाई दर 2027 में घटकर 3.9% तक आ सकती है। रिपोर्ट में कहा गया कि आने वाले समय में स्थानीय बाजार में दामों पर दबाव धीरे धीरे कम हो सकता है। जरा विस्तार इस रिपोर्ट में।
2: The key point to take from here is that even after factoring in the impacts of the Middle East crisis, that Africa's real GDP growth is doing well. It will still be above 4.0% at the end of 2026, even if the conflict continues up to 6 months.
3: मुद्रास्फीति में कमी और आर्थिक विकास में सुधार मॉरिशस के लिए अफ्रीकी विकास बैंक के ये मुख्य पूर्वानुमान है। महंगाई दर 2026 में 6% से घटकर 2027 में 3.9% होने की उम्मीद है, जबकि इसी अवधि के दौरान आर्थिक विकास दर 2.8% से बढ़कर 3.8% होने का अनुमान है। ये ऐसे परिदृश्य हैं जो परिवारों को कुछ राहत दे सकते हैं और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा दे सकते हैं।
4: Le pouvoir d'achat pourra sans doute se stabiliser, notamment autour des produits.
3: अर्थशास्त्री मनीषा दुखनी बताती हैं, निश्चित रूप से खरीद शक्ति में स्थिरता आएगी, खासकर जरूरतमंद पैदावारों को लेकर, चाहे खाद्य हो, परिवहन हो या बिजली। कंपनियों के लिए 2026 की तुलना में 2027 में अधिक वृद्धि होगी।
4: Une demande intérieure qui sera potentiellement beaucoup plus dynamique. Que ça ne l'est aujourd'hui parce que on est quand même dans une situation où c'est beaucoup moins et un environnement macroéconomique qui sera potentiellement beaucoup plus prévisible.
3: इन उत्साहजनक संभावनाओं के बावजूद अफ्रीकी विकास बैंक ने रेखांकित किया है कि मॉरिशस अभी भी कुछ आर्थिक असंतुलन का सामना कर रहा है। देश में राजकोषीय घाटे बने रहने का अनुमान है, जिसका अर्थ है कि देश का खर्च उसकी आय से अधिक रहेगा। बजट डेफिसिट में ये अनुमान है कि हल्की सी बेहतर स्थिति होगी जो बजट से शुरू होगी, जिसे फिस्कल कंसोलिडेशन कहा जाता है। ऋण बहुत है और फिस्कल कंसोलिडेशन से हम ऋण को कम कर सकते हैं।
4: De dette assez haut, donc avec la consolidation fiscale, on va aussi potentiellement pouvoir maintenir le cap sur la diminution de notre dette.
3: रिपोर्ट में करंट अकाउंट डेफिसिट का भी उल्लेख किया गया है, क्योंकि आयात अभी भी निर्यात की तुलना में अधिक बना हुआ है। हालांकि ये एक ऐसी स्थिति है जिसमें आने वाले वर्षों में धीरे धीरे सुधार होने की उम्मीद है।
5: Le plus gros composant de notre trade balance.
3: हमारे ट्रेड बैलेंस का सबसे बड़ा हिस्सा पेट्रोल से संबंधित है। लंबी अवधि में कीमत कम हो रही है, जिससे करंट अकाउंट में सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, यानी घाटा कम होगा। दूसरी ओर पर्यटन और वित्तीय सेक्टर तथा ICT सेक्टर से निर्यात से आय मिल रहे हैं, जिससे करंट अकाउंट डेफिसिट को कम किया जा सकता है।
5: Continue à apporter pas mal de export earnings, donc de revenus. Ça va contribuer aussi à réduire le current account deficit.
3: रिपोर्ट में मॉरिशस को आर्थिक और वित्तीय प्रबंधन के मामले में अफ्रीकी देशों के बीच एक रोल मॉडल के रूप में भी उद्धृत किया गया है। अफ्रीकी विकास बैंक ने विशेष रूप से टैक्स और अन्य सार्वजनिक राजस्व को प्रभावी ढंग से एकत्र करने की देश की क्षमता और साथ ही इसके वित्तीय क्षेत्र की मजबूती को प्रमुखता से सामने रखा है।
1: गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने वालों के लिए नियम और सख्त होने जा रहे हैं। 10 जून से हाथ में मोबाइल लेकर वाहन चलाते पकड़े जाने पर ड्राइविंग लाइसेंस पर पहले से अधिक अंक काटे जाएंगे। और इस बीच हैंड्स फ्री उपकरण को भी लेकर कुछ नियम लागू होने वाले हैं। ये सभी नियम 10 जून से लागू होंगे। विदेश की खबरों में भारत के ऊर्जा क्षेत्र में एक नई सफलता मिली है। अंडमान

0: सागर में प्राकृतिक गैस का एक और भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। ये खोज भारत की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने और आयात पर निर्भरता कम करने में मददगार साबित हो सकते हैं। ज्यादा विस्तार इस रिपोर्ट में।
1: भारत को समुद्री ऊर्जा खोज के सेक्टर में एक नई सफलता मिली है। अंडमान सागर में प्राकृतिक गैस का एक नया भंडार मिलने की पुष्टि हुई है। ये खोज अंडमान द्वीप समूह के पूर्वी तट से लगभग 15 किलोमीटर दूर एक खोजी कुएं में की गई है। ये क्षेत्र समुद्री तल से लगभग 355 मीटर की गहराई में स्थित है। ये पिछले एक वर्ष के भीतर इस क्षेत्र में प्राकृतिक गैस की दूसरी महत्वपूर्ण खोज है। अब तक खोदे गए तीन खोजी कुओं में से दो में हाइड्रोकार्बन यानी तेल या गैस की मौजूदगी पाई गई है। प्रारंभिक परीक्षण के दौरान लगभग 1900 मीटर से अधिक गहराई पर प्राकृतिक गैस के संकेत मिले हैं, जिससे इस क्षेत्र में बड़े ऊर्जा भंडार होने की संभावना और मजबूत हुई है। विशेषज्ञों का मानना है कि लगातार मिल रही सफलताओं से अंडमान बेसिन के ऊर्जा संसाधनों के बारे में नई जानकारी प्राप्त होंगी और भविष्य में यहां व्यापक स्तर पर खोज एवं उत्पादन गतिविधियां तेज हो सकती हैं। ये खोज एक ऐसे समय में हुई है जब भारत अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरी करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए समुद्री क्षेत्रों में तेल और गैस की खोज को बढ़ावा दे रहा है।
0: अब चलिए जानते हैं मौसम का हाल।
2: दक्षिण से पाए जाने वाले बादल आज रात से स्थानीय मौसम को प्रभावित करेंगे। मस्करिंस के दक्षिण से पाए जाने वाले जोरदार एंटीसाइक्लोन की वजह से हमारे इलाके पर ठंडी हवा की लहर बहेगी। अगले 24 घंटों के लिए पूर्वानुमान है कि आज रात और कल सुबह बादल घिरे रहेंगे और बारिश होगी, खासकर दक्षिण पूर्व और सेंट्रल प्लेटों पर। रात के दौरान सामान्य बारिश हो सकती है, ऊंचाइयों पर कोहरे छाए रहेंगे। न्यूनतम तापमान ऊंचे इलाकों पर 16 से 18 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 20 से 22। कल दिन के दौरान मौसम सुहाना रहेगा। अधिकतम तापमान सेंट्रल प्लेटों पर 20 से 23 डिग्री सेल्सियस, अन्य इलाकों पर 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रहेगा। हवा दक्षिण की ओर से 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बहेगी, जिसके झोंके 60 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं। प्रवाह रेखा के परे समुद्र चंचल रहेगा और दक्षिण के समुद्र में 3 मीटर ऊंची लहरें उठेंगी। दूर समुद्र में तथा पश्चिमी, दक्षिणी और पूर्वी लगूनों में नहीं निकलने की सलाह दी जाती है। कल सुबह 6:40 पर सूरज उगेगा और शाम 5:37 पर सूरज ढल जाएगा।

0: session tomorrow at 1 p.m. रॉय रोड क्वीन विक्टोरिया में 90 साल की 90 ईयर्स ओल्ड की श्रीमती दुलारी ओहा जो मामा आनंद महादेव के नाम से ज़्यादा जानी जाती थी, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 12 बजे उनकी बेटी साधना बंधु के मकान रॉय रोड क्वीन विक्टोरिया से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुशों की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट नून। अलीमोंग रोड गुडलैंड्स में 85 साल के 85 ईयर्स ओल्ड के श्री राजदन ओहिया जो दर्शन के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 1 बजे उनके बेटे विनय ओहिया के मकान अलीमोंग रोड गुडलैंड्स से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए बुआहूज गुडलैंड्स की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 1 PM। ब्रांच रोड लाल माटी में 76 साल के ओल्ड के श्री केदार सिंह श्री किशुन जो सुवेश के नाम से ज़्यादा जाने जाते थे, उनकी मृत्यु हो गई है। अर्थी कल दिन के 2 बजे उनकी पत्नी बृंदा श्री किशुन के मकान ब्रांच रोड लाल माटी से उठाकर अंतिम संस्कार के लिए इलाके की शमशान भूमि ले जाई जाएगी। क्रिमिशन टुमोरो एट 2 PM। शोक में डूबे इन परिवारों के प्रति हमें हमदर्दी है।
1: NBC Play, NBC Radio.tv, NBC Radio.

0: Continuous music. RM3.
1: Nasal.

0: सजना
1: नमस्ते दोस्तों, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कई बार हम सोचते हैं सब कुछ ठीक हो जाएगा तब खुश होंगे, जब हमारे पास बहुत सारा पैसा होगा तब हम खुश होंगे, कई बार लगता है बच्चों की शादियां हो जाएंगी और उनकी पढ़ाइयां पूरी हो जाएंगी तब हम खुश होंगे। लेकिन सच तो ये है, ज़िंदगी कभी पूरी तरीके से परफेक्ट नहीं होती। क्यों, ऐसा ही है ना, बिल्कुल नहीं होती है। तो ज़िंदगी में जो हम आज प्रोग्राम लेकर आए हैं आपके लिए, नई सोच में मैं हूँ आपके साथ पूनम। बस इतना कहना चाहूँगी, खुश रहने के लिए हर चीज़ परफेक्ट नहीं होना चाहिए और हमेशा सब कुछ नहीं मिलना चाहिए। हर चीज़ हमारे अगर हाथ आ जाती है, प्लेट में सज के आ जाती है और हम खा लेते हैं, उसलिए तो कहते हैं ज़िंदगी हमेशा थोड़ी थोड़ी ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी ऐसे ही सीखी जाती है, ऐसे ही उसका कहते हैं ना टेस्ट आता है, टेस्ट पता चलता है। तो अगर आपकी ज़िंदगी में भी थोड़ा सा ऊपर नीचे है तो क्या टेंशन है, हम हैं आपके साथ RM3 रेडियो मनोरंजन पर। मैं हूँ आपके साथ पूनम।
2: RM3 रेडियो

0: नई सोच। 6:43 हो चुके हैं दोस्तों और आप जुड़े हुए हैं आपके ही प्रोग्राम नई सोच के साथ। और नई सोच में हम बस इतना ही कहना चाहते हैं कि कहते हैं कि अपनी कमियों पर ध्यान देते रहना चाहिए। अक्सर हम अपनी कमियों को बिल्कुल भूल जाते हैं और एहसास करते हैं कि सब कुछ अच्छा अच्छा हमें मिले, और अगर हमारे में कमी है तो क्या हुआ। कमियों में अगर आप खुद देखते रहेंगे तो आपको एहसास होगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसे हैं जो अपने आप ठीक होती चली जाती हैं अगर हम सिर्फ एक चीज़ करते हैं, सिर्फ थैंक यू बोलते हैं या शुक्रिया करते हैं इस यूनिवर्स का, अपने माता पिता का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का, अपने उन कलीग्स का जो हमारे साथ हमेशा चारों टाइम हमारे साथ रहते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। अगर आप सबको थैंक यू बोलते रहेंगे तो एक दिन देखिएगा कि आपको सिर्फ शुक्रिया कहने से सारी ज़िंदगी बहुत ही आसान हो जाती है।
1: इश्क छुपता नहीं

0: तो दोस्तों 6:52 हो चुके हैं। कहते हैं ना, ज़िंदगी में सब कुछ आपके हिसाब से हो ये ज़रूरी नहीं, लेकिन जो भी उसे मुस्कुराकर स्वीकार करता है, ज़रूर सीखेगा कि जो भी मुस्कुराकर स्वीकार करता है, यही छोटी सी सोच जो होती है ना, बदलाव लेकर आती है, बड़ी खुशी बन जाती है आपकी ज़िंदगी में, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया जैसी भी ज़िंदगी है बिल्कुल परफेक्ट है। मैं ही आपके साथ हूँ पूनम, और अब इसके बाद आप सुन पाएंगे दिलों की आवाज़। तब तक मेरे साथ बने रहिए, आपका प्यारा सा गाना सोनू निगम की आवाज़ और सुनिधि चौहान की आवाज़ में आप सुन पाएंगे फना मूवी से।
1: RM3 रेडियो।

0: Peter on your one and only station. टाइम चेक शाम के 7 बज रहे हैं।
1: दिलों की आवाज़ की

0: दिलों की आवाज की आवाज।
1: नमस्ते आदाब, वेरी गुड इवनिंग एवरीवन। कहते हैं ना, हर शाम अपने साथ कुछ ना कुछ लेकर आती है, कहीं यादें, कहीं मुस्कान, तो कहीं किसी अपने का ख्याल। तो आइए इस खूबसूरत पलों को और सुरीला बनाते हैं। आप सुन रहे हैं दिलों की आवाज़ और मैं हूँ आपके साथ पूनम। अगले दो घंटे होने वाले हैं सिर्फ गीत, एहसास और आप सबका साथ। और इस समय ब्यूटीफुल नाइट जो जहाँ जहाँ हो रही है, कहीं पर मॉर्निंग भी हो रही है, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी कंट्रीज़ के साथ जुड़े हुए हैं। बट हम आपको यही कहेंगे, जहाँ पर हैं, जैसा दिन है वैसा इन्जॉय कीजिए हमारे साथ मस्ती वाले गानों के साथ। पुराने नगमे भी चलेंगे आपके लिए और नए भी चलेंगे, तो आपको जो जो पसंद आएगा हम यहाँ पर चलाएँगे। बट कुछ मूड होगा, पुरानों से शुरू करते हैं। क्यों, मोहम्मद रफ़ी की आवाज़ में सबसे पहले ये सुनते हैं।
0: RM3 रेडियो।

0: क्यों?
1: शादी तो बर्बादी है।
0: क्या कहती हो?
1: हो जाती आजादी है।
0: नहीं नहीं
1: बाय बाय।
0: सुनो तो,
1: दादा।
0: मोना सुनो
1: दादा।
0: तो

0: पहले जरा आप मुस्कुराई, पहले जरा आप मुस्कुराई,
1: पहले जरा आप मुस्कुराई।
2: आवाज़
1: 7:24 हो चुके हैं और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं आपके ही दिलों की आवाज़ प्रोग्राम के साथ रेडियो मनोरंजन, और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो ये जो प्यारी सी आवाज़ आप हंसी मजाक सुन रहे थे किशोर दा की आवाज़ में और आशा भोसले जी की, क्या एक नेचुरल हंसी थी। और कहते हैं ना, ऐसी हंसी अगर शाम को अपने घर में सुनाई देती है तो ऐसे लगता है कि काश हमारी मम्मा ऐसे हंस रहे हों, और ऐसे लगता है हमारे घर में ऐसी हंसी खुशियां जब आती हैं तो और अच्छा लगता है। तो बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए। मेरे पास साथ में बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं फोन्स के थ्रू और बहुत सारे मैसेजेस के साथ में। तो बस एक संजय चुग जी हैं इंडिया से, यानी कि दिल्ली से अभी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिस्टर आरएन कंसारा जी गुजरात से जुड़े हुए हैं। ललित जी यूएसए से साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं अपनी वाइफ के लिए कि मैं अपनी वाइफ को बहुत प्यार करता हूं, बस उनको ये कहना चाहता हूं मैं जल्दी आपसे मिलने आ रहा हूं। साथ में मिसेस कमलेश रानी जी भी जुड़ी हुई हैं इंडिया से। क्या बात है, आज बहुत सारे लोग इंडिया से, क्या बात है। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई लोग अपने भारत से होते हैं, और खुशी मिलती है क्योंकि सारे, हम ये कहते हैं ना, मॉरिशस तो एक मिनी इंडिया है। तो बहुत सारे गानों के साथ फरमाइश की गई है कि कश्मीर की कली अगर मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की आवाज़ में एक प्यारा सा गाना सुनाया जाए। तो चलिए भाई सुनते हैं उनकी आवाज़ में।

0: दिलों की आवाज,
1: शाम का ये वक्त कुछ पल रुकने का है और जो अच्छा है उसे महसूस करने का है। हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़ रहे हैं और मैं भी उनके साथ उनके फ़ोन लेना चाह रही हूँ, मैसेजेस पढ़ना चाह रही हूँ, बट इतना है कि कभी कभी थोड़ी थोड़ी चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं, हमसे भी हम भी उस चीज़ों में बिजी हो जाते हैं। तो चलिए भाई, आपके गानों के साथ, आपके मैसेजेस के साथ में हम जुड़े हुए हैं। गुलशन जी चाहते हैं कि अपनी मामा के लिए, अपनी सिस्टर के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना। उसके साथ में ही सूरज शर्मा साजता जी भी जुड़े हुए हैं और बेटे निशाल के साथ ही प्रोग्राम को इंजॉय कर रहे हैं, कह रहे हैं इतने प्यारे से प्यारे गाने चल रहे हैं तो क्यों दोबारा से मैसेज करके ये कहना कि कोई हमारी पसंद का चला दो। क्या बात है, थैंक यू ब्रदर, अच्छी बात है। आप लोग इस तरीके से समझते हैं बट आपके जो मैसेजेस होते हैं हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। इस समय हमारे साथ विहान जुड़े हुए हैं और वो भी अपने पापा के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहते हैं। कहते हैं मेरे मामा और पापा मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिंदगी में कुछ चीज़ मिले ना मिले बट मामा पापा का प्यार मिले बहुत प्यारी बात है। थैंक यू सो मच, इतना ही प्यार अपने मम्मी पापा को देते रहो। साथ में सुदेवी जी भी जुड़ी हुई है और अपने पूरे परिवार को एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं। उसके साथ में हमारे बहुत ही अच्छे एक लिसनर दोस्त हैं संजीव जी, जो कि यूएसए से जुड़े हुए हैं और एक खलनायक मूवी का गाना सुनना चाहते हैं और कह रहे हैं कि गाने बहुत ही प्यारे हैं बट मैं इतना कहना चाहता हूँ मुझे इन गानों से प्यार से ज़्यादा RM3 से प्यार हो गया। क्या बात है, थैंक यू सो मच। उसके साथ में स्वेनल जी जुड़ी हुई हैं और अपने भाई और भाभी के लिए, अपने भतीजे और भतीजियों के लिए एक प्यारा सा गाना सुनाना चाहती हैं और सभी रामचरण फैमिली के लिए गाना सुनाना चाहती हैं, जो कि अंतिश इस समय स्विट्जरलैंड से हमें सुन रहे हैं। कह रहे हैं कि अंतिश हमेशा एक गाने की रिक्वेस्ट करते हैं बट उनको मैं इतना कहना चाहती हूँ, आप गाने की रिक्वेस्ट ना करो, आप बस इतना कहो कि आप मुझे प्यार करते हैं, बस इतना सब बोल दीजिए, मैं तो भाग भाग के आपके पास आ जाऊँगी। सो ब्यूटीफुल मैसेज, थैंक यू सो मच आप सबका जुड़ने के लिए।
0: RM3 रेडियो।

0: 7:46 हो चुके हैं दोस्तों, और आप जुड़े हुए हैं आपकी के प्रोग्राम के साथ दिलों की आवाज़, और हम आपके साथ हैं। हमारी पूरी एमबीसी की टीम, कह सकते हैं RM3 की पूरी टीम आपके साथ हर वक्त है। छोटी मोटी चीज़ें सारे कहीं ना कहीं करते रहते हैं, पर घर के अंदर जब खुशी का माहौल होता है, चाहे कैसा भी माहौल हो, गाने हल्के हल्के किसी कोने में चल रहे होते हैं, तो अगर थोड़ा सा उदासी भी होती है ना, वो भी ठीक हो जाती है, क्योंकि अलग अलग मूड के लिए अलग अलग गाने बने हुए हैं। तो चलिए भाई, हमारे साथ इस समय ललिता जी जुड़ी हुई हैं थ्रियोले से, उस एक प्यारा सा गाना सुनना चाहती हैं। और भाई अबू तो खुश हो गए होंगे, क्योंकि उनकी पसंद का गाना अभी चला था थोड़ी देर पहले। उसके साथ में ही बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको कहा कि क्या एक प्यारा सा ऐसा गाना चला सकते हैं जिससे थोड़ा सा मूड सेट हो जाए। मैंने बोला कौन सा वाला सुनना चाहेंगे, उन्होंने बोला क्योंकि हम ड्राइव कर रहे हैं और कहीं से वापस आ रहे हैं और थोड़ी सी नींद आ रही है, तो आप एक ऐसा गाना चला दीजिए जिससे हमारी नींद गायब हो जाए। चलिए भाई, हम उसके लिए भी तैयार होते हैं और एक प्यारा सा गाना ढूंढते हैं। बट इतना बोलूँगी कि जब ड्राइव करें तो बिल्कुल बातें करते रहें, जो साथ में बैठा हुआ है वो बिल्कुल ना सोए। तो चलिए इंजॉय करते हैं आपके कुछ गाने।
1: RM3 रेडियो।

0: RM3 Radio.
1: ये उन दोस्तों के लिए जिनको अपनी नींद भगानी है, इसका लास्ट बीट जो है बहुत मस्त है, तो चलिए भाई एंजॉय करते हैं ये गाना आप सबके लिए।

0: दिलों की आवाज,
1: 8:13 हो चुके हैं दोस्तों, और आपको हम इतना ही कहेंगे कि हर दिन बिड़ा बड़ा होने की जल्दी मत कीजिए, कुछ पल बच्चे बनकर भी जी लिया कीजिए, क्योंकि हमारे साथ अभी एक बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं विहान। विहान अपने मम्मी पापा को बस इतना ही कहना चाहता है, पापा आपसे बेटर कोई नहीं हो सकता। शायद मुझे लगता है चाहे उनके पापा में कितनी ही खोट हो, दुनिया को दिखता हो, पर बच्चे को कभी अपने पापा में या मम्मा में कोई खोट नहीं दिखता, और यही सबसे बड़ी बात है, यही होना चाहिए। और मुझे भी लगता है कि जैसे पेरेंट्स होते हैं वो भी अपने बच्चों में कितने भी खोट हो तब भी उस पर नहीं ढूंढ पाते, क्योंकि उनको उनसे प्यार होती है, मोहब्बत होती है। तो हम विहान आपके प्यार को सल्यूट करते हैं, और हम कहते हैं कि आपने जितना प्यारा मैसेज भेजा अपने मम्मी पापा के लिए, हमेशा ऐसे ही प्यार देते रहना। और जो भी बच्चे हमें इस समय सुन रहे हैं और आपके मम्मी पापा इस धरती पे हैं या नहीं हैं, बस अपने मम्मा पापा को ज़रूर प्यार दीजिए, उनको मैसेज कीजिए, उनको ख्याल रखिए, उनको पूछिए कि उनको कुछ चाहिए। अगर मेरी बात सुन के किसी को ऐसा लग रहा है कि हम नहीं करते हैं, नहीं नहीं बिल्कुल, हम अपने मम्मी पापा को उतना ही प्यार करते हैं जितना हमें करना चाहिए। चलिए भाई, हमारे साथ और भी बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं। फूलवंती आंटी जी जुड़ी हुई हैं, जो कि इतना प्यारा कॉल करती हैं और इतने प्यार से बोलती हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है और मैं कहती हूँ मेरी रात बन जाती है। थैंक यू आपके इतने प्यार देने के लिए। उसके साथ में रेखा भिराज जी भी जुड़ी हुई हैं हमारे साथ और इन्जॉय कर रही हैं ये प्रोग्राम। सुदेवी जी वाकवा से जुड़ी हुई हैं, पूरे परिवार दोस्तों और फैमिली के लिए एक गाना सुनाना चाहती हैं। शारदा जी जुड़ी हुई हैं और वो भी एक गाना सुनाना चाहती हैं। चार्ल्स एंटिनो जी भी जुड़े हुए हैं और जो कि फ्रांस से हैं शायद, और वो भी एक प्यारा सा गाना सुनना चाहते हैं। चलिए पापा के लिए एक प्यारा सा गाना।
2: अच्छा गुनगुन, मुझे अपने पापा के बारे में कुछ बताओ।

0: दिलों की आवाज, दिलों की आवाज।
1: 8:24 हो चुके हैं और आप जुड़े हुए हैं आपके ही प्रोग्राम दिलों की आवाज़ के साथ, और मैं हूं आपके साथ पूनम। तो बहुत सारे लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं और बस इतना कहना चाहते हैं कि बस हम इस प्रोग्राम को एंजॉय करें, और मैं थैंक यू सभी को बोलना चाहती हूं जो हमारे साथ शाम को 5 बजे से लेकर भी रात के 9 बजे तक साथ चल रहे हैं। और मैं इतना कहूंगी, दुनिया में सबसे खूबसूरत चीज़ है अपनापन, जहां दिखावा नहीं सिर्फ सच्चे दिल होते हैं और प्यार होता है, मोहब्बत होती है। तो चलिए भाई, बहुत सारे मैसेजेस के साथ एक बड़ी सी प्यारी सी बात किसी ने लिखी है और कहा है ललिता जी ने कि बहुत ही ठंड हो रही है हमारे यहाँ नॉर्थ रीजन में, तो प्लीज़ क्या कोई गाना चला सकते हैं कि कोई ठंड वाला? तो बिल्कुल हम चलाने वाले हैं। और एक हमारे बहुत ही प्यारे से लिसनर हैं, इश्क इजाज़त, उनका नाम ये है, उन्होंने मूवी का नाम लिया, मैंने दोबारा से उनसे कंफर्म किया, वो कहते हैं मेरा नाम ही ऐसे ही रखा गया था और मैंने यही कहा था, मेरे पापा ने बोला था अपनी माँ से, मतलब अपनी वाइफ से, कि क्या इश्क तुम्हें है तो क्या इजाज़त है, इसलिए उन दोनों ने एक दूसरे का नाम ये बोलते हुए अपने बेटे का ही नाम रख दिया। तो क्या बात है, थैंक यू। यही तो होते हैं मोमेंट्स होते हैं, शायद याद रह गए होंगे उनको और उन्होंने आपका नाम रख दिया, और बहुत ही प्यारा नाम है। साथ में इब्राहिम जी जुड़े हुए हैं और एक प्यारा सा गाना सुनना भी चाहते हैं और अपनी पसंद का सुनाना चाहते हैं। तो अभी जो नेक्स्ट गाना आएगा इब्राहिम जी, आपके लिए होगा। साथ में रफीक मोहित जी साथ में दे रहे हैं और बहुत ही प्यारे गाने की फरमाइश की है, अभी हम चलाएंगे, इंजॉय कीजिए आपका।
0: RM3 रेडियो

वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है

0: की आवाज,
1: कभी शाम का आसमान देखिएगा, इतने रंग होते हैं उसमें, फिर भी वो कितना शांत होता है। या कभी रात का आसमान देखिएगा, वहाँ पर कितने सारे चांद सितारे होते हैं। और मुझे लगता है हर किसी को शाम को थोड़ी देर बाहर ज़रूर बैठना चाहिए, थोड़ी देर रात को बाहर थोड़ी देर ज़रूर बैठना चाहिए। ये आसमान एहसास दिलाता है कि हमारी इतनी ज़रूरत नहीं थी इस दुनिया को, पर हम आ गए, और अगर आए हैं तो कुछ ना कुछ लेकर जाएंगे। और ये गाने जो हैं आपको थोड़ा सा सुकून दे रहे हैं, तो मैं भी बहुत खुश हूँ। मैं हूँ आपके साथ पूनम इस समय, और आपके ही गानों के साथ मैं यहाँ पर चल रही हूँ इस समय। बहुत ही प्यारे से मैसेजेस के साथ में, कॉल्स के साथ में, मैं यही सबको कहूँगी थैंक यू। आपका साथ मिलना बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, और आपका जब साथ मिलता है, आपके मैसेजेस आते हैं या गाने चलाए जाते हैं या आप बताते हैं कि आपकी पसंद क्या है, नापसंद क्या है, तो मुझे भी अच्छा लगता है, क्योंकि मुझे भी सहूलियत हो जाती है इन गानों को चलाते हुए, सुनते हुए। और एहसास होता है कि आप सबको कितना इंपॉर्टेंट होता है कि आपकी रात अच्छे से कट जाए, कि आपने अपने पसंद का गाना सुना। तो चलिए, इस समय हमारे साथ रिहाना जी साथ जुड़ी हुई हैं। रिहाना, आपका गाना नहीं था मेरे पास, बट सच बताऊं मेरा दिल बहुत था, पर फिर भी आपने जो एक गाना चलाया था उसको पसंद किया, थैंक यू सो मच। बाबू अनंतवा जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और अगला गाना उन्हीं की पसंद का चलेगा। अनीता जी केपिप से जुड़ी हुई हैं, साथ दे रही हैं, और बस इतना कह रही हैं कि अगर आपके पास ये गाना है तो ज़रूर चलाइएगा। बिल्कुल, हम आराधना मूवी का गाना आपके लिए स्पेशली चलाएंगे। इंजॉय कीजिए अपने गाने।

0: दिलों की आवाज, की आवाज।
1: 8:52 हो गए हैं और आज की शाम आपके नाम रही साथ देने के लिए दिल से थैंक यू। मैं थी आपके साथ पूनम, शुभ रात्रि। चलते चलते बस इतना ही कहूँगी, हमेशा मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए और ये जो समय है इसको इंजॉय कीजिए। आप किसी भी एज के हैं, जो भी आपकी एज है, बस इतना ही कहूँगी, बस अपने चेहरे से अपनी स्माइल मत हटाइएगा। अगर आपके चेहरे पर स्माइल है तो सारे काम अपने आप हो जाएंगे।

0: और इतनी ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बस बिस्तर पकड़िए और सो जाइए और सुबह देखेंगे जो होगा देखा जाएगा। चलिए भाई मुझे दीजिए इजाज़त, मैं भी अपने घर जाती हूँ। ये आखिरी गाना मेरी पसंद का, आप सबके नाम इंजॉय कीजिए लास्ट गाना राहत फतेह अली खान की आवाज़ में।
1: You're listening to RM3 Radio Manoranjan.
2: RM3 Radio.

0: Mauritius.
1: 800 किलोहर्ट्ज़ पर ये है रेडियो मॉरिशस.
0: रेडियो मॉरिशस.
1: रेडियो मॉरिशस. भोजपुरी. भोजपुरी तड़का. तड़का.
2: भोजपुरी धमाल आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर.
1: भोजपुरी. भोजपुरी तड़का. तड़का. भोजपुरी तड़का कार्यक्रम सुने होला हमारे सब को श्रोता लोगन के स्वागत बा. रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन पर है कार्यक्रम चली अभी से लेके रात के 11 बजे ले. तो जहां कहूं से भी साथ देवत हो भोजपुरी तड़का भोजपुरी गीत के आनंद उठावे खातिर ट्यून इन.

रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस। तो चलो आज के कार्यक्रम बहुत धमाकेदार गीत के संगे सजावब जा। और शनिवार शाम दिखे रात है, रात के 9:03 हुआ था। रत्ना आप सब कोई के संगे जुड़ गल हवन। तो चलो आज के कार्यक्रम में आप सब कोई के दिल से स्वागत करत है। और जैसे के जानत हवा जून महीना जब चलावेला, जून महीना के पहला दिमास के दिन हम मनाईला जा फादर्स डे। तो खुशियाली के संगे है आज के पहला गीत हम आप सब कोई खातिर लेके आल हैं। चंद्रदेव जी बोधन के आवाज़ में रखल बहुत मज़ेदार गीत, और है गीत है भोजपुरी के आवाज़ एल्बम से लेवल गए। माँ बाप ही भगवान है। तो चला कर अब जाए को बढ़िया शुरुआत। और जे तोरा मन बा कोनो गीत सुने के तो जरूर बेशक हमनी के तू टेलीफोन करे सक 402-808-5 402-808-5। और इस साथ ही साथ में सास भी विदा करे सकब 5251-7005 5251-7005। तो चला जुड़ जाइए भोजपुरी तड़का कार्यक्रम संगे चंद्रदेव जीबुदन के आवाज में रखल आज के पहला गीत।

भोजपुरी तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे संगे जुड़ जाइए और ही मजेदार गीत के संगे बढ़िया बढ़िया चुटकुला। चला आज के कार्यक्रम में आगे बढ़े आगे तोरा जना देव था अगला गीत जोन है लिखाम जी खातिन चलाओ अब जाओ उनकर पत्नी हवन देवी कौन तो पास पावे से तू साथ देव हवा और विक्रम कुलाचन के आवाज में रखल धोती पोती पगड़ी के गीत तू मांग कर ले हवा जरूर चलाओ अब जा है गीत। और है गीत हमर जितना पूर्वज लोग हवन उनकर याद में कहे के जब वो भारत से आल रहलन अपन संगे धोती पोथी और पगड़ी अनले रहन और संस्कार के संगे संस्कृति के संगे जीवन में वो आगे बढ़लन। तो चला आगे चलाओ अब जा है गीत और ओकर से अगाड़ी हमर चचा गजोधर जोन हवन का बोलब हो कौन दिन गोड़ में ओकरा एगो किल एगो कुलू ढुगल अब तो चिकरते चिकरते चाची तो हाली हाली टैक्सी के बुला के लेके गइलन ओकरा लोपिताल। अब लोपिताल में जाके जब डॉक्टर के बतलावता तो डॉक्टर देखता गोड़ में तो एगो बड़ का कुलू ढुक गल बा। तो चाचा बोले हाँ बोले कैसे कैसे है ढुक गल बोले हम तो चलत रही तो नहीं देख ली तो एक कुछ गोड़ में तो हमार गोड़ तक कुलू पे पड़ गल तो कुलुआ ढुक गल हमार गोड़ में। तो डॉक्टर हाली हाली जाके अपन लेगोवा डाल के जानत हो कोची कलन एगो गुट लेके आइलन और गुट लेके बोले चाचा के बोले हाँ लेट जाइए आंख में डाले शुरू कर देलक। तो चाचा बोले अरे बुढ़बा हमार आंख में नहीं हो हमार गोड़ में कुलू ढुकल बा। बोले हाँ चाचा जब नीमान से देखते तो कुलू पे नहीं रखते ना अपन गोड़ हाइये से तोहर आंख में पहला गुद डालत हैं।

0: भोजपुरी तड़का
1: रेडियो मनोरंजन और रेडियो मॉरिशस के जितना श्रोता लोगन हमने के संगे जुड़कर हवन बस प्यार से साथ देते रहिए और जे विदेश में भी हवा था www.mbcradio.tv के माध्यम से तू हमने के संगे जुड़ल रहे सकबा और चला हाई जा पर हमने के साथ देवत हवन राजन रघुपत जी जे भी लंदन से हमने के लौंगलेतिया से हाँ भोजपुरी कार्यक्रम सुनत हवन चल बहुत बहुत प्यार से स्वागत करत है राजन भैया और ही मजेदार कार्यक्रम बस ऐसने सुनते रहिए साथ देते रहिए जा और हैजा पर हमनी के अगला जो श्रोता हवन नवीन लक्ष्मण जी साथ देवत हवन रोज बेल से और ही चित्रा जी खातिन बहुत बहुत प्रार्थना करत है जेकर तबियत उतना अच्छा नहीं बा पर भगवान के कृपा से अब तनी अच्छा हुआ था तो चल शिव के महिमा के हई गीत उमांग कर ले हवन और

ओरी है ये गीत चलाओ अब जाओ उनकर सब परिवार खातिर निवेदिता और सच्चिदानंद जी मेबग से, ललिता और धनराज चरण जी हवन नोडालबिया बगल से, बेटी हवन चित स्वीटी और साथ देवत हवन राज और अमृता उबिलग न्यू ग्रोव से, रमेश और प्रीति जी हवन संगे हाँ बुआ से, तो बस प्यार से साथ देते रहिए। लीलो माथुर सुकन की आवाज़ में रखल है अगला गीत शिव के महिमा, माँ बाप के सुंदर लाठी एल्बम से लेवल गए। तो चला हंसते मुस्कुराते बस साथ देते रहिए जा, और कौन दिन हमार जो चचा है ना तनी उतना ATM सब सेवी करे नहीं जाने लन सर, तो कौन दिन चल गल लाबोंक में पैसा निकाले खातिन, तब लाबोंक में जाके मैनेजर से बोले हमने के 20,000 रुपया तनी चाहिला, तो मैनेजर बोले हाँ जानत हो चाचा अभी कैश जोन है पैसा जोन है फिनी हो गल बात, चाचा बोले अरे कैसे फिनी हो गल बा, हम तो हमर पैसा मांगत है हम तो रखले रहली लाबोंक में, तो मैनेजर बोले हाँ चाचा गुस्सा नहीं करिया तनी शांति से बात करिया, तो चाचा बोले हाँ बुलाओ शांति के हम शांति से भी बतिया लेव बोकर से भी बात कर लेव काहे हमर पैसा नहीं देवा था, बोले चाचा शांति से बात करिए मतलब महिला शांति नहीं हम बोला था तनी कपार ठंडा रख के बात करिए हो,

भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे सब कोई हंस के हमनी के संगे बतियाता है। ये तो सबसे बड़का खुशी है चला हैजा पर 9:23 होगल बा और मजन मजेदार गीत संगे आगे बढ़ाता है हैजा उमा जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन फोजू साक से उनकर दूगो नातिन हवन वाकवा से हवन आरोही और जुगाव पौ से हवन आहाना खातिन सरिता बुद्धू के आवाज में रखल पानी नहीं बा चिंगन मिंगन पानी भरे हाई गीत के उमांग कले हवन ते चला बचपन के दिन में चल जाब सा औरी याद करब सा हाई दिन के औरी हमर चचा गजोदर के का बोलब जाना धवा यूट्यूब पे देख देख के जितना अंग्रेजी बोले सीख गल हवन बुढ़वा नहीं जानेला कहा कौन चीज बोले के कौन दिन बिचारी चाची और उनकर से बोले एगो एगो बहुत बड़का चीज बोल देला और निमन से बोले के चाहिला ना अंग्रेजी जब बोलब त समझे के चाहिला कौन चीज कहाँ बोलत हव चाची बोले हमर जोन बाल ह बहुत उजर हो गल बा चाची भी तनी अंग्रेजी जार देलक बोले व्हाट शुड आई डू त चचा बोले यू शुड डाई अरे पूरा वाक्य बोला हो चाचा यू शुड डाई योर हेयर तो बोले यू शुड डाई चाची तो एक सवात उठा के बिला के मार दिला चाचा के

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला आगे बढ़ब सा। और ये अगला गीत जो है बहुत ही मजेदार गीत लागी नहीं छूटे राम हई गीत करब जा चाची ललिता कुशल खातिन त्रियोले से संगे साथ देवत हवन हमनी के और सब कुशल परिवार खातिन हई गीत चलावब जा। खासकर उनकर बहिन सुदेवी देवीना ज्ञानी संगे हवन छोटी दादी प्रभावती सुखलाल मौसी माला राम झावन भाई आत्माराम और भाई हरीश खातिन हई ये गीत। और संगे संगे गाँव गोप से साथ देवत हवन सुनीता जी संगे हवन उनकर तीन गो बहिन विमला अमृता औरी वीना जी कोंगो माँ से। तो चला है ये गीत सुनते रह मजेदार गीत। आवरी श्यामा जी जे तू सुना था वाता है गीत तोहर खातिन भी करब जा है गीत तू भी बहुत ही खुशी अवन सुने के तो बस हंसते मुस्कुराते साथ देते रहिए जा। गीता जी हमनी के गीता भाई हमनी के संगे जुड़ गल हवन नुवेल फ्रांस से। और बेटा हवन शिवाजी पतो हवन श्वेता बाई बेटी हवन सुधा बाई संगे हवन दूगो नातिन बिजवी बाई दिया बाई और प्यारा मल्हार और उनकर खास दोस्त गीता गायत्री जी। गायत्री जी भी हाई गीत के बहुत खुशी रहेलन लागी नाही छूटे राम। आउरी कौन दिन जानत हव चाची गर्ल कौन ची करे चाची देरी से तनी घरे आल तो चाचा पूछे कहाँ गर्ल रले हो बोले हाँ दू दिन पहला राज्यों पे सुन ले रली रक्त दान करे के खून के दान करे के बहुत जरूरी है तो हम भी गर्ल रली रक्त दान करे तो चाचा बोले हाँ हमार पीते पीते तनी ओवरफ्लो हो गल हवे से बांटे गल रला।

मधुरी दर का कार्यक्रम 9:33 होगल बाटे और मजेदार गीत के संगे संगे जितना कोई साथ देवत हवन बस ऐसने साथ देते रहिए जा और ही बढ़िया बढ़िया गीत संगे जितना कोई हमने के सुनत हवन आप सब कोई के बहुत बहुत प्यार और चला हाई जा पर अगला गीत जो है गीत आगे जादर के आवाज में रखल माँ बाप के मोल हाई गीत के मांग करत हवन चाची शांता सुकारी से जमील फॉरेस्ट साइड से उनकर पतो किरण संगे हवन उनकर चार गो बेटा लोग सुदेश सुजीत अशोक आविन और नाती हवन भावेश और नातीन हवन संजना जितना कोई सुना था हवन उन सब कोई खातिर तो चला आज के कार्यक्रम के संगे संगे साथ देते रहिए जा और का बोलब चचा कौन दिन गर्ल फीलिंग स्टेशन हाँ हो लिसंस दलवाई और जब हुआ गर्ल तो जानत हो कौन ची होल हाउ जा पर एगो बड़का अक्षर में लिखल रहल कि जोन चीज आग लगावेला ना ओकरा बाहर छोड़ दे के काहे कि तू फीलिंग स्टेशन में जात हो तो चचा तो हाली से चाची के बोले उतर गाड़ी में से उतर वहां लिखले बा कोई के आग लगावे वाला चीज के बाहर छोड़ के आइया अरे चचा माचिस के बोलत हवन चाची के काहे उतार दे लगती

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम आगे बढ़ाओ अब सब बहुत मजेदार गीत संगे और ये अगला गीत जन है हमर 20 के पास है बंतार करी जाइला तो चला हाई गीत चलाओ अब जा खास कर जितना अपनी के साथ देवत हवन और हाई गीत के मांग करत हवन पंडित राज वर्मा जी पे चितगाफे से उनकर सब बड़ुआ परिवार खातिन तो चला मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा औरी हई कार्यक्रम के संगे संगे चचा गजोदर जब हमनी के बात सुनावेलन जब हमनी के एगो बहुत मजेदार बात जब हमनी के बोलेलन बहुत हंसी लगेला सेलमा कबो कबो बहुत तगड़ा बात बोल देवेला चला 9:40 औरी जानत हव उ कौन दिन मनोहर भैया के बोले देखा याद रखे के चाहिला अपन बुढ़िया के सामने कबो पड़ोसन के तारीफ नहीं करे के चाहिला जे तू अच्छा अच्छा बात बोल देलक त जानत हव कैसन हो जाई बुझाई जैसे एगो एगो हाँ गैस के सिलेंडर के आगे तू एगो माचिस फेंक देलक ऐसे धमाका होई तोहर घर में समझ गई ला

0: भोजपुरी तड़का
1: तड़का भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम औरी हई गीत रहल अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल त चला अगला गीत भी अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल बा और हई अगला गीत के मांग करत हवन आत्माराम भैया बेलिया से त चला हई गीत चलावब जा उनकर खातिन बहुते मजेदार गीत है त हंसते रह मुस्कुराते रह साथ देते रह औरी प्यार से आत्माराम भैया खातिन हई गीत चलावत है उनकर चार गो बहिन बहिन ललिता बहिन छोटी साथ हवन दादी प्रभावती और श्वेनी खातिन और चाची चाचा के तक का बोला ऐसन ऐसन प्रॉब्लम ऐसन ऐसन झगड़ा हाय रे मामा जानत हव चाची टेम्पो चढ़ैले रहल और चाचा से बोले देखा हम एगो बा एगो काम करे जात हैं हम बाजार जात हैं सब्जी किने तो हाय टेम्पो के तीन बजी तो तू बंद कर दिया सुफले 3 बजी तो बंद कर दिया तो चाची तो गल बाजार से जब अइलन तो टेम्पो तो फाट के करिया हो गल तो चाची बोले हाय का होल कैसे हमर टेम्पो वा फाड़ दिला कैसे फट गल बोले हाँ तू बोले रहलन ना कि 3 बजे तो बंद करिया तभी तो 3 नहीं बजल बा और जानत हुआ 2 बजे के बाद तो सिटी बंद हो गल नहीं ये सुनात रहलन तो एक को धबाक से आवाज आल जाके देख ली तो टेम्पो फ

स्मार्ट गर्ल। अरे आदमी, हम तो बोले रही 3 बजे तो 3 बजे तक बंद कर दिया, तू का 3 बजे घड़ी में 3 बजे के अतान कर ले हो।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम चला अभी थोड़ा घड़ी में 10 बजे के बाद और ये अगला गीत चलाओ अब जा बरसेला मूसर के धार और है गीत है फूलवंती जी के पसंद पे और संगे हवन उनकर पति देवानंद बेटी हवन भावना बेटा हवन उषन और सब परिवार संगे जुड़ गल हवन और चचा गजोधर के तो कमाल सुनते चला चचा गजोधर चाची के बोले हाँ तू का जाने ला हम बहुत एक्स्ट्रा हई जानत हव हमर में बहुत खूबी है एक समय रहल जब हम सब आक्तिया लोग के मिमिक्री करत रहलन ऐसन ऐसन आवाज हम निकालत रहली तो चाची बोले हाँ फिर का होल बोले हाँ फिर हमर शादी हो गल और अब तो हम तनको मुंह नहीं खोले सकत हई तो का हम मिमिक्री करब

0: 819 किलोहर्ट्ज़, ये है रेडियो मॉरिशस। रेडियो मॉरिशस।
1: भोजपुरी, भोजपुरी तड़का, तड़का। भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और ही मजेदार कार्यक्रम चले संगे चला है जहाँ पर आतिश बागी गति के आवाज़ में रहल है गीत और है जोन गीत रहल छोड़ के मुरिसवा है गीत के पसंद करले रलन भाई अबू संगे हवन उनकर बेगम आफेज असलम आया जायान जहीरा रईस खाला छोटी और उनकर खास संगतिया आपी और उनकर पत्नी चला मजेदार गीत संगे साथ देते रहिए जा और मजेदार कार्यक्रम चलाता भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और चला आगे बढ़ब सा जा पर अगला गीत जो है गीत है मानती जी के पसंद पर नोएल फ्रांस से वो हमनी के संगे जुड़ गल हवन और अनंती आरती साथ देवत हवन और उनका जितना पतो लग हवन आज परिवार दिवस मनावत हवन चला आरती जी के पतो करिश्मा भी संगे गल हवन साथ देवत हवन अनुषा और उर्वशी उनका दुगो पतो गिरिशा मितिशा और सब परिवार संगे आज परिवार दिवस मनावत हवन त खुशियाली के साथ मनाते रह परिवार के जैसन एगो खुशियाली के त्योहार एगो परब कोनो नहीं है और हम तो हमेशा बोलीला सब कोई के जीवन में सात वार रहेला सोमवार मंगलवार बुधवार गुरुवार शुक्रवार शनिवार और रविवार पर जेकर जीवन में परिवार है ओकर दुनिया बस भरपूर आनंद से खुशियाली के साथ बीतेला चला आज के कार्यक्रम में आगे बढ़ब सा पूर्णिमा फोकिरा के आवाज़ में रखल हाई गीत करब सा उनकर खातिर

0: परिधान आज की रात रत्ना के संगे एमबीसी रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का भोजपुरी तड़का 10:10 भोजपुरी तड़का कार्यक्रम जारी बा रेडियो मॉरिशस और रेडियो मनोरंजन की जितना कोई श्रोता लोगन सुना था वन शाम दी के रात हर 11 बजे ले चली भोजपुरी तड़का कार्यक्रम। वैसे तो रोज चले रहा रात के 9 बजे से लेके 11 बजे ले, तो चला ऐसा बढ़िया तड़का के भरपूर मजा भोजपुरी गीत संगे। और चला अगला गीत जोन है चलाओ अब जा शांति जी के पसंद पर। शांति जी हमने के संगे जुड़ गल हवंती है उस बगल से और दागोचिया के सब मराठी परिवार खातिन और खास कर ओम उनकर भगीना जे अपर दागोचिया से हमने के हमेशा साथ देवेलन। और अगला गीत जोन है मुकेश चेदी के आवाज में चलो मोरिसवा घूमे। चला हाई ये गीत करब जा गायत्री जी खातिन जे हमनी के साथ है दिवत हवन वेलफॉन्स से। आज उनकर बेटी सुनीता और दामाद रावीन उनकर ही यहाँ घूमे आल हवन और साथ देवत हवन नातिन केशिका और नाती केशव। तो चला रात भर आज रुकियन सा मजेदार कार्यक्रम संगे साथ देते रहिए बहुत प्यार से। और गायत्री जी आप भी साथ देते रहिए बेटा अजय मामी कल्याणी मोहन और तोहर भाभी शकुंतला खातिन है ये गीत करब जा मुकेश शेदी के आवाज में रखल। और ये चचा गजोधर हमनी के बोले हमनी के तो बहुत राका लगल। हम बोली का है कौन ची बोल चचा बोले जानत हुआ का जानी रात के हमनी के ऐसा सपना हम देख ली हम तो डिड़ा गई नी। हम बोली का है कौन सपना देख ल बोले हम रात के देख ली कि हम भगवान के आगे हाथ जोड़ के प्रार्थना करत हई। हम भगवान से बोलनी कि भगवान तू काहे हमर मन्नत नहीं सुनत हवा हम जो मांगत हई काहे तू नहीं सुनत हवा हमर प्रार्थना काहे नहीं सुनत हवा। तो जानत हवा वो फोटोआ में से शिवजी एक कुछ प्रकट होके हमनी के बोले हाँ हम तोहर बात नहीं सुनब तोहर प्रार्थना नहीं सुनब बर पस कि तू रोज हमर संगे आगे आके हमर संगे बकवास करेला हये से तोहर ब्लॉके कर देला रखई भगवान ऐसा बोलक हमनी के। ऐसे फट से हमर नींद खुल गल तो हम तो डरा गई नी सच्चे का भगवान हमनी के ब्लॉक कर देले हवा।

दर का कार्यक्रम और अगला गीत जन हा हई चलाओ अब जा बहुत मजेदार गीत शोभा जी खातिन और शोभा जी हई गीत के मंगल्य हवन खास कर उनकर समधन खातिन जेकर आज जन्मदिन है समधन जी हवन शकुन शकुन जी तोरा जन्मदिन के बहुत बहुत बधाई तोहर समधिन शोभा जी की ओर से और समधिन शकुन जी आज अपन जन्मदिन मनावत हवन उनकर पति उनकर दूगो बेटी दूगो बेटा संगे हवन परिवार सब सब परिवार की ओर से उनकरा ढेर ढेर बधाई देवत है और जन्मदिन के बहुत बहुत बस खुशहाली और अच्छा स्वस्थ हमेशा रही। तो चला अगला गीत जन है और है गीत है राजीव मंगर के आवाज में रखल हैप्पी बर्थडे तोहरा और हाइये गीत करब जा उन सब कोई खातिन जे आज अपन जन्मदिन मनावत हवन।

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम 10:24 और चला आगे बढ़ब स मीराबाई दमिया हमनी के संगे जुड़ गल हवन मॉडल बिया बगल से सब दमिया परिवार और पादिया परिवार खास कर उनकर बेटी और दामाद खातिन अगला गीत के उमांग कले हवन बिजमावती संपत के आवाज में रखल चला है गीत उनकर खातिन चलावब जा और चचा गजोधर के का बोलब नवा लोटो किनलक सेलमो जानत हो लोन लेके लोटो किनलक तब लोन नहीं भरे सकता तब लाबों का आके ओकर लोटोवा सीजी कर देलक तो चचा तो कपार पे हाथ रखे बोला था हाय जे जनती तो शादी भी लोन लेके करती

0: भोजपुरी तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम और भोजपुरी कार्यक्रम के संगे संगे हैजा पर कुमारी जी हमनी के संगे जुड़ गल हवन दागोचिया से और साथ है देवत हवन। और आज के कार्यक्रम में अपन सब बेटी लोग के नाम जोड़े के खुशी हवन, प्रतिमा, सुधा, लता और उनका जितना गुतनी हवन, उनका जितना बहिन लोग हवन, उन सब कोई खातिन, परिवार खातिन चला कर संगे हैजा पर बाद वाग विदेशी जी भी हमनी के साथ है देवत हवन अनुषा अपन खास दोस्त के संगे। और अगला गीत अभिमन्यु हरपाल के आवाज में रखल है, ये गीत करब जा है जा पर हवन नीला निमन जे हमनी के संगे जुड़ गल हवन होशनुआ से और उनकर बेटी हवन सुनीता रामजीन संगे हवन उनकर पति और उनकर सब निमन परिवार खातिन करब जा है अगला गीत। चला खुशहाली के साथ जुड़ जाइए और पप्पू भैया के का बोलब, पप्पू भैया कौन दिन खुशी खुशी में चचा से बोले हाँ चचा हम शादी करत हाँ, और जेकर से खुशी रहली ना वो भी शादी करता तब बोले हाँ तब बुड़बक काहे तू दोनों के बोलत हवा, खाली बोलिए तू शादी करत हवा, बोले नहीं नहीं चचा जेकर से खुशी रहली वो भी शादी करता और हम भी शादी करत हई, बोले का बोलत हवे बुड़बक, बोले हाँ तो हम अभी उत में शादी करत हई और वो नवाम में शादी करता है, ये तो खुशहाली के बात है। हे पगला
2: सिया मांगे

0: भोजपुरी भोजपुरी तड़का तड़का
1: भोजपुरी तड़का कार्यक्रम मजेदार कार्यक्रम संगे चला आगे बढ़ब सा और है जा पर हमनी के संगे जुड़ गल हवन रंभा जी स्विट्जरलैंड से साथ देवत हवन और जुबेदाल तो लेके जाए है अगला गीत के का गीत मांगत हवन अपन भगिनी और उनकर बेटी अमीशा खाती तो बस साथ देते रहिए जा 10:34 हो गल बा मजेदार कार्यक्रम भोजपुरी तड़का

0: परिधान आज की रात रत्ना के संगे NBC रेडियो पर।
1: भोजपुरी तड़का गीत सुनब जा श्वेता बाबूलाल और किशोर खीमिया के आवाज में रखल और हाई गीत करब जा साजिद जी खातिन जी हमनी के रोज हिल से साथ देवत अवन और उनकर खास दोस्त दीना सरोवर खातिन जी विदेश में हवन और हाई गीत है ओ बलमा।

कलकत्ता से छूटल जहाज और हाय गीत अनीता जी फ्लिक ऑन फ्लैग से हमनी के संगे जुड़ गल हवन उनकर खातिन उनकर सब परिवार खातिन और जितना कोई सुना था वन उन सब कोई खातिन पूर्णिमा फुकीरा के आवाज में रखल ये गीत करब जा नीता खेदनी खातिन सेंट जूलिया विलार से उसाद देवत हवन और खेदनी परिवार और खास कर उनका दोस्त स्वादिका खातिन

0: भोजपुरी गीत रत्ना के संगे MBC रेडियो पर।
1: ललिता पुनीत जी के आवाज में रखल है गीत ओ नारी, और है गीत सब महिला लोग खातिर, सब माता लोग खातिर।

चला श्रोता जी, आज के कार्यक्रम के हैजा पर समाप्त करे के समय होगल बातें। सुदेवी जी हमने के वाकवा से साथ देवा थवन, ललिता कुशल उनकर खाती नगला गीत, और आत्माराम भैया साथ हवन राम रतन परिवार मालेगा से, और श्यामा रघुनंदन और सब रघुनंदन परिवार खातीन चलाओ अब्जा शारदा सिन्हा के आवाज में रखल है गीत हिंदी फिल्म मैंने प्यार किया से लेवल गए, और है ये गीत संगे आज के कार्यक्रम हैजा पर समाप्त कर अब्जा। आप सब कोई हमने के बहुत प्यार से साथ देलन, बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करब जा कि हई वीकेंड तोहर खातिन बहुत सुखद रही, अपन परिवार संगे एगो बढ़िया समय बिताइय, और आवत समय तोहर खातिन बहुत खुशहाली लेकर आई, बहुत ऊर्जा लेकर आई है ये प्रार्थना करब जा। फेरो से भेट आप सब भोजपुरी तड़का कार्यक्रम ने सांदी के रात के 9 बजे से 11 बजे ले। तो चला इसी के साथ रत्ना को दीजिए अनुमति, नमस्कार, शुभ रात्रि सभी को।

जिंदगी के अनमोल लम्हे रेडियो मॉरिशस के साथ। सुनहरे पल रेडियो मॉरिशस के साथ।

0: सभी सुनने वालों को अरविंद का प्यार भर नमस्कार। स्पोर्ट्स बुलेटिन में आप सभी लोगों का स्वागत है। टेनिस के साथ आज के स्पोर्ट्स बुलेटिन को शुरू करेंगे। फ्रेंच ओपन में टाइटल फेवरेट वर्ल्ड नंबर वन अरीना साबालेंका बाहर हो गई। क्वार्टर फाइनल में साबालेंका को हराया जाना श्नाइडर ने 3-6, 7-5, 6-0 से। वीमेन सिंगल में ही क्वालिफायर श्वालिंस्का सेमीफाइनल में पहुंची कालिंस्काया को हराकर। लड़कों में कुबोली ने उग अलियासिमे को हराया और नाल्दी भी क्वालिफाई हुआ अपने हमवतन बेगेचिनी को हराकर। आज लड़कियों का सेमीफाइनल कोस्ट्रिक खेलेगी अंद्रीवा के खिलाफ श्नाइडर श्वालिंस्का। कल लड़कों का सेमीफाइनल मेंसिच वेरेव और नाल्दी कुबोली, ये कल के लिए है। ट्रांसफर न्यूज। ट्रांसफर बाजार का गरम माल है नॉटिंघम फॉरेस्ट का इंटरनेशनल खिलाड़ी एलियट एंडरसन। मैनचेस्टर सिटी का पहला प्रस्ताव, उसका पहला ऑफर स्वीकार नहीं किया गया। फॉरेस्ट अपने जवान शेर को सस्ते में नहीं बेचेगा, उसके लिए एक ब्रिटिश प्लेयर रिकॉर्ड फी चाहिए। अभी ये रिकॉर्ड 105 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग का है जो डेक्लन राइस के लिए दिया गया था। सो सस्ते में नहीं बेचा जाएगा एलियट एंडरसन। वैसे मैनचेस्टर सिटी की नजर न्यूकासल यूनाइटेड के सांड्रो टोनाली पर भी है। इंटरनेशनल फ्रेंडलीज कल खेले गए। नेदरलैंड्स की हार हुई, अल्जीरिया ने उसे 1-0 से हराया। पोलैंड 2, नाइजीरिया 2, कोंगो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक 0, डेनमार्क 0, अल्बेनिया 0, इजराइल 1 और इटली की जीत लुक्जमबर्ग पर 1-0 से। आज भी अनेक मैच खेले जाएंगे, इनमें फ्रांस आइवोरी कोस्ट के खिलाफ खेलेगा, फिर स्पेन इराक, स्वीडन ग्रीस। वर्ल्ड कप के दौरान डेविड बेकहम को हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम स्टार मिलने वाला है। यह अवार्ड उन्हें 12 जून को लॉस एंजेलिस में दिया जाएगा। ये स्टार स्पोर्ट्स एंटरटेनमेंट कैटेगरी में है। अमेरिका में फुटबॉल का क्रेज बढ़ाने और ग्लोबल कल्चर पर उसके असर के लिए डेविड बेकहम को सम्मानित किया जाएगा। टेनिस ITF CAT 14 एंड अंडर सर्किट में अलेक्जेंडर तेवेव ने डबल चैंपियन बना। सिंगल्स और डबल जीतकर फाइनल में अलेक्जेंडर ने एडविन सनासी को हराया। और साइकिलिंग में टू डेलिल सिक्लिस के दूसरे चरण सेकंड स्टेज में साउथ अफ्रीका के चानो सिल्वा की जीत हुई। येलो जर्सी अभी फ्रांस के साइक्लिस्ट गियोम जरवेलिया के पास है। कल के एटाप में अलेक्जेंडर मेयर चौथा स्थान ले पाया। सो खेल समाचारों में फिलहाल इतना ही। आपके ध्यान के लिए शुक्रिया। आगे दीजिए नमस्कार। आप सभी लोगों को अरविंद की ओर से शुभ दिन।
1: आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो

आपकी खट्टी मीठी यादों में आपके संग MBC रेडियो